0: जो मस्ती।
1: जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना।
2: हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते, जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। चलते

0: RM2
1: रेडियो मस्ती,
0: फील द मस्ती।
1: कुछ कुछ होता है राहुल, तुम नहीं समझोगे।
2: लड़की बड़ी अनजानी है।
0: रेडियो मस्ती ऑल द वे।
3: जब तक टाइगर मरा नहीं तब तक टाइगर हारा नहीं।
0: रेडियो मस्ती, द लेटेस्ट न्यूज एंड द ग्रेटेस्ट मिक्स ऑफ म्यूजिक।

0: उम्र है
1: छोड़ो बहाना
0: ना ना ना
2: आ जा बे आ जा हाय सजन मैनू लुट ले गया है
3: Radio Musti.
4: Your life is not complete until you have a little Musti in your life. Radio Musti. All the way. The latest news and the greatest mix of music. Radio Musti.
3: Radio Musti.

0: रेडियो मस्ती।
1: जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना।
2: हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते, जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। चलते

0: रेडियो मस्ती।
1: जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना।
2: हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते, जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। चलते

तो आपके और करीब आ गए हैं, दुनिया वालों से दूर, जलने वालों से दूर, बस प्यार करने वालों के और करीब, माने कि आप हमारे हम सफर। शुक्रवार की सुबह हो चुकी है 19 जून और 5 भी बज चुके हैं। विशिंग यू बोल अ लवली मॉर्निंग। इट्स योर राइज एंड शाइन ऑन रेडियो मस्त।

0: दूर तो उनसे रहा जाता है ना जो दिल के करीब ना हो, लेकिन आप तो हमेशा हमारे दिलों दिमाग में बसे रहते हैं। सो व्हाटएवर यू माइट बी, 5499-1294 पर आपके मैसेजेस का इंतजार।
1: Rise and shine, start fresh, stay sharp, wake up with the world. Welcome to RM2 Radio.

0: और आपके साथ तो है ही आपकी नीतू। 5499-1294 पर चली आपके कुछ मैसेजेस की ओर बढ़ते हैं।
1: Rise and shine, start fresh, stay sharp, wake up with the world. Welcome to RM2
2: Radio Musti.
0: Good morning, Suprabhat to all early risers. Saath mein dene ke liye, thank you. Jyoti as usual, Shatabinagas ki hai aap, Ashni Rekha Surekha Madhav Parivar. A very good morning aapko Kamaldeep, aapke poore parivar ke liye. Mr. Jashan, aapko flag se and aap kehte hai shubh shukravar. आपको भी आपके सभी परिवार दोस्तों के नाम ही इज विशिंग यू ऑल अ वेरी गुड मॉर्निंग। आप है धीरज, आयुष, विदिशा, अश्विन, ज्योति, हरक परिवार मौदार बैसे एंड एज यूजल आपका मैसेज आ गया है। प्रणाम आपको भी भाई सूरज शर्मा सजादा एंड आपके सभी परिवार डियर वंस फ्रॉम त्रियुली। हैप्पीनेस ऑफ योर लाइफ डिपेंड्स ऑन द क्वालिटी ऑफ योर थॉट्स। गुड मॉर्निंग आपको साथ नाम मुकेश लालमाची से हैं आप, आपके पूरे परिवार के नाम। तो अगर आप अच्छी सोच रखेंगे, सही सोच रखेंगे तो डेफिनेटली आपका पूरा दिन आपके जीवन ही में ही बाहर आ जाएंगे। ओम श्री वेंकटेश्वराय नमः। आप आदू फैमिली खुशनुमा से प्रणाम आपको।

बस लाइफ का फंडा ही कुछ ऐसा ही है, बस आए हैं और चले भी जाएंगे। लाइफ में जितने पल मिले, जितने भी मोमेंट्स मिले, उनको बेस्ट से बेस्ट बनाते चले। 5:17, विशिंग यू ऑल वंस अगेन अ वेरी गुड मॉर्निंग। जितने भी लोग काम पर जा रहे हैं, सबको बों को आश। लता जी और रफी साहब की आवाजों में ये है वारिस फिल्म का सराबहार गाना। कोई गाना आपके नाम, अपनों के नाम, देन 5499-1294 सैकत नफ नफ दूज नफ का पढ़नी तो आपके साथ सुबह के 7 बजे तक।

0: Rise and shine. Start fresh. Stay sharp. Wake up with the world. Welcome to RM2.
1: Radio Musti.
2: इन गानों में ना जीवन की सच्चाई होती है. अगर ध्यान से सुने और ध्यान से समझ भी जाए तो जिंदगी आसान हो जाती है. 527 बोकोराज जोधोस गोइंग टू वर्क. रेडी हो रही है स्कूल कॉलेज के लिए. सो बेस्ट ऑफ लक बों कुराज. 5499-1294 पर चलिए. अपनी अपनी प्रेम कहानी आप भी याद कीजिएगा. एंड एक छोटा सा मैसेज, किसी के नाम कोई खास पैगाम.

0: Rise and shine. Start fresh, stay sharp, wake up with the world. Welcome to RM2.
1: Radio Musti.
2: चलिए आपकी जिंदगी में बस प्यार ही प्यार हो यही हम कामना करते हैं. वेरी गुड मॉर्निंग. जय माता दी आपको प्रेमिला जी प्लेंदी पापाई से. बस गाने सुनकर आपकी मॉर्निंग की शुरुआत अच्छी हो रही है. थैंक यू पति रंजीत पूरे परिवार के नाम. हाय नीतू प्रणाम प्रणाम जी. रेशमा जानकी राम को हैप्पी बर्थडे. बेस्ट विशेस टू यू माय डियर. एंड बिंदा दिव्यानी निर्मला पाजू फ्रेंड्स है सब की तरफ से. खास आपकी तरफ से मीला राम जी कल आप मोताय ब्लॉन्च से आपके पूरे परिवार के नाम. नेक्स्ट गाना गुजार टू होम गुजार टू बेटी श्रिया. हैप्पी बर्थडे टू यू पति आकाश पापा कविराज माँ रवीना भाई वरुण भाभी निष्ठा पामिसल सोहराय सुनक सिंह हो राधन बुध परिवार नोटरडाम सी एंड ऑफकोर्स रेडियो मास्टी टीम की तरफ से परिवार से आपको भी ढेर सारा प्यार शुभकामनाएं. गुड मॉर्निंग नमस्ते कैसे अब्दुल अंसारा बानू हैव अ नाइस डे अहेड. गुड मॉर्निंग यहाँ पर आपको प्यारी सी हेमलता भजन फ्रॉम पोएटो पीमा. एंड ये फ्राइडे जो है एकदम शुभ हो आपके लिए. भाई विक्रम बीपन के लिए स्पेशल गाना आपके नाम. ऑलराइट नमस्कार जगमणि आप सुनना चाहते एक खास गाना. चलिए मनाडे साहब के फैन है मैं कोशिश करती हूँ. इक्वली गुजार टू होम यहाँ पर है बेटी स्वीटी कमलेश दामाद है ग्रांड चिल्ड्रन शेषना योहान रोहन साथ में रागिनी मोसल मोसौ सुसी से पूरे परिवार के नाम.

0: shine. Start fresh, stay sharp, wake up with the world. Welcome to RM2.
1: Radio Musti.
2: पांच बजकर 38 मिनट बस थोड़ी देर में आपका हॉरोस्कोप. कैसी है विमला जी? नमस्कार आपको, प्रणाम. आप कहती हैं दर्द. दर्द क्या है? पेन इज नॉट ऑलवेज इन टीयर्स. कभी कभी हम लोग अपने आंसू में ही अपने दर्द को बताए जाते हैं, लेकिन कभी कभी जब हम हंसते हैं उसके पीछे का दर्द किसी को दिखता नहीं है. दैट्स ट्रू. हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और जितना हो सके किसी की लाइफ में आप अगर खुशियां बांट सकते हो, भर सकते हो, तो भरते रहे.

0: Your daily horoscope. RM2 Radio Musti.
1: चलिए जी शुरुआत करते हैं।
2: एरीज मेष राशि।
1: वेल, आज का दिन आपके लिए खुशियों और शुभ संकेतों से भरा रहने वाला है। किसी मांगलिक या धार्मिक कार्यक्रम में शामिल होने का मौका मिलेगा, जिससे मन को पॉजिटिविटी यानी कि पॉजिटिव ऊर्जा ये भी मिलेंगी। हालांकि दूर रहने वाले किसी अपने की याद आपको थोड़ा भावुक कर सकती है। नौकरी या करियर से जुड़ा कोई काम आपको यात्रा पर ले जा सकता है।
2: टॉरस वृषभ राशि।
1: आज रिश्तों में अपनापन और मजबूती होगी, खासकर परिवार और करीबी लोगों के साथ। किसी सामाजिक कार्यक्रम में शामिल होने से आपकी पहचान और प्रभाव दोनों बढ़ेंगे। विरोधियों को मात देने की पूरी कोशिश करेंगे और काफी हद तक सफल भी रहेंगे। हालांकि अपनी निजी या जरूरी बातें किसी से साझा करने से बचे, वरना परेशानी आपको ही हो सकती है।
2: जेमिनी मिथुन राशि।
1: आज का दिन बाकी दिनों से कहीं ज्यादा राहत और खुशी देने वाला रहेगा। आपकी मेहनत आपको नई पहचान दिला सकती है और परिवार के साथ रिश्तों में भी मिठास बनी रहेगी। लाइफ पार्टनर को नई नौकरी या नए अफसर का बुलावा मिल सकता है, जिसके कारण उन्हें बाहर जाना भी पड़ सकता है। वैसे कोई बनता हुआ काम अचानक अटकने से थोड़ी चिंता बढ़ सकती है, बस आप हिम्मत ना हारें। आज नहीं तो कल आपकी मेहनत का फल मिलने वाला है आपको।
2: कैंसर कर्क राशि।
1: खर्चे जो है आपकी जेब पर थोड़ा ज्यादा असर डाल सकते हैं, इसलिए सोच समझकर खर्च करना बेहतर होगा। संतान की पढ़ाई और भविष्य को लेकर आप कोई बड़ा कदम उठा सकते हैं, जैसे मनपसंद कोर्स में दाखिला दिलाना वगैरह। परिवार में किसी सदस्य करियर या काम से जुड़ी परेशानी बातचीत से सुलझ सकती है। भाई बहनों का पूरा सहयोग मिलेगा, परिवार का सहयोग मिलेगा, जिससे मन मजबूत रहेगा।
2: लियो सिंह राशि।
1: वेल, आज का दिन आपके लिए खास और यादगार साबित हो सकता है। नए लोगों से मुलाकात भविष्य में बिजनेस और करियर के लिए फायदेमंद साबित होगी। किसी धार्मिक आयोजन में शामिल होने से मन को शांति और सुकून मिलेगा। लव रिलेशनशिप्स में कुछ नई चुनौतियां सामने आ सकती हैं, इसलिए जल्दबाजी या गुस्से से बचना जरूरी होगा।
2: वर्गो कन्या राशि।
1: आज का दिन सकारात्मक परिणाम और नई उम्मीदें लेकर आएगा। घूमने फिरने या यात्रा के दौरान कोई ऐसी जानकारी मिल सकती है जो आगे चलकर आपके बहुत काम आएंगे। स्टूडेंट्स अपनी पढ़ाई से जुड़ी समस्याओं को गुरुजनों की मदद से सुलझाने की कोशिश करेंगे। व्यापार में हल्के उतार चढ़ाव बने रहेंगे, जिससे मन थोड़ा विचलित भी हो सकता है। जस्ट बी पेशेंट।
2: लिब्रा तुला राशि।
1: वेल, आज आर्थिक मामलों में आपको राहत और मजबूती महसूस होगी। जी हाँ, आपकी आर्थिक स्थिति पहले से बेहतर रहेगी और फैसले लेने की क्षमता भी मजबूती बनी रहेगी उसमें। किसी भी काम में लापरवाही करना नुकसानदेह हो सकता है, इसलिए हर कदम सोच समझकर बढ़ाएं और ईश्वर की भक्ति आध्यात्मिक कार्यों में मन लगेगा, जिससे मानसिक शांति मिलेगी।
2: स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि।
1: आज जमीन जायदाद या प्रॉपर्टी से जुड़े मामलों में आपके लिए अच्छे संकेत हैं। मेहनत का पूरा फल मिलने से आत्मविश्वास बढ़ेगा। किसी कानून

0: कानूनी मामले को लेकर अनुभवी व्यक्ति या वकील की सलाह लेना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। मन में आगे बढ़ने और खुद को साबित करने की भावना आप में बनी रहेगी और अपने कामों को धैर्य और साहस के साथ पूरा करें।
1: सजिटेरियस धनुराशि।
0: वल आज आपका मान सम्मान और प्रतिष्ठा बढ़ने के संकेत है। यदि नए वाहन के लिए लोन अप्लाई किया हुआ था तो उसमें सफलता मिल सकती है। जीवन साथी की भावनाओं को समझना और सम्मान देना बहुत जरूरी होगा, वरना छोटी सी बात बड़ा विवाद भी बन सकती है। कार्यक्षेत्र में मनपसंद काम न मिलने से थोड़ा असंतोष तो रह सकता है और आप नई नौकरी की तलाश की ओर भी कदम बढ़ा भी सकते हैं।
1: कैप्रिकॉर्न मकर राशि।
0: वेल, आज का दिन स्टूडेंट्स के लिए काफी उत्साहजनक रहेगा। पुराने लेन देन या आर्थिक उलझनों से राहत आपको मिल सकती है। संतान की परीक्षा परिणाम घर में खुशी और गर्व का माहौल बनाएंगे। बड़ों के साथ किसी जरूरी काम को लेकर चर्चा हो सकती है और उनका आशीर्वाद पाने से आपका जो रुका हुआ काम था वो पूरा होने की संभावना भी है।
1: एक्वेरियस कुंभ राशि।
0: आज का दिन मस्ती और हल्के फुल्के पलों से भरा रहेगा, लेकिन दूसरों के कामों में ज्यादा उलझना बाद में आपके लिए तनाव का कारण बन सकता है। लंबे समय से रुका हुआ पैसा मिलने से मन होश हो जाएगा। यदि किसी और को उनका वाहन चला रहे हैं तो बेहद सावधानी बरतें, क्योंकि छोटी लापरवाही नुकसान दे सकती है। पुरानी गलतियों से सीख लेकर आगे बढ़ना आपके लिए फायदेमंद होगा।
1: पाइसेस मीन राशि।
0: फाइनली आज आपको हर कदम पर सावधानी और सतर्कता बरतने की जरूरत है। नौकरी पेशा लोगों के लिए किसी अजनबी पर भरोसा करना वेरी रिस्की, नुकसानदायक साबित हो सकता है। पैसों से जुड़ी कोई भी निजी बात किसी के साथ साझा करने से बचे और सरकारी कामों में
2: Your daily horoscope, RM2, Radio Musti.
0: तो हम आपको बता रहे थे कि जो पैसों से जुड़ी कोई भी निजी बात किसी से साझा करने से बचें और सरकारी कामों में थोड़ी परेशानी या देरी हो सकती है। कोई विरोधी आपको परेशान करने की कोशिश भी कर सकता है, लेकिन आप धैर्य बनाए रखें, अपने आप पर विश्वास बनाए रखें, सब ठीक होगा। गुड डे, बेस्ट ऑफ लक।
2: Your daily horoscope, RM2, Radio Musti.

0: rise and shine. Start fresh, stay sharp, wake up with the world. Welcome to RM2.
1: Radio Musti.
2: 5:53 6 बजे आप सुन पाएंगे संक्षिप्त समाचार. Let me wish a very good morning आपको इंदिरा रागिनी मोदा ब्लांश से. कैसे हैं आप भाई संजय बंधु सैशन अभिलाष से. और बस गानों का सहारा आपका है. थैंक यू सो मच आपके पूरे परिवार, खास आपकी पत्नी साथ नहीं है लेकिन उनका प्यार, उनकी यादें हमेशा आपके साथ रहेंगी, है ना. गुड मॉर्निंग अनु फ्रॉम वेल. आपके बेटे आकाश को अ वेरी हैप्पी बर्थडे दादा, आई मीन डैड राजीव, आशना, अंशु, निशा, राकेश एंड फैमिलीज की तरफ से ढेर सारा प्यार. साथ में इंदिरा, निर्मला, वरुषा, आमुगम, गासन, मापू से हैं आपके पूरे परिवार के लिए. गुड मॉर्निंग आपको मिस्टर गाइटा, यस आपके लिए फ्रॉम बोबा से आपके पूरे परिवार के नाम.

0: RM2 Radio Misty.
1: The time is brought to you by McDonald's.
2: McDonald's. Ba-da-ba-ba-ba. I'm loving it.
1: And RKG Classic Pure Cow Ghee. Share the taste. Share happiness.
0: Radio Musti.
3: North. South.
0: 103.5.
3: East. West.
0: 96.4.
3: Center.
0: 99.4.
4: RM2 Radio Musti.
0: Radio Musti.
4: The latest news and the greatest mix of music. Feel the Musti.
5: 6 o'clock hai. सुनते हैं संक्षिप्त समाचार आपसे आशिता, नमस्कार आपको।
6: नमस्कार, शुक्रवार 19 जून के इस प्रातकालीन समाचार बुलेटिन में आप सभी लोगों का स्वागत किया जाता है। सबसे पहले हम स्थानीय स्तर के बारे में बात करते हैं। आज संसद में बजट 2026 पेश किया जाएगा, जिस पर पूरे देश की निगाहें टिकी हैं। बढ़ती महंगाई और आर्थिक चुनौतियों के बीच सरकार से जनता को बड़े फैसलों की उम्मीद है। बजट 2026-2027 का सीधा प्रसारण आज शाम 5 बजे से MBC चैनलों पर उपलब्ध रहेगा। बजट भाषण के बाद विशेष कार्यक्रम

में विशेषज्ञ और हितधारक का महत्वपूर्ण विश्लेषण प्रस्तुत करेंगे। महंगाई, आवास, रोजगार और युवाओं के भविष्य जैसे मुद्दों को लेकर जनता की उम्मीदें काफी बढ़ी हुई हैं। बजट से लोगों को अपने दैनिक जीवन में सुधार और आर्थिक मजबूती की ठोस उम्मीद है। और वहीं पर पुलिस बल से जुड़े मुद्दों पर पुलिस फाइटर्स यूनियन ने वेतन, पेमेंट और प्रमोशन से जुड़ी घोषणाओं की उम्मीद जताई है। साथ ही यूनियन ने पूर्व बजट परामर्श में शामिल न किए जाने पर असंतोष भी व्यक्त किया है। आर्थिक विकास को बढ़ावा देने वाले उपायों पर आर्थिक क्षेत्र की नजर टिकी हुई है। वहीं एनजीओ और सामाजिक संगठनों को उम्मीद है कि बजट में जमीनी हकीकत से जुड़े ठोस सामाजिक फैसले किए जाएंगे। मॉरिशस फाइनेंस ने सरकार से वैश्विक आर्थिक बदलावों के बीच महत्वाकांक्षी कदम उठाने की अपील की है। संस्था ने अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा में देश की स्थिति मजबूत करने के लिए 3 प्रमुख प्राथमिकताएं भी सुझाई हैं। मॉरिशस में उपभोक्ता संरक्षण के नए नियम 1 जुलाई से लागू होंगे, जिनमें कीमतों में अधिक पारदर्शिता सुनिश्चित की जाएगी। सरकार ने सब्सिडी और अधिकतम मूल्य को दर्शाने के लिए नई लेबलिंग प्रणाली भी अनिवार्य की है। और लैग्रिमेंट सेंपिया में के इलाके में कल गुरुवार तड़के आतसू द्वारा चलाए गए एक विशेष अभियान के दौरान कथित तौर पर गांजे की खेती का पता चला है। सुबह लगभग 6:30 बजे की गई इस कार्रवाई में 2 कमरों में उगाए जा रहे संदिग्ध पौधे बरामद किए गए। मौके से पुलिस ने 36 ऐसे पौधे जब्त किए हैं जिनके गांजा होने का संदेह है। इनकी ऊंचाई 60 सेंटीमीटर से लेकर 2 मीटर 10 सेंटीमीटर तक बताई गई है। पौधों को मिट्टी और खाद से भरे प्लास्टिक के कंटेनरों तथा थैलों में उगाया जा रहा था। आपको बता देते हैं कि बरामद संदिग्ध मादक पदार्थों का कुल अनुमानित मूल्य 32,41,635 रुपए आंका गया है। लैग्रिमेंट सेंपिया के मौकेट लेन के निवासी 40 वर्षीय एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर हिरासत में लिया गया। मामले की जांच जारी है। और साथ में आपको हम बता देते हैं कुछ मैचों के बारे में। वर्ल्ड फुटबॉल कप, विश्व फुटबॉल कप 2026 की कुछ मैच जो खेले गए उनके स्कोर इस प्रकार हैं। कनाडा के साथ का आमना सामना हुआ कतर के साथ और स्कोर रहा कनाडा 6 और कतर जो है वो 0। और साथ में कल के खेले गए मैचों के स्कोर इस प्रकार हैं। चेक रिपब्लिक 1, साउथ अफ्रीका दक्षिण अफ्रीका 1 और उज़्बेकिस्तान का आमना सामना हुआ कोलंबिया के साथ और कोलंबियन खिलाड़ियों ने स्कोर दागे 3, उज़्बेकिस्तान 1। गाना ने खेला पानामा के साथ, गाना 1 और पानामा 0। और एक बहुत ही दिलचस्प मैच रहा इंग्लैंड और क्रोएशिया के बीच। इंग्लैंड वर्सेस क्रोएशिया के जो स्कोर है वो है 4-2, इंग्लैंड 4 क्रोएशिया 2। और हमारे अगले बुलेटिनों में हम अगले मैचों के बारे में इसको लेकर आएंगे। फिलहाल एक मैच अभी जारी है। और साथ में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के बारे में बात करते हैं। रूस की राजधानी मॉस्को के आसपास बड़े पैमाने पर ड्रोन हमले के बाद तेल रिफाइनरी को नुकसान पहुंचने की खबर है। इस घटना में धुआं और काले तेल की बारिश जैसी स्थिति बनी, जबकि रूस और यूक्रेन के बीच तनाव और बढ़ गया है। इसके साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हो चला। बढ़ते हैं हम मौसम के हाल की ओर। मौसम का हाल, आम हालत हमारे इलाके पर हल्की हवा का बहाव है। अगले 24 घंटों के लिए अनुमान है सुबह के समय दक्षिण और ऊंचाइयों पर रहकर बारिश होगी तथा बाद में मौसम सुहाना हो जाएगा। दोपहर बाद उत्तर पश्चिम में कुछ बादल विकसित होंगे और थोड़ी देर के लिए बारिश होगी। अन्य इलाकों में धूप खिली रहेगी। रात के दौरान आसमान साफ रहेगा। हवा सुबह के समय हल्की बहेगी तथा दक्षिण पूर्व की ओर से 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बहेगी। समुद्र प्रवाह रेखा के पास सामान्य रहेगा तथा दक्षिण पश्चिम की ओर से 2 मीटर के ज्वार उठेंगे। अधिकतम तापमान सेंट्रल प्लेटो 23-25 डिग्री सेल्सियस के बीच और तटीय इलाकों पर अधिकतम तापमान 27-29 डिग्री सेल्सियस के बीच। न्यूनतम तापमान सामान्य से कम यानी
संरप्लातों पर 14 से

0: फ्लडिंग सेशन के बीच और तटीय इलाकों पर न्यूनतम तापमान 18 से 20 डिग्री सेल्सियस के बीच। आज सूर्योदय सुबह 6:44 पर और सूर्यास्त शाम 5:38 पर। तो इसके साथ ये पहला फ्लैश न्यूज समाप्त हो चला। हमारी रॉब की मुलाकात पुनः होगी ठीक 6:30।
1: Your news on NBC Play, NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.tv.
2: Nous fin arrive demi-finale débat climat saison 4. Ban demi-finaliste pour nous autres rendez-vous pour une soirée bien animée au climat. Débat climat, c'est une initiative MCB et Creative Gandhi Science Center avec collaboration Dr François Gemène, spécialiste en environnement. Rendez-vous samedi 20 juin à partir 8h30 à soir au MBCN et MBC SAT. N'a pas raté ça.
3: Rise and shine. Start fresh, stay sharp, wake up with the world. Welcome to RM2.
4: Radio Musty.

6:12 वेलकम बैक एंड वंस अगेन अ वेरी गुड मॉर्निंग प्यार भरा नमस्कार प्रणाम। चलिए शुक्रवार का दिन है 19 जून, सब लोग खुश हो जाते हैं जैसे शुक्रवार का दिन आता है, तो क्योंकि वीकेंड का माहौल एकदम रिलैक्सिंग मोड में आ जाते हैं। सो व्हाटएवर यू माइट बी स्टिल वेल ट्यून वंस अगेन गुड मॉर्निंग 5499 1294 पर। चलिए स्कोर की बात चल पड़ी है, अभी मेक्सिको एंड साउथ कोरिया के जो गेम है फीफा वर्ल्ड कप चल रहा है सेकेंड हाफ एंड स्कोर बताया गया था आपको 0-0 एंड ऑलरेडी 1-0 वो भी मेक्सिको के खाते में। जी हाँ, मेक्सिको इज विनिंग बाय 1-0। तो आप फॉलो कर सकती हैं एमबीसी प्ले जो है, आपके फुटबॉल मैचेस लाइव रिप्ले आप देख भी सकती हैं।

0: मैं तो कहूंगी भाई, गाने तो हम आपको सुना ही रहे हैं, बस आपको याद दिला देती हैं कि अगर आप ही एमबीसी प्ले ऐप जो है डाउनलोड करना चाहते हैं, एंड ऑफ कोर्स अगर आपको कोई मदद चाहिए तो हमारी टीम और M2 रेडियो मस्ती टीम एंड एमबीसी प्ले टीम रहेंगे कल शनिवार 20 जून को एट केंद्रा सैपियर सुबह 10:30 बजे से लेकर दिन की 1:30 बजे तक, यानी कि 10:30 AM to 1:30 PM एंड संडे 21st को एट सेंटर पॉइंट ट्रियानो, वो भी दिन के 11 बजे से लेकर दोपहर बाद के 2 बजे तक।
1: Rise and shine, start fresh, stay sharp, wake up with the world. Welcome to RM2
2: Radio Musty.

0: अगर दिल में कोई बात हो तो डरने की क्या बात है, और अगर सच्ची बात हो, अच्छी बात हो, तो बिल्कुल डरने की बात नहीं है।
1: Rise and shine, start fresh, stay sharp, wake up with the world. Welcome to RM2
2: Radio Musti.
0: 6:24 बस 6:30 बजे आप सुन पाएंगे पूरा समाचार बुलेटिन, उसके बाद मॉर्निंग वेट विकास के बाद। चलते चलते आपको याद दिला देते हैं कि अभी फीफा वर्ल्ड कप चल रहा है, एंड डेफिनेटली अपने फेवरेट टीम को मिस करना नहीं चाहेंगे। तो आपको बता देते हैं कि अगर आप MBC Play ऐप डाउनलोड करना चाहते हैं, यू वांट टू हेल्प, तो हमारी जो टीम है, और ऑफ कोर्स रेडियो मस्ती टीम एंड MBC Play टीम आपके साथ रहेंगी कल सैटरडे 20 जून को आज केंद्र सेंट पियर सुबह 10:30 से लेकर वो भी 1:30 तक, यानी कि 1:30 PM तक, एंड संडे 21 को आट सेंटर पॉइंट ट्रियानों वो भी दिन के 11 से लेकर दोपहर बाद के 2 तक। तो बस ऐसे ही साथ निभाते रहिएगा, एंड ऑफ कोर्स यहाँ पर फुटबॉल मैचेस चल रहे हैं। अभी सुबह सुबह जो 5 वाला मैच शुरू हुआ था मेक्सिको एंड साउथ कोरिया के मुकाबले, सो मेक्सिको इज विनिंग 1-0। अभी टाइम है खत्म होने में 66 मिनट्स हुए हैं, सो मेक्सिको इज लीडिंग 2-1।

आपके आने से तो रौनक भी आ जाते हैं। बस थैंक यू सो मच कविता साथ देने के लिए। मिस्टर प्रवीण राम सरेखा, हैप्पी बर्थडे टू यू। केविन, नव्या फैमिलीज और नीलम, सबकी तरफ से ढेर सारा प्यार। बॉम्बू से मिस्टर धनेश्वर, पत्नी सुनीता, संजीव, निशा, रेखा एंड दबेदस परिवार, हैव ए ग्रेट डे अहेड। पति विशाल, आपके नाम, आपके वाइफ माधवी एंड बेस्ट विशेस टू रवेश, सीतल, रोड्रिग्स, बोजोद्रिग, सचिन, साना, रवेश, प्रीशा, लवशा, डियर वंस की तरफ से ढेर सारा प्यार। एंड सोनम भोला, आपको भी अ वेरी गुड मॉर्निंग।

0: शुक्रवार 19 जून 2026 के प्रातःकालीन समाचार बुलेटिन में आप सभी लोगों का स्वागत किया जाता है। सबसे पहले आज की सुर्खियां। आज संसद में बजट 2026 पेश किया जाएगा जिस पर पूरे देश की निगाहें टिकी हैं। बढ़ती महंगाई और आर्थिक चुनौतियों के बीच सरकार से जनता को बड़े फैसलों की उम्मीद है। बजट 2026-2027 का सीधा प्रसारण आज शाम 5 बजे से MBC चैनलों पर उपलब्ध रहेगा। बजट भाषण के बाद विशेष कार्यक्रमों में विशेषज्ञ और हितधारक महत्वपूर्ण विश्लेषण प्रस्तुत करेंगे। महंगाई, आवास, रोजगार और युवाओं के भविष्य जैसे मुद्दों को लेकर जनता की उम्मीदें काफी बड़ी हुई हैं। बजट से लोगों को अपने दैनिक जीवन में सुधार और आर्थिक मजबूती की ठोस उम्मीद है। पुलिस बल से जुड़े मुद्दों पर पुलिस फाइटर्स यूनियन ने वेतन पेमेंट और प्रमोशन से जुड़ी घोषणाओं की उम्मीद जताई है। साथ ही यूनियन ने पूर्व बजट परामर्श में शामिल न किए जाने पर असंतोष भी व्यक्त किया है। आर्थिक विकास को बढ़ावा देने वाले उपायों पर आर्थिक क्षेत्र की नजरें टिकी हुई हैं। वहीं NGO और सामाजिक संगठनों को उम्मीद की है कि बजट में जमीनी हकीकत से जुड़े ठोस सामाजिक फैसले किए जाएंगे। लाग्रम और सैंपियर में आजसू की एक बड़ी कार्रवाई में कथित तौर पर गांजे की खेती का एक बड़ा पर्दाफाश हुआ। पुलिस ने 32 लाख रुपए से अधिक कीमत के संदिग्ध मादक पदार्थ बरामद किए। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इबोला के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य चेतावनी जारी की है। कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में 15 मई से अब तक 875 लोग संक्रमित हुए हैं, जबकि 202 लोगों की मौत हो चुकी है। नमस्कार, इन सुर्खियों को अब हम विस्तार देते हैं। आज शुक्रवार 19 जून 2026 को सभी की निगाहें राष्ट्रीय सभा पर टिकी हुई हैं। प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम आज शाम 5 बजे अलियंस डी शांजमां का दूसरा बजट पेश करेंगे। कठिन आर्थिक परिस्थितियों के बीच घोषित होने वाले उपायों का जनता और आर्थिक क्षेत्र के हितधारक बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। अधिक जानकारी राजमिला स्तमोनी की रिपोर्ट पर रजनी बेकर के विवरण के साथ।
1: इट इज बजट डे, आखिरकार बजट प्रस्तुत करने का दिन आ ही गया। देश भर में कई क्षेत्रों में उम्मीदें तो बहुत हैं, चाहे घर के लिए हो, कामगारों के लिए, ठेकेदारों के लिए और अवकाश प्राप्त लोगों के लिए भी। यही उम्मीद बंधी हुई है कि जीवन खर्च में वृद्धि का सामना कर पाने के लिए ठोस कदम उठाए जाए। असल में पिछले 29 अप्रैल से 6 मई के बीच वित्त मंत्रालय की ओर से आयोजित बजट पूर्व परामर्श बातचीत के दौरान इसी बात पर चर्चा की गई, लेकिन पहले मई से प्रधानमंत्री डॉ. नवीन राम गुलाम संबंधित तैयारी कर रहे हैं। अलग अलग सार्वजनिक वक्तव्यों के दौरान उन्होंने नियमित रूप से पूर्व सरकार की ओर से प्राप्त कमजोर विरासत का उल्लेख किया। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय जियोपॉलिटिकल अनिश्चितताएं हैं जो ईंधन के दामों, समुद्री फ्रेट के खर्च और इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन को प्रभावित करते हैं और जिनका सीधा असर उपभोक्ताओं को झेलना पड़ता है। पिछले 7 जून को कांचाबल में गन्ने की कटनी की शुरुआत के दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि सावधानी पूर्वक काम करना है। फिर भी उन्होंने उन 5 सिद्धांतों का उल्लेख किया जिन पर बजट टिका हुआ है। जिम्मेदारी, हमदर्दी, आर्थिक कारगरता, सामाजिक न्याय और कमजोर वर्ग के लोगों की सुरक्षा। इसके अलावा वित्तीय आंकड़ों से उन चुनौतियों के बारे में भी पता चलता है जिनका हमें सामना करना है। 2026 के मार्च महीने के अंत में 675.4 बिलियन रुपए था, यानी GDP का 89.5%। आंकड़ों के अलावा इस बजट का इंतजार इसलिए भी किया जा रहा है क्योंकि ये आने वाले वर्षों के लिए एक रोड मैप के समान होगा। मकसद यही, अर्थव्यवस्था को मजबूत करना, खरीद शक्ति संरक्षित करना और ह्यूमन कैपिटल पर भी ध्यान केंद्रित, जिसे देश की प्रमुख समृद्धि की तरह देखा जाता है। क्या प्रधानमंत्री बजट संतुलन के साथ जनता की अपेक्षाओं को पूरा कर पाएंगे? इसका जवाब शाम 5 बजे।
0: आज बजट 2026-2027 के भाषण का सीधा प्रसारण आज शाम 5 बजे से MBC 1, MBC 7 और MBC Play पर देख सकेंगे। क्रेओल मॉरिशियन में समकालीन अनुवाद MBC 2, RM 1 और AM 1 पर उपलब्ध होगा, जबकि भोजपुरी अनुवाद MBC 3, RM 2 और RM 3 पर प्रसारित किया जाएगा। शाम 7:30 बजे से MBC 1, MBC 7 और RM 1 पर एक विशेष संस्करण प्रसारित किया जाएगा। इसमें विदेश मंत्री रितेश रामफल, सांसद रोशन जमन, पूर्व गुड गवर्नेंस मंत्री महेंद्र सिरतन और नवा मोरिस के पैट्रिक बेलकोर तथा अर्थशास्त्री इब्राहिम मलिक बजट 2026-2027 के प्रमुख उपायों का विश्लेषण और चर्चा करेंगे। विदेश मंत्री रितेश रामफल एक अन्य विशेष कार्यक्रम में भी शामिल

0: शामिल होंगी जो सामाजिक आर्थिक क्षेत्र के हितधारकों की प्रतिक्रियाओं पर आधारित होगा। इसमें वे एसोसिएशन ऑफ मर्चेंट मैन्युफैक्चरर्स के डेप्यूटी चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर सामुएल मोजन, एसोसिएशन ऑफ सीजनल रेंटल एक्टर्स के महानिदेशक डारेन मुदेली, मॉरिशस कोऑपरेटिव एग्रीकल्चरल फेडरेशन लिमिटेड के सीईओ सचिन सुकना तथा सतत विकास सलाहकार सुनील दाउका सिंह के साथ विचार विमर्श करेंगे। बजट के सिलसिले में ही रहते हैं, उम्मीदें काफी अधिक हैं। जीवन यापन की लागत, आवास क्रय शक्ति, युवाओं का भविष्य और स्थानीय कृषि जैसे कई मुद्दे लोगों की चिंता का कारण बने हुए हैं। मॉरिशस के नागरिकों के लिए इस बड़े बजट आयोजन से पहले हमने कुछ लोगों से बातचीत कर उनके विचार जुटाए हैं। जनता की अपेक्षा है कि ऐसे ठोस उपाय किए जाएं जो उनके दैनिक जीवन में सुधार लाएं और देश की आर्थिक संभावनाओं को मजबूत करें। इस रिपोर्ट में एक विस्तृत अवलोकन शैली निर्बन के साथ।
1: मुख्य चिंताओं में जीवन यापन की लागत में वृद्धि शामिल है। कई नागरिक घरेलू खर्चों को कम करने के लिए उपायों की मांग कर रहे हैं, विशेष रूप से ईंधन, बिजली और कुछ करों को लेकर।
2: Les plus connus que vous dire, parce que tout est moins cher, la vie est moins chère et pas facile aussi pour être jeune, pour les conseils sur l'avenir de ce pays-là.
3: Moi, j'ai envie une baisse d'essence et aussi pour moi une businessman facilité. Le SME, une baisse de taxes aussi parce que toujours fait monter cher.
1: कई बुजुर्गों का ये मानना है कि भोजन और किराए के बीच तथा दवाइयों के बीच अब दैनिक जीवन को संभालना और भी ज्यादा कठिन होता जा रहा है।
4: Pour le moment, la vie est très dure, surtout pour les personnes âgées qui doivent trouver les médicaments et la nourriture et quelquefois le loyer. Franchement dire, ben on n'arrive pas à trouver les deux bouts.
5: En tant que pensionnaire, nous sommes contents que le gouvernement n'a pas taxé nos pensions. Quand on ajoute nos pensions qui nous gagnent dans le travail, pension vieillesse, parce que nous n'avons pas 65 ans, mais là, nous avons payé taxes et la vie chère. Et nous avons pensé à un jeune professionnel qui peut commencer dans notre carrière. Comment je peux faire pour acheter une case, un terrain pour construire la maison? Trouve quelque chose pour qu'il soit un jeune là. Capable de commencer dans la vie sans qu'ils se tentent d'être à outrance, payer un home loan, après paraître s'en aller pour vivre.
1: युवाओं की ओर से आवास तक पहुंच एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। जमीन और किराए की कीमतों में वृद्धि के कारण घर का मालिक बनना लगातार मुश्किल होता जा रहा है।
6: En tant que jeune, ben, j'espère que le gouvernement contient le soin de mesure qui peut prendre pour être ben low income earners, comme si pour un meilleur style de vie, parce que le salaire n'est pas trop élevé.
1: रोजगार और व्यक्तिगत विकास की अधिक अवसरों की उम्मीद लोग कर रहे हैं।
7: Mais le bon manger, ça quand on a un petit un soulagement après le leasing le tout. Ça quand on est retourné pareil à la même base.
8: Déjà tout qui s'est monté, travail pas besoin de début, ben voilà hein. Ne pas perdre quelque chose de meilleur, vous pensez pour plus pire.
1: बुजुर्गों के पेंशन को लेकर भी कुछ प्रतिक्रियाएं दी गईं।
9: De nos jours, ben jeune, vous n'êtes pas capable, c'est plus ça pour 100 roupies, vous avez fini chez vous la vie.
10: Même étudiant, même pas de travail, avec bon, nous avons gagné quelques gâteaux, tu vois là, la vie n'augmente. Même côté gâteau, moi déjà malheureusement basique, net, même des formes racines, tout ça. Mais je trouve les mots pas tu sais que par bonne bien baissée, inflation tout ça, et on trouve bien un gros manque côté sport tout ça, sponsor, je sais plus ça, on valorise sport aller nourrir. Il y en a beaucoup. Jeune qui a talent, mais je ne pas rester lié à de talent parce qu'il y a un workshop, une facilité. Pas besoin de loin. Je connais qu'il a droppé fun, baiser à l'île Maurice. Tu peux essayer si le si gouvernement donne une chance à Manzen de faire sport.
1: Et or, Pramukh Apeksha, Stania Krishi ko adhik samarthan dena hai.
11: Si nous ne pouvons pas mettre l'emphase de l'agriculture, tout nous devise pour continuer quel pays aller.
1: Ayat par nirbharta kam karne, khadya kimaton par behtar niyantran milne, aur desh ki khadya suraksha masboot hone ki umeed bhi jatai gayi hai.
0: Vivaran abhi yachna mishra ka raha. 2026-2027 के राष्ट्रीय बजट के नज़दीक आने के साथ ही इन अपेक्षाओं से बहसों को और बल मिलने की संभावना है। ये अपेक्षाएं ऐसे समय में सामने आई हैं जब अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अनुसार मॉरिशस की अर्थव्यवस्था में 2026 में लगभग 2.8% की वृद्धि का अनुमान है और मुद्रास्फीति कई परिवारों के लिए चिंता का विषय बनी हुई है। पुलिस बल की ओर से पुलिस फाइटर्स यूनियन के अध्यक्ष सब इंस्पेक्टर सतीश बलजीवन ने उम्मीद जताई है कि पुलिस कर्मियों को पेंडिंग अलाउंस

0: और लंबित प्रमोशन पर प्रगति की घोषणा की जाएगी। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि पुलिस के यूनियन प्रतिनिधियों को पूर्व बजट परामर्श में शामिल नहीं किया गया, जिस पर उन्होंने खेद व्यक्त किया है। याचना मिश्रा का विवरण।
1: फरवरी से संडे अलाउंस नहीं दिया गया है या आंशिक रूप से इसका भुगतान किया गया है। संडे अलाउंस की रकम आधे से ज्यादा कम हुई है। एक साल से पैसेज बेनिफिट की रकम भी नहीं दी गई है। पुलिस उपकरण जैसे बॉडी कैम, टेजर प्राप्त करने की आशा है ताकि हम अपना काम बेहतर तरीके से कर पाएं। पीआरबी रिपोर्ट में मौजूद अलाउंस भी अभी तक नहीं दिया गया है। अभी के लिए जरूरी है जल्द से जल्द कम से कम 200 पुलिस अफसरों की भर्ती करना, क्योंकि सभी इकाइयों में आधे से कम कर्मचारी मौजूद हैं, जबकि काम और कार्रवाइयां दुगनी हो गए हैं।
0: जहाँ आर्थिक क्षेत्र के हितधारक ऐसे उपायों पर नजर रखे हुए हैं जो आर्थिक वृद्धि को गति दे सकें, वहीं एनजीओ और विभिन्न संगठनों को उम्मीद है कि ऐसी घोषणाएं की जाएंगी जिनका सामाजिक प्रभाव व्यापक हो और जो जमीनी स्तर की वास्तविकताओं का समाधान कर सकें। एक बार फिर आशी बाचू की रिपोर्ट पर याचना मिश्रा का विवरण।
1: देश के बजट संबंधी प्राथमिकताएं तय होने के समय कुछ लोग आर्थिक संकेतों से आगे देखने की अपील कर रहे हैं। उनकी अपेक्षाओं में देखभाल कार्य, सहयोग और पारिवारिक जिम्मेदारियों की बेहतर मान्यता शामिल हैं, जो अभी भी बड़े पैमाने पर महिलाओं द्वारा निभाई जाती हैं। जेंडलिक्स मॉरिशस की निदेशक अनुष्का विरासोमी का मानना है कि इन वास्तविकताओं को बजटीय निर्णयों में अधिक स्पष्ट रूप से शामिल किया जाना चाहिए। आज की परिस्थितियों में देखें तो डे केयर ही उनके लिए सबसे बड़ी समस्या बनी हुई है। आर्थिक मूल ढांचे पर भी ध्यान देना इतना ही जरूरी है। काम पर महिलाओं से ज्यादा पुरुषों के हित पर गौर किया जाता है, जो दुर्भाग्य की बात है। सामाजिक क्षेत्र के अन्य साझेदार भी गंभीर चुनौतियों की ओर ध्यान आकर्षित कर रहे हैं। कलेक्टिव एजेंस टुक्सिडा के अध्यक्ष जोआन आशिल नशीली दवाओं की समस्या के बेहतर समाधान और देखभाल की मांग कर रहे हैं।
2: Quand on parle de problématique, il y a la drogue, on parle surtout de la prise en charge et non pas des systèmes répressifs.
1: Drugs के मामलों में देखभाल पर ज्यादा ध्यान दिया जाना चाहिए। इन मरीजों की मदद के लिए ज्यादा बजट की जरूरत है।
2: Des patients, des bénéficiaires qui en ont besoin.
1: इन्हीं सामाजिक मुद्दों की निरंतरता में कमजोर वर्ग की सुरक्षा का प्रश्न भी अपेक्षाओं में प्रमुख रूप से सामने आ रहा है। आउट मोरिस की निदेशक सांद्रिन जुलियन संकट की स्थिति में LGBTQIA+ व्यक्तियों के लिए विशेष आश्रय केंद्रों की मांग कर रही है।
3: Nous espérons que le budget cette année-là y accorde une attention particulière à protection des citoyens mauriciens qui font partie de la communauté LGBTQ+.
1: यही आशा है कि इस साल के बजट में LGBTQ+ के सदस्यों की सुरक्षा का भी प्रावधान हो और साथ में ऐसे दलों में मौजूद उन लोगों की मदद के लिए भी मूल ढांचों की व्यवस्था की जाए जो परेशानियों का सामना करते हैं। ये बहुत जरूरी है और अभी तक ऐसा कुछ भी मॉरिशस में नहीं किया गया है। ये सभी अपेक्षाएं भले ही अलग अलग हों, पर ये एक ही विजन को दर्शाती हैं, एक ऐसा बजट जो देश की सामाजिक वास्तविकताओं के अधिक करीब हो। अब ये दिशा सरकार की घोषणाओं में सम्मिलित होंगी या नहीं, ये देखना बाकी है।
0: अपनी ओर से मॉरिशस फाइनेंस ने सरकार से अपील की है कि वह ऐसे महत्वाकांक्षी उपाय अपनाएं जिससे बदलते वैश्विक आर्थिक परिदृश्य में मॉरिशस नए अवसरों का लाभ उठा सके। संस्था का मानना है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जारी भू राजनीतिक तनावों और वैश्विक वित्तीय केंद्रों के बीच कड़ी प्रतिस्पर्धा के बावजूद देश के पास अपनी स्थिति को और मजबूत करने के लिए महत्वपूर्ण क्षमताएं मौजूद हैं। बजट से पहले मॉरिशस फाइनेंस ने तीन प्रमुख प्राथमिकताएं तय की हैं: अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश की दृश्यता बढ़ाना, कर स्थिरता सुनिश्चित करना और सुधारों के कार्यान्वयन में तेजी लाना। मॉरिशस फाइनेंस की चेयरमैन रूबीना तोजू को सुनते हैं याचना मिश्रा के विवरण के साथ।
1: पहली प्राथमिकता है मॉरिशस के अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय केंद्र रानी इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर की छवि में अधिक निवेश करना। मॉरिशस फाइनेंस का कहना है कि

0: अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों को आकर्षित करने के लिए समर्पित संसाधनों और अधिक महत्वाकांक्षी प्रचार रणनीतियों की आवश्यकता है।
1: Nous avons besoin d'une stratégie autour de nos points forts, donc gestion de patrimoine.
0: हमें अपनी शक्तियों के आधार पर नीतियों की जरूरत है। फैमिली ऑफिसेस, एशिया अफ्रीका के बीच सहयोग, निजी विरासत, व्यवसाय, पर्यावरण और उनसे जुड़ी गतिविधियों का सहयोग देना जरूरी है।
1: Et finalement, l'écosystème réglementaire complet qui soutient ces activités.
0: दूसरी प्राथमिकता है टैक्स व्यवस्था में स्थिरता सुनिश्चित करना। ऐसे समय में जब दुबई, सिंगापुर, डबलिन और GIFT सिटी जैसे वित्तीय अधिकार क्षेत्र लगातार अपनी नीतियों में बदलाव कर रही हैं, किसी भी प्रकार की अनिश्चितता निवेशकों और प्रतिभाओं को अन्य गंतव्यों की ओर मोड़ सकती है। हमारे कंपेटिटर्स चुप नहीं बैठते हैं, उनकी नज़र हमेशा वित्तीय परिस्थितियों पर होती है। जब कोई समस्या या बाधा हो तो वे सारी रकम, सारा आय अन्य देशों की ओर, अन्य दिशाओं की ओर भेजते हैं। हमें स्थिरता की जरूरत है। तीसरी प्राथमिकता अधिक चुस्त और त्वरित कार्य प्रणाली अपनाना, यानी सर्कुलर इकोनॉमी अपनाना। मॉरिशस फाइनेंस चाहता है कि निर्णय लेने और उन्हें लागू करने के बीच का समय कम किया जाए, ताकि मॉरिशस अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में उभरने वाले अवसरों का जल्द से जल्द लाभ उठा सके। मॉरिशस फाइनेंस के अनुसार वित्तीय साल 2026-2027 का बजट केवल एक वित्तीय अभ्यास नहीं होना चाहिए, बल्कि ये एक मजबूत रणनीतिक संकेत होना चाहिए, जिससे मॉरिशस नई वैश्विक आर्थिक व्यवस्था में अपनी प्रतिस्पर्धात्मकता बनाए रख सके। अंतर्राष्ट्रीय चुनौतियों के सामने मॉरिशस को तेजी से कदम उठाने होंगे, ताकि इस अवसर की खिड़की को आर्थिक विकास के एक शक्तिशाली इंजन के रूप में बदला जा सके।
2: और अन्य खबरों में, लांगरे मोसैम्पिया इलाके में कल गुरुवार तड़के आत्सू द्वारा चलाए गए एक विशेष अभियान के दौरान कथित तौर पर गांजे की खेती का पता चला है। सुबह लगभग 6:30 बजे की गई इस कार्रवाई में दो कमरों में उगाए जा रहे संदिग्ध पौधे बरामद किए गए। मौके से पुलिस ने 36 ऐसे पौधे जब्त किए हैं जिनके गांजा होने का संदेह है। इनकी ऊंचाई 60 सेंटीमीटर से लेकर 2 मीटर 10 सेंटीमीटर तक बताई गई है। पौधों को मिट्टी और खाद से भरे प्लास्टिक कंटेनरों तथा थैलों में उगाया जा रहा था। इसके अलावा लगभग 2 किलोग्राम संदिग्ध गांजे की पत्तियों से भरा एक बैग भी बरामद किया गया। पुलिस के अनुसार इन कमरों में हवा निकालने की व्यवस्था के साथ साथ 3 लेड लाइट पैनल लगाए गए थे, जिनका उपयोग कथित तौर पर पौधों की वृद्धि को बढ़ावा देने के लिए किया जा रहा था। बरामद संदिग्ध मादक पदार्थों का कुल अनुमानित मूल्य 32,41,635 रुपये आंका गया है। लगे मोसैपिया के मार्केट लेन के निवासी 40 वर्षीय एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर हिरासत में लिया गया। मामले की जांच फिलहाल जारी है। बात करें फिलहाल विश्व फुटबॉल कप 2026 के बारे में। विश्व फुटबॉल कप की कल के खेले गए मैचों के स्कोर इस प्रकार है। कल रात 8 बजे चेक रिपब्लिक वर्सेस दक्षिण अफ्रीका का स्कोर रहा 1-1, और कल रात 11 बजे स्विट्जरलैंड का सामना हुआ बोस्निया हर्जेगोविना के साथ और स्कोर रहा 4-0, स्विट्जरलैंड 4 बोस्निया हर्जेगोविना 0। और आज सुबह 2 बजे खेले गए मैच ग्रुप बी में कनाडा वर्सेस कतर, कनाडा 6-0, और ग्रुप ए में मेक्सिको वर्सेस साउथ कोरिया, यानी कि फिलहाल जो मैच अभी खेल जा रहा है, मेक्सिको का सामना हो रहा है दक्षिण कोरिया के साथ, और मेक्सिको के लिए पहला गोल दागने वाला लुई होमो है। सो फिलहाल सेकंड हाफ में जो स्कोर है अभी के लिए 1-0 है। आपको आज रात तक के खेले गए मैचों के बारे में, आज रात तक खेले जा रहे मैच के बारे में भी बता देते हैं। आज रात ग्रुप बी में रात 11 बजे यूएसए खेलेगा ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इबोला के बढ़ते प्रकोप को लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य चेतावनी जारी की है। लैबोरेटरी परीक्षणों में पुष्टि हुई है कि कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में

इबोला वायरस से 875 लोग संक्रमित हो चुके हैं। 15 मई को महामारी घोषित किए जाने के बाद से इस बीमारी के कारण 202 लोगों की मौत हो चुकी है। स्वास्थ्य अधिकारी स्थिति पर कड़ी निगरानी रखे हुए हैं और संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। हम मौसम के हाल की ओर। आम हालत हमारे इलाके पर हल्की हवा का बहाव है, अगले 24 घंटों के लिए अनुमान है। सुबह के समय दक्षिण और सेंट्रल प्लेटू वाले इलाकों पर थोड़ी देर के लिए हल्की बारिश होगी, अन्य इलाकों में बाद में आसमान साफ हो जाएगा, मौसम सुहाना रहेगा। दोपहर बाद उत्तर पश्चिम में बादल विकसित होंगे और बारिश होने की संभावना है, अन्य इलाकों में धूप खिलेगी। रात के दौरान आसमान साफ रहेगा, हवा सुबह के समय हल्की बहेगी तथा दक्षिण दक्षिण पूर्व की ओर से 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा बहेगी। समुद्र प्रवाहरेखा के पास सामान्य रहेगा और दक्षिण पश्चिम की ओर से 2 मीटर के ज्वार उठेंगे। तापमान अधिकतम तापमान सेंट्रल प्लेटू पर 23 से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच और तटीय इलाकों पर अधिकतम तापमान 27 से 29 डिग्री सेल्सियस के बीच। न्यूनतम तापमान सामान्य से कम यानी सेंट्रल प्लेटू पर 14 से 16 डिग्री सेल्सियस के बीच और तटीय इलाकों पर न्यूनतम तापमान 18 से 20 डिग्री सेल्सियस के बीच। आज सूर्योदय सुबह 6:44 पर और सूर्यास्त शाम 5:38 पर।

इसके साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हो चला है। इसकी तैयारी में पूरे समाचार डेस्क का सहयोग प्राप्त हुआ है और कंसल्ट पर हमारे सहयोगी कादर का, जिन्हें हम धन्यवाद देते हैं। सुनने वालों को भी आपके ध्यान के लिए धन्यवाद। साथ रहिए, कुछ ही देर में बढ़ते हैं हम शोक समाचारों की ओर। शोक समाचार सुनिए। नंबर 111 अवेन्यू नेहरू फिनिक्स में 60 साल की 60 ईयर्स ओल्ड के श्री ज्ञानदेव जानकी, जिन्हें सुनील के नाम से लोग ज्यादा जानते थे, की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज दिन के 2 बजे उनके घर फिनिक्स से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए आली ब्रियॉक शमशान भूमि ले जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 2 PM। बैतुलेन रॉबिन्सन क्यूपिप में 69 ईयर्स ओल्ड के श्री सिपरसाद रामबन, जिन्हें हेम के नाम से लोग ज्यादा जानते थे, कि मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज दिन के 2 बजे उनके घर क्यूपिप से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बिगाक शमशान भूमि ले जाएगी। क्रिमेशन टुडे 2 PM। नंबर चौदह चर्च एवेन्यू तमारे में 83 साल की 83 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती जयवंती दाजी पैदाशीराम राव जी, और जिन्हें एला के नाम से लोग ज्यादा जानते थे, कि मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज 2 बजे उनके घर तमारे से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए रिवियन वॉक शमशान भूमि ले जाएगी। क्रिमेशन टुडे 2 PM। रोशन लेन यूनियन पार्क में 77 साल के 77 ईयर्स ओल्ड के जनाब मोहम्मद मुस्लिम रोशन, जिन्हें मुस्लिम के नाम से भी लोग ज्यादा जानते थे, इंतकाल कर गए हैं। इनका जनाजा आज सुबह 10 बजे इनके बेटे रियाज रोशन के मकान यूनियन पार्क से उठाकर दफनाने के लिए यूनियन पार्क का कब्रिस्तान ले जाया जाएगा। फ्यूनरल टुडे 10 AM। ग्रांपो रोड नोवेल फ्रांस में 79 ईयर्स ओल्ड की रसूल बी इमाम बख्स, जिन्हें रसूल बी के नाम से लोग ज़्यादा जानते थे, इंतकाल कर गई हैं। इनका जनाजा आज सुबह 11 बजे इनके भाई मोहम्मद शरीफ इमाम बख्स के मकान नोवेल फ्रांस से उठाकर दफनाने के लिए यूनियन पार्क का कब्रिस्तान ले जाया जाएगा। फ्यूनरल टुडे 11 AM। गांधी रोड सेंट जूलियन दुतमों में 50 साल की 50 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती रंजना मानिक पैदाशनाम बिकन, और जिन्हें माया के नाम से लोग ज़्यादा जानती थी, और जो पहले ग्रॉन रिट्रीट की रहने वाली थी, की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज 2:30 बजे उनके पति तोरीजी सिमाद्री के घर सेंट जूलियन दुतमों से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए मेजिन गांव दिमास की शमशान भूमि ले जाया जाएगी। क्रिमेशन टुडे 2:30 PM। मिकाइल सेमोंटे में 79

ताल की 79 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती अंतमा दालेवादु, श्रीमती अंतमा दालेवादु पैदाश नाम अचादु और जिन्हें सूर्या के नाम से हम लोग ज्यादा जानते थे कि मृत्यु हो गई हैं। उनकी अर्थी आज दिन के 1 बजे उनके घर सैमावतै से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए सैमावतै बेलोम की शमशान भूमि ले जाया जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 1 PM। पोंकोलवी सावन रोड नोवेल फ्रांस में 69 साल के 69 ईयर्स ओल्ड के श्री दुष्यंद सुकन जिन्हें विनोद के नाम से लोग ज्यादा जानते थे कि मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज सुबह 11 बजे उनके बेटे कुणाल कुमार सुकन के घर नोवेल फ्रांस से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए रामजी नोवेल फ्रांस की शमशान भूमि ले जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 11 AM। रॉय रोड पेटिट रिविया में 65 साल के 65 ईयर्स ओल्ड के श्री सुरेंद्र आपादु जिन्हें बेबी के नाम से लोग ज़्यादा जानते थे और जो पहले कैपुसिन स्ट्रीट को मॉडल के रहने वाली थी की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज दिन के 1 बजे मुगा फ्यूनरल पुचित रविया से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए शेबेल की शमशान भूमि ले जाया जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 1 PM। शोक में डूबे इन सभी परिवारों के प्रति हमारी गहरी संवेदना है।

0: रेडियो मस्ती।
1: जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना।
2: वेलकम टू RM2
0: रेडियो मस्ती।
3: नॉर्थ साउथ
4: 103.5,
3: ईस्ट वेस्ट
4: 96.4,
3: सेंटर
4: 99.4।
2: RM2 Radio Musti.
0: Radio Musti.
2: The latest news and the greatest mix of music. Feel the Musti.
5: Good morning. आप जुड़े हैं RM2 Radio Musti के साथ टाइम चेक सुबह के 7 बजे है।
0: Morning Beat.
2: James. RM2 Radio Musti in the mix.

0: A good beat for your morning show. RM2
1: Radio Musti.
2: आ ही गया फ्राइडे. Ladies and gentlemen, good morning. कैसे हो आप? Welcome, welcome back here with, of course, Manishma का साथ on RM2 Radio Musti in your morning show. ये है morning beat show. अभी के लिए I get you some really nice track just to wake you up in this Friday morning. वैसे ये जो Friday का vibe होता है, Friday शाम और weekend का vibe, ये morning में आपको थोड़ा सा vibe दे देंगे यहाँ पर. Have a wonderful start of the day. Have a wonderful, wonderful start, of course, with the best of song selection here on RM2 Radio Musti with Manishma till 9 a.m.
0: RM2
1: Radio Musti.
3: L'hiver a pécosté, mais côte métrique, c'est Ban Brie qui peut faire frissonner. Avec Winterstale, Brie crasé. Jusqu'à les 30 juin, 40% réduction, l'ON grand sélection produit. Lavabo, collage, sanitaire et robinetterie, juste pour un l'hiver plus confortable. Métrique, une enseigne du groupe KRMJ.
0: RM2
1: Radio Musti.

लीजिए ये है रेडियो मस्ती और हर सुबह तो आप तो जानती ही हैं ये जो हमारा काम होता है टू वेक यू अप विद द बेस्ट ऑफ स्माइल ऑन द फेस एंड थोड़ा सा खुशियां डालने के लिए एंड आई गेट हियर द टाइम फॉर यू टू रजिस्टर फॉर द बर्थडे ऑफ द डे. यस, आपको क्या करना है कि अगर आपको पता है किसी का जन्मदिन है, अपने का जन्मदिन है, दोस्त का जन्मदिन है, उनका नंबर नाम और पता दोनों दे दो.

0: बिटिया कौन है? उनका नाम है प्रिया. मैंने वहां उनसे बात करते हैं. हेलो जी प्रिया जी.
1: हेलो,
0: कैसे आप?
1: ठीक हैं आप?
0: मैं तो ठीक हूँ. मैं तो बहुत खुश हूँ. एंड ठीक के बाद आप बहुत भी खुश हो जाएंगी. यहाँ पर किसी ने हमको आपका नंबर भेजा है. कह रहे कि यार आज तो मेरी बहन का जन्मदिन है, उनको विश कर लो. आप

0: और रहती है लॉन्ग माउंटेन, राइट?
1: जी हाँ.
0: कैन यू गेस हु सेंड मी द मैसेज?
1: हर्षिता सदा.
0: हाउ कैन यू गेस इट राइट? यस, दिस इज द राइट आंसर. एक्चुअली आपकी बहन ने मैसेज भेजा है आपको ढेर सारी शुभकामनाएं देने के लिए. यहाँ पर ये सरप्राइज है फॉर यू एंड जस्ट टू विश यू वेरी वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे प्रिया जी.
1: थैंक यू वेरी मच.
0: एंड RM2 रेडियो मस्ती के साथ साथ हमारे लुलु हाइपरमार्केट आपको दे रहे हैं वाउचर. ओके जी, आप 2 दिन के अंदर आ सकते हो, कलेक्ट कर सकते हो. वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे. वैसे मैं एक जिंगल चलाना चाहती हूँ फॉर यू एंड दिस वन गोज आउट टू यू फ्रॉम हर्षिता एंड होल फैमिली ऑल्सो.
1: ओके, थैंक यू वेरी मच.
0: Happy birthday to you. Let us sing for you. Happy birthday to you. वैसे अभी आपको क्या करना है कि जब हर्षिता का टाइम हो जाएगा तो आप हमको बताइएगा उनका जन्मदिन कब होगा.
1: हो गया इसी महीने 8 जून को.
0: तो जमनाई जमनाई. अरे आपस में तो बनती बहुत है.
1: हाँ. और उनकी बेटी का 9 जून
0: क्या बात है. तो विश कर लो, ये टाइम है, यू कैन विश. हाँ, वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे. हम सुनते हैं.
1: थैंक यू वेरी मच.
0: यू कैन विश हाउ सो योर लाइफ ऑन रेडियो. या आई नो हर्षिता इज लिसनिंग.
1: आई वुड लाइक टू विश हर्षिता एंड खेविया की स्टिल वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे. बिलेटेड हैप्पी बर्थडे.
0: थैंक यू फ्रॉम हर्षिता एंड योर नीस आल्सो. एंड यहाँ पर आपको ढेर सारी शुभकामनाएं दे रहे हैं RM2 रेडियो मस्ती पूरी MBC टीम की तरफ से. आपको बेस्ट विशेस. हैव अ वंडरफुल डे. एंजॉय टू द मैक्सिमम. एक तो बहुत ही अच्छा दिन पर पड़ा है. आपका जन्मदिन फ्राइडे है तो मस्ट वी गॉट द वीकेंड टू सेलिब्रेट ऑल टुगेदर, राइट?
1: Thank you very much.
0: So, bye bye. Thank you so much. Bye.
1: Okay, have a nice day. Bye.
2: A good beat for your morning show. Morning Beat. RM2.
3: Radio Must.

ढोलबाजी फॉर यू एक पहेली।

0: जितने सारे लोगों के आज जन्मदिन है उनको विश करना चाहते हैं वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे, स्पेशल हैप्पी बर्थडे विश के साथ तो ओम ओम जो कि आज अपना जन्मदिन मना रहे हैं, बेस्ट विशेस फ्रॉम नाना है नानी आंटी शोभा एंड योर गाठिया श्री विद अस एंड योर मॉम डैड सचिन है एंड वरुणा की तरफ से, आपकी मासी की तरफ से किरण है और मौसा की तरफ से है रवि, विव गठिया ऑल्सो हेमा एंड कुशल मौसा जी और मौसी हेमा की तरफ से ये मैसेज आया है, हैप्पी हैप्पी बर्थडे टू यू माय डियर। अनन्या की तरफ से भी, अनिशा एनांशी की तरफ से भी आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। अभी के लिए लेते एक छोटा सा ब्रेक, देन बढ़ते हैं स्पोर्ट्स अपडेट की ओर। ओके
1: रेडियो मस्ती।
2: Tu ne finis l'école? Tu peux redonner un métier qui est dans l'avenir? Tu as envie d'une qualification qui ouvre la peau au travail ou continuer l'étude supérieure? MIT Dicité qui trouve à Eben peut offrir une formation dans le secteur électrique, électronique et ICT. C'est un secteur d'avenir à Maurice et ailleurs. Pour plus de renseignements, téléphone au 404 72 52 ou visite site web MITD.law www.mitd.mu.

0: minutes past 7 in the morning. अभी के लिए बढ़ते हैं स्पोर्ट्स अपडेट्स की ओर. गुड मॉर्निंग टू अरविंद जी.
1: गुड मॉर्निंग आपको. गुड मॉर्निंग RM2 लिसनर्स. द लेटेस्ट फ्रॉम द स्पोर्ट्स वर्ल्ड. मेक्सिको के स्टाडियो ग्वादालाहारा में इसी समय जश्न का माहौल है. क्यों ना हो, अपने वर्ल्ड कप में अपने फैंस के सामने मेक्सिको की टीम नॉकआउट राउंड में जाने वाली पहली टीम बनी, दक्षिण कोरिया को 1-0 से हराकर. फर्स्ट हाफ में 0-0, सेकंड हाफ में साउथ कोरिया के गोलकीपर की गलती पर रोमो ने मैच का मात्र गोल स्कोर किया और मेक्सिको की टीम क्वालिफाई हो गई बेस्ट ऑफ 32 के लिए. उधर वर्ल्ड कप फाइनल्स में कनाडा की पहली जीत, वो भी स्टाइल में. वैंकूवर में गोलों की कतार लगी. 6-0 से कनाडा ने कतार को मसल डाला. कतार के दो खिलाड़ियों को रेड कार्ड दिए गए, एक फर्स्ट हाफ में दूसरा सेकंड हाफ में. 9 खिलाड़ियों की टीम के खिलाफ कनाडा ने गोलों की होली खेली, पर इस बीच स्माइल कुने को गंभीर चोट लगी, शायद वो आगे इस वर्ल्ड कप में नहीं खेल पाएगा. काइल लारिन ने कनाडा का पहला गोल स्कोर किया. जोनाथन डेविड का हैट्रिक, फिर नाथन सालिबा एक ऑन और एक ऑन गोल भी रहा. 6-0 के इस भारी जीत के साथ कनाडा नॉकआउट राउंड में बेस्ट ऑफ 32 में लगभग पहुंच गया. कनाडा के पास 4 अंक है गोल डिफरेंस प्लस 6. स्विट्जरलैंड के पास 4 अंक है गोल डिफरेंस प्लस 3. बोस्निया और कतार के पास 1-1 अंक है. स्विट्जरलैंड ने इस बार गलती नहीं की, 4-1 की जीत बोस्निया पर. मनजाम्बी का डबल, वॉगास और जाका का 1-1 गोल. इस मैच में भी रेड कार्ड बोस्निया के खिलाड़ी मोहम रेमोविच को. स्विट्जरलैंड अब 4 अंक दिए प्लस 3 गोल डिफरेंस के साथ लगभग क्वालिफाई है. ग्रुप का टॉपर कौन बनेगा, फैसला जब कनाडा खेलेगा स्विट्जरलैंड के खिलाफ अगले हफ्ते. कल का पहला मैच ड्रॉ गया 1-1. चेक रिपब्लिक 1 साउथ अफ्रीका 1. पहले चेक रिपब्लिक के लिए फर्स्ट हाफ में सादिलेक ने स्कोर किया, फिर सेकंड हाफ में पेनाल्टी पर मुकुएना ने इक्वलाइज किया.

0: किया। दोनों टीमों के पास एक एक अंक है। अपने अगले मैच की तैयारी के लिए इंग्लैंड की टीम ने कांजा सिटी के खिलाफ एक फ्रेंडली प्रैक्टिस मैच खेला। इवान टोनी का हैट्रिक और रोजर्स वाटकिंस का एक के गोल 5-1 की जीत। ये मैच उन खिलाड़ियों के लिए था जो क्रोएशिया के खिलाफ नहीं खेल पाए थे या कम खेले थे। अब अगले मंगलवार को इंग्लैंड का मुकाबला। आज के फिक्स्चर्स ग्रुप डी में 11 बजे यूएसए वर्सेस ऑस्ट्रेलिया रात्रि के 11 बजे, जो जीतेगा सीधे नॉकआउट राउंड में। ड्रॉ भी काफी हो सकता है क्योंकि पहले मैच में दोनों की जीत हुई थी। यूएसए ने पाराग्वे को 3-0 से हराया था और ऑस्ट्रेलिया ने तुर्की को 2-0 से। ये मैच एमबीसी स्पोर्ट्स 11 और एमबीसी प्ले पर लाइव। ग्रुप सी में सुबह 2 बजे स्कॉटलैंड वर्सेस मोरक्को। स्कॉटलैंड के पास 3 अंक है आईटी को हराकर, जबकि मोरक्को ने ब्राजील को रोका था। मोरक्को के पास 1 अंक है। ब्राजील के फैंस को कल सुबह 4:30 बजे उठकर मैच देखना होगा। ब्राजील का मुकाबला आईटी से होगा और ग्रुप डी में सुबह 7 बजे चाय के साथ तुर्की वर्सेस पाराग्वे। फिर कल रात के 9 बजे नेदरलैंड्स स्वीडन और कल ही मिडफील्ड धमाल जर्मनी वर्सेस आइवरी कोस्ट। ये मैच लाइव एमबीसी स्पोर्ट्स 11 और एमबीसी प्ले पर। आपको बता दें कि एमबीसी प्ले पर सभी मैच लाइव दिखाए जा रहे हैं। ट्रांसफर न्यूज। आर्सेनल ने लेस्टर सिटी से अंडर 19 विंगर जेरेमी मोंगा के लिए पहला ऑफर भेजा, जिसे ठुकरा दिया गया है। आर्सेनल की नजर फ्रांस के इंटरनेशनल खिलाड़ी ब्राडले बाकोला पर भी है। टोटनहम हॉटस्पर और मैनचेस्टर यूनाइटेड इस बार बेल्जियम के मिडफील्डर नाथान डेकाट को टारगेट कर रहे हैं। ट्रांसफर बाजार में टोटनहम हॉटस्पर और मैनचेस्टर यूनाइटेड के बीच चूहे बिल्ली का खेल चल रहा है। लिवरपूल इस बार यूवेंटुस के मिडफील्डर के फ्रेंड चुराम को टारगेट कर रहा है। इराओला एक सेंट्रल मिडफील्डर, एक सेंटर बैक और एक राइट बैक की तलाश में है। याद दिला दें, लिवरपूल ने मुनोज को खरीद लिया है। वो लिवरपूल की पहली साइनिंग होगी और खिलाड़ी आएंगे खिलाड़ी जाएंगे भी ऐसे ही देखेंगे वर्ल्ड कप में क्या होता है। चलते चलते बता दें कि आज मेक्सिको की टीम क्वालिफाई हो गई है नॉकआउट राउंड के लिए और स्विट्जरलैंड कनाडा के लिए भी लगभग तय है। देखेंगे क्या होगा। आई गिव यू मोर डिटेल्स अबाउट द वर्ल्ड कप 8:30 बजे RN2 पर। टिल देन एंजॉय द म्यूजिक।
1: थैंक यू सो मच। सी यू एट 8:30 बजे एंड ऑफ कोर्स थैंक यू सो मच फॉर वेकिंग अप इन द मॉर्निंग एंड मेकिंग दीज यू नो वंडरफुल रिसर्च अबाउट द स्पोर्ट्स वर्ल्ड एंड थैंक यू सो मच फॉर ब्रिंगिंग अस दीज न्यूज़। अरविंद जी हैव अ वंडरफुल वंडरफुल डे आउट देयर।
2: This magazine was brought to you by Quality Decor, the floor expert. RM2 Radio Musti.

0: subscribe to Radio Masti.
1: The time is brought to you by McDonald's.
2: McDonald's. Ba-da-ba-ba-ba. I'm loving it.
1: And RKG Classic Pure Cow Ghee. Share the taste. Share happiness.
0: Radio Masti.
3: North. South.
0: 103.5.
3: East. West.
0: 96.4.
3: Center.
0: 99.4.
4: RM2 Radio Musty.
0: Radio Musty.
4: The latest news and the greatest mix of music. Feel the Musty. Feel the Musty.
5: Time check सुबह के 8 बजे हैं. 8 बजे की भोजपुरी समाचार में आप सब लोग की स्वागत करल जाता. सब लोग की नमस्ते. आप प्रणाम. सबसे आगे देश के बारे में बतियाओ. अब जा आज संसद में बजट 2026 पेश करल जाए, जिकर पर देश के जनता के नजर टिकल बटे. बढ़त महंगाई और आर्थिक चुनौती के बीच जनता सरकार से बड़ा फैसला के उम्मीद करता. और बजट 2026-2027 के सीधा प्रसारण आज सांझ के 5 बजे से MBC के सब चैनल पर होए. आप लोगन के बता देवी लाजा कि MBC 1, MBC 7, MBC Play पर ई सकब देखे. क्रियोल मोरिशियन में समकालीन अनुवाद यानी कि सांझ के जो अनुवाद रही वो MBC 2, MBC और M1 और AM1 पर उपलब्ध हुई, जबकि भोजपुरी भाषा में MBC 3, RM2 और RM3 पर एक प्रसारण हुई. सांझ के 7 बजे के आधा से MBC 1, MBC 7 और RM1 पर एगो विशेष संस्करण के प्रसारण हुई, जिकर में विदेश मंत्री रितेश रामफल, सांसद रोशन जमन, पूर्व गुड गवर्नेंस आगे के जो गुड गवर्नेंस के मंत्री रलन महीन सिरतन, ओनावा मोरिस के पैट्रिक बेलकू और अर्थशास्त्री इब्राहिम मालिक बजट 2026-2027 के प्रमुख उपाय के विश्लेषण और चर्चा करिय जा. विदेश मंत्री रितेश रामफल एगो दूसर विशेष कार्यक्रम में भी शामिल होयन, जोन सामाजिक आर्थिक क्षेत्र के हितधारक लोगन के प्रतिक्रिया पर आधारित रही. ई में एसोसिएशन ऑफ मॉर्शन मैन्युफैक्चरर्स के डिप्टी चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर सैमुअल मोजॉन, एसोसिएशन ऑफ सीजनल रेंटल एक्टर्स के महानिदेशक डारेन मुदली, मॉरिशस कोऑपरेटिव एग्रीकल्चरल फेडरेशन लिमिटेड के CEO सचिन सुखना और सतत विकास सलाहकार सुनील दावका सिंह भी

0: संगे विचार विमर्श करियन जा। और मॉरिशस फाइनेंस सरकार से वैश्विक आर्थिक बदलाव के बीच महत्वाकांक्षी कदम उठाए की अपील कर ली बाटे। संस्था अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा में देश की स्थिति मजबूत करे खातिर तीन गो प्रमुख प्राथमिकता भी सुझाई ली बाटे। और लाग्रमो सैपिया दूसर बारे में बताई ला जा, लाग्रमो सैपिया में आजसु के गो बड़ा कार्रवाई भैल जेकर में कथित तौर पर गांजा के खेती के गो बड़ा पर्दाफाश करल गल। हुआ परी से पुलिस 32 लाख रुपया से जस्ती कीमत के संदिग्ध मादक पदार्थ बरामद कर ली बाटे। और इस सिलसिला में मॉकेट लेन लाग्रेमो सैपिया के एगो 40 बरिस के आदमी के पकड़ल गल बाटे। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बात करी ला जा, सबसे आगे विश्व स्वास्थ्य संगठन एबोला के बढ़त प्रकोप की देखत अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य चेतावनी जारी कर ली बाटी। कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य 15 मई से अभी ले हुआ परी 875 आदमी संक्रमित होल हवन जा, जबकि 202 जना के मौत हो गल बाटी। और फुटबॉल के बारे में बताया ला जा, विश्व फुटबॉल कप जो 2026 बा ओकर अंतर्गत खेलल गल मैच के स्कोर ई प्रकार बाटी। काल रात 8 बजे चेक रिपब्लिक खेल रहल दक्षिण अफ्रीका संगे और एकर स्कोर रहल 1-1, नतीजा 1-1 रहल। और कल रात के ही 11 बजे स्विट्जरलैंड खेलक बोस्निया एजोगोविनिया के संगे और एक स्कोर रहल 4-0, यानी कि स्विट्जरलैंड 4 गो गोल दरलक। और आज फजीर के 2 बजे खेल गल मैच ग्रुप बी में कनाडा खेलक कतो संगे, और हुआ परी कनाडा 6 गो गोल दलक और कतो 0। ग्रुप ए में मेक्सिको फजीर के खेलक और उ खेलक दक्षिण कोरिया संगे, वहाँ परी स्कोर रहल 1-0। लुई होमो मेक्सिको खातिर गोल दलक। और आई होला जो मैच बाटे आज रात के ग्रुप डी में 11 बजे यूएसए खेली ऑस्ट्रेलिया के संगे। और यही संगे ई भोजपुरी के समाचार समाप्त भइल। ध्यान से साथ देला ओका खातिर धन्यवाद। संगे रह सुनब अभी मरनी के समाचार।
1: Your news on NBC Play, NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.tv. Morning Beat.
2: James. RM2, Radio Musty, in the mix.

0: हमारे भोजपुरी भाई लोगन के लिए है। अच्छा जी, ये है भोजपुरी बॉयज किशोर की माँ के बाज में पोपुरी। हियर वी गो, आई गेट यू सम रियली नाइस ट्रैक जस्ट टू वार्म वेलकम यू इन द सेकंड आवर। अभी के लिए मौसम का हाल विद शीता।
1: इट्स द वेदर ब्रॉडकास्ट विद विनर्स।
2: ऑन इट टू स्विनर्स।
3: मौसम का हाल, आम हालत हमारे इलाके पर हल्की हवा का बहाव है, अगले 24 घंटों के लिए अनुमान है। सुबह के समय दक्षिण और ऊंचाइयों पर रहकर बारिश होगी तथा बाद में मौसम सुहाना हो जाएगा। दोपहर बाद उत्तर उत्तर पश्चिम में कुछ बादल विकसित होंगे और थोड़ी देर के लिए बारिश होगी, अन्य इलाकों में धूप खिली रहेगी। रात के दौरान आसमान साफ रहेगा, हवा सुबह के समय हल्की बहेगी तथा दक्षिण दक्षिण पूर्व की ओर से 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बहेगी। समुद्र प्रवाह रेखा के पास सामान्य रहेगा तथा दक्षिण पश्चिम की ओर से 2 मीटर के ज्वार उठेंगे। तापमान, अधिकतम तापमान सेंट्रल प्लेटो पर 23 से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच और तटीय इलाकों पर अधिकतम तापमान 27 से 29 डिग्री सेल्सियस के बीच। न्यूनतम तापमान सामान्य से कम यानी सेंट्रल प्लेटो पर 14 से 16 डिग्री सेल्सियस के बीच और तटीय इलाकों पर न्यूनतम तापमान 18 से 20 डिग्री सेल्सियस के बीच। आज सूर्योदय सुबह 6:44 पर और सूर्यास्त शाम 5:38 पर।
1: Your weather forecast on RM2.
2: Radio Musti.
4: C'est le moment que tout le monde attendait. La fièvre du foot débarque chez Winners avec des offres à ne pas manquer. Profitez d'offres exceptionnelles sur vos produits préférés et retrouvez tous vos indispensables pour vivre le match à petit prix chez Winners. La gamme de Red Bull de 250 ml à 64,95 et toute la gamme de barres de chocolat Cadbury de 150 grammes à 105,95. Le coup d'envoi est lancé. Rendez-vous dès maintenant dans votre magasin Winners pour profiter des offres et animations du moment.
5: On est tous Winners.
6: Communiqué depuis ministère agro-industrie. D'après Animal Diseases Act, ministère peut informer public qui est dans la ferme, centre de production, l'abattoir ou 60 quarantaine qui se bien enregistré le National Livestock Information System, NLIS. Ça concerne tout le monde et compagnie qui est dans la bœuf, cabri, mouton, cochon, volaille, cerf ou abeille. Pour enregistrer, allez au site web agriculture.gouvernement.org ou download l'application NLIS, le Google Play ou App Store. Contactez-nous au 463-3107 ou WhatsApp 5500-1000.
1: RM2
2: Radio Musti.

0: Hari for you from the movie Bajirao Mastani. Ladies and gentlemen, Vishal Dadlani ke vaaz mein 8:15 hue hai. Waise aap sabko good morning bhi kehna chahte hain. Upar se sabhi jo apne breakfast ko miss kar diya hai. I know yaar, hum kabhi kabhi entangle ho jaate hain apne duties mein, bachchon ke dekhbhal ke liye, pati ke liye and everybody. I just want to tell you and for all the men and women who are listening to us right now, ki yaar agar aapne breakfast skip kar diya, koi baat nahi, ek simple and healthy power drink dena chahte मैं आपको, अगर आपके पास बनाना है, keep bananas with you every day, you know, one banana, one glass of milk, या तो almond milk भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, one tablespoon of oats, one teaspoon of honey, and थोड़ा सा dry fruits, सबको blend करके ये आपको instant energy देगी, और fiber और protein तो इसकी इसमें कमी नहीं होगी. और ये जो ड्रिंक है ना, पावर ड्रिंक उसको कहते हैं, लंच तक आपके भूख को भी कंट्रोल में रखेगी. और ये जो बनाना दूध और थोड़े से ड्राई फ्रूट से बना हुआ ये पावर ड्रिंक आपको देगा इंस्टेंट एनर्जी, जैसे कि हमने कहा, और दिन भर के लिए फ्रेश आप फील कर सकते हैं. सो अभी के लिए आई एम गोना प्ले द नेक्स्ट सॉन्ग फॉर ऑल दोस ट्यूनिंग टू आरएमटी रेडियो मसी, जिन्होंने अपना ब्रेकफास्ट मिस कर दिया. कोई बात नहीं, हम आपके साथ ही है. और in a short while we'll be moving forward with the quote of the day.
1: You're listening to a Radio Masti.

0: बजकर 20 मिनट हुए हैं. Here we go for the quote of the day.
1: Avant tout défi, the long shift. Commence par une bonne décision. Nescafé.
0: कहते हैं कि लाइफ इज नॉट अबाउट वेटिंग फॉर द परफेक्ट मोमेंट, इट इज अबाउट मेकिंग एवरी मोमेंट मीनिंगफुल. चैलेंजेस में स्लो यू डाउन बट दे ऑल्सो टीच यू स्ट्रेंथ, पेशेंस एंड रेजिलियंस. कीप मूविंग फॉरवर्ड विद योर फेथ इन हार्ट एंड डिटरमिनेशन इन योर एक्शंस. एवरी स्टेप यू टेक टुडे ब्रिंग्स यू क्लोजर टू योर ड्रीम यू विश टू अचीव टुमारो. वैसे जिंदगी परफेक्ट मौके का इंतजार करने का नहीं बल्कि हर पल को बेहतर बनाने का नाम है. मुश्किलें आपको रोकने नहीं बल्कि मजबूत बनाने आती हैं. अपने हौसलों को बुलंद रखिए क्योंकि आज का हर एक छोटा सा कदम आपकी बड़ी कामयाबी की बुनियाद बन जाता है. थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन आरएम टू रेडियो मस्ती. दैट वाज द कोट ऑफ द डे.
1: Avant tout défi, de long shift, de premier pas qui capable sens tous audi. Il y a toujours une pause, un souffle, un moment. Nescafé First. Après, tout fait une différence. Il n'y a pas une simple tasse. Il y a un nouveau départ, un nouveau l'énergie, un nouveau vision. Peu importe ta mission, peu importe ta question, commence par une bonne décision. Nescafé. Avant ton défi, ton long shift, commence par une bonne décision. Nescafé.
2: A good beat for your morning show. Morning beat. RM2.
3: Radio Musty.

0: सेहत फॉर यू लेडीज एंड जेंटलमैन, ये राघव चैतन्य की आवाज में जोर दिनता गांधी भी साथ में गाती है। वैसे नमस्ते, गुड मॉर्निंग। टुडे मेरी बेटी कृतिका रचोय का जन्मदिन है, आज वो 14 साल की हुई है। विश अ वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे फ्रॉम मामा प्रभा एंड पापा अमर, एंड यहाँ पर बर्थडे ऑफ माय वाइफ आशा फ्रॉम हस्बैंड विक्रम एंड नसोन है कविश। आज मेरी दोस्त, एक्चुअली मेरे दोस्त तुषार का बर्थडे है। हैप्पी बर्थडे, ही इज अ मराठी टीचर। कैन यू प्लीज विश हिम वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे? ऑफ कोर्स। मैं उनकी दोस्त हूँ, श्वेता मेरा नाम है। गुड मॉर्निंग दीदी, हाउ आर यू? हैव अ वंडरफुल डे। हेलो शाम टू यू टू। गिव अ सॉन्ग फॉर प्रीति जो कि हमारे साथ है, एंड प्रीति कनाय, राशि कंदन एंड कलयवानी विरन एंड वंदना सिटिया, थैंक यू सो मच। रूप दी रानी, वन ऑफ योर फेवरेट्स, हियर वी गो।
1: RM2 रेडियो मस्ती।
0: 8:26 हुए हैं। ऐसे इस गाने के बाद ना हम आपको ले चलेंगे सीधा वर्ल्ड कप की ओर। न्यूज़ तैयार है जी, फॉलो ही कर लो।

0: 48 teams, 104 matches. रेडियो मस्ती की टीम के साथ
1: चलिए
0: यूनाइटेड स्टेट्स, कनाडा और मेक्सिको।
2: रेडियो मस्ती के साथ
0: वर्ल्ड कप मैगजीन।
3: Here we go once again. We have Arvind Ji with us for the World Cup special.
4: World Cup special. आज special day है खास तौर पर मेक्सिको के लिए क्योंकि इसी समय वहां स्टेडियो ग्वादलाहारा में जश्न का माहौल है। क्यों ना हो अपने वर्ल्ड कप में अपने फैंस के सामने मेक्सिको की टीम नॉकआउट राउंड के लिए क्वालिफाई हो गई। द फर्स्ट टीम टू क्वालिफाई फॉर द नॉकआउट राउंड। साउथ कोरिया को 1-0 से हराकर एकमात्र गोल बना इस मैच में सेकंड हाफ में रोमो का गोल, सो मेक्सिको इन। वर्ल्ड कप फाइनल्स में कनाडा की पहली जीत, वो भी स्टाइल में, वैंकूवर में गोलों का कतार। वैसे 6-0 से कनाडा ने कतार को मसल डाला। कतार के दो खिलाड़ियों को रेड कार्ड दिए गए, एक फर्स्ट हाफ में दूसरा सेकंड हाफ में। सो कनाडा के लिए अब लगभग दरवाजा खुल गया है फॉर द नेक्स्ट राउंड। सेम फॉर स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड इस बार गलती नहीं की, 4-1 से बोस्निया को हराकर, इसमें मानजाम्बी का डबल रहा और जाका का एक गोल, मतलब स्विट्जरलैंड के लिए स्वीट सफर अगले राउंड के लिए लगभग तय है। अब ग्रुप का, इस ग्रुप का टॉपर कौन बनेगा फैसला जब कनाडा और स्विट्जरलैंड के बीच आमना सामना होगा। वैसे कल के पहले मैच में चेक रिपब्लिक और साउथ अफ्रीका के बीच मैच ड्रॉ 1-1। अपने अगले मैच में इंग्लैंड का मुकाबला गाना से होगा। प्रिपरेशन के लिए कांजा सिटी के खिलाफ एक मैच था, इवान टोनी का हैट्रिक और रोजर्स वाटकिंस का एक गोल, 5-1 से द थ्री लायंस जीत पाए। आज के फिक्स्चर्स ग्रुप डी में 11 बजे यूएसए वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, जो जीतेगा सीधे नॉकआउट राउंड में, ड्रॉ भी काफी हो सकता है क्योंकि पहले मैच में दोनों की जीत हुई थी। यूएसए ने पाराग्वे को हराया था और ऑस्ट्रेलिया ने तुर्की को। ये मैच एमबीसी स्पोर्ट्स 11 और एमबीसी प्ले पर लाइव। ग्रुप सी में सुबह 2 बजे स्कॉटलैंड वर्सेस मोरक्को, स्कॉटलैंड के पास 3 अंक हैं आईसी को हराकर, और जबकि मोरक्को ने ब्राजील को रोका था, मोरक्को के पास 1 अंक है। ब्राजील के फैंस कल सुबह 4:30 बजे उठकर मैच देखना होगा आपको। ब्राजील का मुकाबला आईसी से, और ग्रुप डी में सुबह 7 बजे चाय के साथ तुर्की वर्सेस पाराग्वे, फिर कल रात के 9 बजे नेदरलैंड्स वर्सेस स्वीडन और धमाल जर्मनी वर्सेस आइवरी कोस्ट, ये मैच लाइव एमबीसी स्पोर्ट्स 11 और एमबीसी प्ले पर। कुछ और खबरें आपको दे दें, ये अच्छा लगा ये पढ़ के, ये वर्ल्ड कप में लंबू जी और

0: इंकु भी हैं। कद यानी हाइट के हिसाब से ऑस्ट्रिया का गोलकीपर फ्लोरियन वेगेले इस वर्ल्ड कप का सबसे लंबा कद वाला खिलाड़ी है, 6 feet 9 inch, 2 meter 5 centimeter। फिर पनामा का स्ट्राइकर सेजा यानी इस शॉर्टेस्ट प्लेयर 5 feet 3 inch, 1 meter 7 centimeter। फुटबॉल सबके लिए है, न बड़ा न छोटा, रिगार्डलेस ऑफ साइज यहां पर लंबू और छोटू दोनों है। राइट, आई कैच यू दिस आफ्टरनून फॉर द लेटेस्ट। टेक केयर, बाय बाय।
1: Thank you so much for the updates, Arvindji. Have a wonderful, wonderful day out there. And that was the special World Cup. 8:33 FIFA World Cup
2: 2026, 11 June se 19 July. Catch all the news, views, previews, and latest updates.

क्या गाना है अभी के लिए 8:42 हुए हैं। आप चुने हैं एटीट्यूड रेडियो मर्सी के साथ। क्या कहना था, मैं ना आप सभी को विश करना चाहते हो वंडरफुल डे अहेड। इतने सारे मैसेजेस आए हुए हैं एंड दिस वन के साथ कृतिका ऑल्सो, एंड आई वांट टू डेडिकेट द नेक्स्ट सॉन्ग टू माय फ्रेंड्स अंजनी, प्रिया, छाया, गीता, वी आर नाउ वे फॉर टीम बिल्डिंग।

फ्रॉम प्रिया पादो की तरफ से मैसेज आया है. एंड यहाँ पर हम ये भी कहना चाहते हैं कि बी द वन हु कैन ब्रिंग अ स्माइल ऑन अदर पीपल्स फेसेस आल्सो, या एंटर द रूम एंड बी द लाइट आल्सो, जो कि हर किसी के मूड को और भी बेहतर बना सकता है. RM2 Radio Musti.

0: You're listening to RMT Radio Masti.
1: की प्यार में फॉर यू लेडीज एंड जेंटलमैन तैकन फ्रॉम ओवी परम सुंदरी. वैसे सुबह सुबह आप क्या पढ़ते हो, क्या ग्रहण करते हो, ये दिमाग में क्या चलता है, ये दिन भर के लिए आपके मूड को भी अफेक्ट भी कर सकता है. वैसे मैं ना ऑनलाइन में कुछ पढ़ रही थी बस सुबह सुबह आने से पहले. वैसे ये जो बात थी आई जस्ट वॉन्टेड टू कंफर्म विद विकास, बट ये साइंटिस्ट हैज एक्चुअली हैव अनवील्ड द वर्ल्ड फर्स्ट न्यूक्लियर वर्किंग न्यूक्लियर क्लॉक, अ रिवोल्यूशनरी डिवाइस दैट कुड बी अप टू 10,000 times more precise than today's best atomic clocks. This breakthrough could transform GPS navigation, telecommunications, space exploration, and even help scientists search for new laws of physics beyond current understanding. वैसे सारे जो ये बातें हैं GPS navigation, telecommunication, ये तो साथ में ही चलता है, लेकिन ये जो nuclear working nuclear क्लॉक का ये जो बात है इट्स अनबिलीवेबली 10,000 times more precise है देन द बेस्ट एटमिक क्लॉक्स इन द वर्ल्ड.

0: चलिए जी, इसी गाने के साथ जाने का समय हो चला है। निल मलियाड़ी है 9 से लेकर 12 बजे तक आपका साथ निभाने के लिए। बाय, हैव अ वंडरफुल डे।
1: RM2 रेडियो मस्ती।
2: Nous fin arrive demi-finale débat climat saison 4. Ban demi-finaliste pour nous autres rendez-vous pour une soirée bien animée au climat. Débat climat, c'est une initiative MCB et Creative Gandhi Science Center avec collaboration Dr François Gemen, spécialiste en environnement. Rendez-vous samedi 20 juin à partir 8h30 à soir au MBC N et MBC SAT. N'a pas raté ça.

0: Welcome to RM2
1: Radio Musti.
2: North, South,
1: 103.5,
2: East, West,
1: 96.4,
2: Center,
1: 99.4.
0: RM2 Radio Musti.
1: Radio Musti.
0: The latest news and the greatest mix of music. Feel the Musti.
3: Time check, subah ke 9 baje hai.
4: आई मिलते हैं अशिता रघु से, सुनते हैं संक्षिप्त समाचार। नमस्कार अशिता।
3: नमस्कार विदिता, श्रोताओं को भी नमस्कार। संक्षिप्त समाचार में आप सभी लोगों का स्वागत किया जाता है। आज संसद में बजट 2026 पेश किया जाएगा, जिस पर पूरे देश की निगाहें टिकी हुई हैं। बढ़ती महंगाई और आर्थिक चुनौतियों के बीच सरकार से जनता को बड़े फैसलों की उम्मीद है। और बजट 2026-2027 का सीधा प्रसारण आज शाम 5 बजे से MBC 1, MBC 7 और MBC Play पर आप देख पाएंगे। क्रियोल मोरिशिया में समकालीन अनुवाद MBC 2 और M1 और AM 1 पर उपलब्ध होगा, जबकि भोजपुरी अनुवाद MBC 3 और RM 3 पर प्रसारित किया जाएगा, जबकि हिंदी अनुवाद RM 2 पर होगा। शाम 7:30 से MBC 1, MBC 7 और RM 1 पर एक विशेष संस्करण प्रसारित किया जाएगा। इसमें विदेश मंत्री रितेश रामफल, सांसद रोशन जमन, पूर्व गुड गवर्नेंस मंत्री महेंद्र सिरतन, ओनावो मोरिस के पैट्रिक बेलकूर तथा अर्थशास्त्री इब्राहिम मलिक बजट 2026-2027 के प्रमुख उपायों का विश्लेषण और चर्चा करेंगे। विदेश मंत्री रितेश रामफल एक अन्य विशेष कार्यक्रम में भी शामिल होंगे, जो सामाजिक आर्थिक क्षेत्र के हितधारकों की प्रतिक्रियाओं पर आधारित होगा। इसमें एसोसिएशन ऑफ मर्चेंट मैन्युफैक्चरर्स के डेप्यूटी चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर सैमुअल मोजन, एसोसिएशन ऑफ सीजनल रेंटल एक्टर्स के महानिदेशक डारेन मुदली और मॉरिशस कोऑपरेटिव एग्रीकल्चरल फेडरेशन लिमिटेड के सीईओ सचिन सुकना तथा सतत विकास सलाहकार सुनील दाउका सिंह के साथ विचार विमर्श करेंगे। अन्य खबरों में हम बजट के सिलसिले में ही रहते हैं। मॉरिशस फाइनेंस ने सरकार से वैश्विक आर्थिक बदलावों के बीच महत्वाकांक्षी कदम उठाने की अपील की है। संस्था ने अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा में देश की स्थिति मजबूत करने के लिए 3 प्रमुख प्राथमिकताएं भी सुझाई हैं। ओला ग्लोबल सैंपियर में आत्सू की एक बड़ी कार्रवाई में कथित तौर पर गांजे की खेती का एक बड़ा पर्दाफाश हुआ है। पुलिस ने 32 लाख रुपये से अधिक कीमत के संदिग्ध मादक पदार्थ बरामद कर एक 40 वर्षीय व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विश्व स्वास्थ्य संगठन ने एबोला के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य चेतावनी जारी की है। कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में 15 मई से अब तक 875 लोग संक्रमित हुए हैं, और जबकि 202 लोगों की मौत हो चुकी है। और वहीं रूस के बारे में बात करें, रूस की राजधानी मॉस्को के आसपास बड़े पैमाने पर ड्रोन हमले के बाद तेल रिफाइनरी को नुकसान पहुंचने की खबर है। इस घटना में धुआं और काले तेल की बारिश जैसी स्थिति बनी हुई है। अंत में बढ़ते हम फुटबॉल की ओर। विश्व फुटबॉल कप के कल खेले गए मैच के स्कोर इस प्रकार है। कल रात 8 बजे चेक रिपब्लिक वर्सेस दक्षिण अफ्रीका, ये स्कोर रहा 1-1। और कल रात 11 बजे स्विट्जरलैंड ने खेला बोस्निया अर्जेगोविना के खिलाफ और स्कोर रहा 4-0। आज सुबह 2 बजे खेले गए मैच ग्रुप बी में कनाडा वर्सेस कतर 6-0 कनाडा 6, और ग्रुप ए में मेक्सिको का सामना हुआ दक्षिण कोरिया के साथ, और मेक्सिको के लिए गोल डाला लुई रोमो ने, यानी कि स्कोर रहा 1-0। आज रात आपको हम याद दिला देते हैं, ग्रुप डी में रात 11 बजे यूएसए खेलेगा ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। तो इसी के साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हो चला। आपके ध्यान के लिए धन्यवाद और नमस्कार।
1: Your news on NBC Play, NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.tv. Welcome to RM2.
0: Musti Mornings. Radio Musti.

0: Welcome to RM2.
1: Musty Mornings. Radio Musty.
0: And yes, it's your RM2 Radio Musty. Namaste, dosto. Good morning or welcome hai aap sabhi ka Musty Morning Show mein with Nirmani. Aaj 19th June ko hum celebrate kar rahe hai International Box Day aur Real Food Day. तो इस आओ में आपको डिटेल्स में बताने वाले हैं उसे होगा आपका होरोस्कोप सो मेक श्योर स्टे ट्यून्ड ग्रेट म्यूजिक गुड वाइब्स और लॉट्स ऑफ मस्ती कमिंग योर राइट वे ही RM2 रेडियो मस्ती पर ही
1: RM2
2: रेडियो मस्ती फील

0: Welcome to RM2.
1: Musty Mornings Radio Musty.
2: हाय नौजवानों, दिल ना लगाना। वैसे उससे पहले दिल बेकरार था, क्यों है ये खुमार? वैसे खुमार का तो पता नहीं, लेकिन अक्षय कुमार की स्वाग का नशा तो जरूर है, जो स्क्रीन पे आते ही सीन चुरा लेते हैं। और जब बात हो वेलकम टू द जंगल जैसे कॉमेडी केओस की, तो लगता है दरवाजे पे सिर्फ एंट्री नहीं होती है, एंट्री प्लस एंट्री प्लस एंट्री होती है, फुल पैसा वसूल वाला एंट्री। गुलमाल हो या धमाका, अक्षय कुमार तो एक्शन भी है और कॉमेडी भी बन जाता है। कॉमेडी हो या डायलॉग, सीधा लव टू एक्सप्लोजन होता है। बस इतना समझ लीजिए कि कुमार का इलाज नहीं होता और अक्षय कुमार का कॉम्पिटिशन नहीं होता। तो चलिए हो जाए अनदर ट्रेंडिंग सॉन्ग आपके नाम ऑन दिस ब्यूटिफुल फ्राइडे मॉर्निंग।
0: Welcome to RM2.
1: Musty Mornings Radio Musty.

0: Your daily horoscope. RM2 Radio Musti.
1: चलिए अभी के लिए बढ़ते हैं आपके राशिफल की तरफ, जानते हैं कि आज के सितारे आपके लिए कौन सा मैसेज लेकर आए हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद
2: एरीज मेष राशि।
1: अरे वाह, आज तो आपकी एनर्जी फुल मैं हूं ना मूड में रहेगा। काम में आप ही लीडर बनोगे, बस थोड़ा पहले बोलो बाद में सोचो बिल्कुल मत करना। गुस्सा आए तो समझ लो कि मूड क्रैश हो सकता है कभी भी, सो चिल रहना ही बेहतर है। लकी कलर आज आपका है रेड और नंबर है 9।
2: टॉरस वृषभ राशि।
1: आज तो कंफर्ट जोन आपका बेस्ट फ्रेंड है, पैसा और प्लानिंग दोनों स्मूथली चलेंगे, बस ज्यादा लेजी मत हो जाना। खाना पीना और रिलैक्स करना टॉप प्रायोरिटी रहेगी, दैट इज योर सेल्फ केयर, तो आप वही करना। लकी कलर आपका है ग्रीन और नंबर है 6।
2: जेमिनी मिथुन राशि।
1: आज आपका टॉकेटिव मोड ऑन हो चुका है, लोग आपकी बातों से इम्प्रेस

0: होने वाले हैं, बस ओवरथिंकिंग का नेटफ्लिक्स मत चला देना, नए कनेक्शंस बन सकते हैं, थोड़ा सोशल रहो। लकी कलाव का है येलो और नंबर है 5।
1: कैंसर कर्क राशि।
0: आज दिल सॉफ्ट और मूड थोड़ा इमोशनल रहेगा, फैमिली वाइब स्ट्रांग होगी और कोई पुरानी याद ट्रिगर कर सकती है आपको। बस ज्यादा सेंटिमेंट होना, पॉपकॉर्न लेकर आप रिलैक्स कीजिएगा कोई भी अच्छी मूवी देखकर। लकी कलाव का है व्हाइट और नंबर है 2।
1: लियो सिंह राशि।
0: आज आप एंट्री लोगे तो बैकग्राउंड म्यूजिक अपने आप बजने लगेगा, कॉन्फिडेंस फुल हीरो टाइप रहेगा, लोग आपको नोटिस करेंगे जरूर, बस ईगो को आपको थोड़ा साइड में रखना है वरना सीन फ्लिप हो सकता है। लकी कलर आपका है गोल्डन और नंबर है 1।
1: वर्गो कन्या राशि।
0: परफेक्शन मोड आपका फुली एक्टिव रहेगा, काम स्मूथली होगा, बस छोटी छोटी बातों में अटकना मत, रिलैक्स भी करना जरूरी है वरना माइंड ओवरलोड हो जाएगा। लकी कलर आपका है नेवी ब्लू और नंबर है 7।
1: लिब्रा तुला राशि।
0: आज आप पीस मेकर बनोगे, सब लोग आपसे एडवाइस लेने आएंगे, आप डिप्लोमेट मोड में रहोगे, बस खुद के डिसीजंस भी क्लियर रखना। लकी कलर आपका है पिंक और नंबर है 6।
1: स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि।
0: आज आपकी वाइफ थोड़ी मिस्टीरियस और पावरफुल रहेगी, लोग समझ नहीं पाएंगे कि आप क्या सोच रहे हो, इंट्यूशन स्ट्रांग है, बस रिवेंज मोड ऑन मत कर देना। लकी कलर आपका है ब्लैक और नंबर है 8।
1: सजिटेरियस धनुराशि।
0: मूड आपका फुल है लेट्स गो ऑन अ ट्रिप वाला, एडवेंचर और फन के चांसेस हाई है, बस ओवर कॉन्फिडेंस में कोई रिस्की डिसीजन मत ले लेना। लकी कलर आपका है पर्पल और नंबर है 3।
1: कैप्रिकॉर्न मकर राशि।
0: ग्राइंड मोड ऑन है और काम का रिजल्ट धीरे धीरे लेकिन सॉलिड मिलेगा, बस थोड़ा ब्रेक ले लेना, रोबोट नहीं है आप। लकी कलर आपका है ब्राउन और नंबर है 4।
1: एक्वेरियस कुंभ राशि।
0: आज आइडियाज इतने आएंगे कि नोटबुक खत्म हो जाएगा, फ्रेंड्स के साथ फन और क्रिएटिविटी दोनों हाई रहेगा, बस रियलिटी चेक भी कभी कभार ले लेना। लकी कलर आपका है ब्लू और नंबर है 11।
1: पाइसेस मीन राशि।
0: आज आप फुल ड्रीमी मोड में रहोगे, म्यूजिक आर्ट और इमेजिनेशन फुल पीक पर होगा, बस दुनिया को इग्नोर मत करना वरना हेलो अर्थ सुनना पड़ सकता है। लकी कलर आपका है समुद्री हरा और नंबर आपका है 7।
2: योर डेली हॉरोस्कोप RM2 रेडियो मस्ती।

0: Welcome to RM2.
1: Musty Mornings Radio Musty.
0: अरे छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे 12 बजे तक. निलमनी यही पर है आपके साथ में अमेजिंग गानों के साथ साथ टू मेक योर फ्राइडे फन डे. टू मेक श्योर कि यही पर आप कनेक्टेड रहना. इट्स 9:48 ऑन योर RM2 रेडियो मस्ती. वेलकम टू RM2
1: मस्ती मॉर्निंग्स रेडियो मस्ती.

0: Welcome to RM2.
1: Musty Mornings Radio Musty.
0: हफ्ते में चार शनिवार होना चाहिए, क्या मस्ती करते ना अगर ये सच में होता। लेकिन अभी भी देर नहीं है, इट्स फ्राइडे, सो फ्राइडे मचाते हैं। लेट्स कीप अप द वाइब हाई नाउ। RM2 रेडियो मस्ती पर, यू स्टे कनेक्टेड एंड लेट्स डाइव राइट बैक इनटू द नेक्स्ट वन।
2: Welcome to RM2.
1: Musty Mornings Radio Musty.

0: चलिए सुंदर संक्षिप्त समाचार आपसे शीता नमस्कार।
1: नमस्कार नीलमणि, श्रोताओं को भी नमस्कार। संक्षिप्त समाचार में आप सभी लोगों का स्वागत किया जाता है। आज बजट डे है और पूरे देश में उम्मीदों का माहौल है। घर परिवार, कामकाजी लोग, उद्यमी और सेवानिवृत्त नागरिक यानी कि रिटायर्ड जो लोग हैं, सभी बढ़ती जीवन यापन लागत से निपटने के लिए ठोस उपायों की उम्मीद कर रहे हैं। ये बात वित्त मंत्रालय द्वारा 29 अप्रैल से 6 मई तक आयोजित पूर्व बचत परामर्शों में भी सामने आई है। पहली मई के बाद से प्रधानमंत्री डॉ. नवीन रामगुलाम लगातार विभिन्न सार्वजनिक बयानों में पिछली सरकार से विरासत में मिली कमजोर आर्थिक स्थिति का उल्लेख कर रहे हैं। इसके साथ ही अंतर्राष्ट्रीय भू राजनीतिक अनिश्चितताओं का असर भी बना हुआ है, जिससे ईंधन की कीमतें, समुद्री फ्रेट और आयातित मुद्रास्फीति प्रभावित हो रही है, जिसका सीधा असर उपभोक्ताओं पर पड़ रहा है। आज बजट 2026-2027 के भाषण का सीधा प्रसारण आज शाम 5 बजे से MBC 1, MBC 7 और MBC Play पर देख पाएंगे। क्रियोल मोरिशिया में समकालीन अनुवाद MBC 2 और M1 और AM1 पर उपलब्ध होगा, जबकि भोजपुरी अनुवाद MBC 3 और M3 पर प्रसारित किया जाएगा, जबकि हिंदी अनुवाद RM2 पर। शाम 7:30 बजे से MBC 1, MBC 7 और M1 पर एक विशेष संस्करण प्रसारित किया जाएगा। इसमें विदेश मंत्री रितेश रामफल, सांसद रोशन जमन, पूर्व गुड गवर्नेंस मंत्री महेंद्र सिरतन, ऑनावो मोरिस के पैट्रिक बेलकूर तथा अर्थशास्त्री इब्राहिम मालिक का बजट 2026-2027 के प्रमुख उपायों का विश्लेषण और चर्चा करेंगे। विदेश मंत्री रितेश रामफल एक अन्य विशेष कार्यक्रम में भी शामिल होंगे, जो सामाजिक आर्थिक क्षेत्र के हितधारकों की प्रतिक्रियाओं पर आधारित होगा। पुलिस बल की ओर से पुलिस फाइटर्स यूनियन के अध्यक्ष सब इंस्पेक्टर सतीश बलजीवन ने उम्मीद जताई है कि पुलिस कर्मियों को पेंडिंग अलाउंस और लंबित प्रमोशन पर प्रगति की घोषणा की जाएगी। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि पुलिस के यूनियन प्रतिनिधियों को पूर्व बजट परामर्श में शामिल नहीं किया गया, जिस पर उन्होंने खेद व्यक्त किया है। जहां आर्थिक क्षेत्र के हितधारक ऐसे उपायों पर नजर रखे हुए हैं जो आर्थिक वृद्धि को गति दे सकें,

0: वहीं गैर सरकारी संगठन और विभिन्न संगठनों को उम्मीद है कि ऐसे घोषणाएं की जाएंगी जिनका सामाजिक प्रभाव व्यापक हो और जो जमीनी स्तर की वास्तविकताओं का समाधान कर सके। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पश्चिमी अफ्रीकी देश नाइजीर की राजधानी नियामे में स्थित देश के सबसे बड़े हवाई अड्डे दियोरी हमानी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर कल गुरुवार को हुए सशस्त्र हमले में 35 लोगों की मौत हो गई। स्थानीय निवासियों के अनुसार सुबह की नमाज के तुरंत बाद हवाई अड्डे के क्षेत्र में विस्फोटों और गोलीबारी की आवाज़ें सुनाई दी। नाइजीर के रक्षा मंत्रालय ने बताया कि मृतकों में 22 हमलावर, 11 सैनिक और 2 नागरिक शामिल हैं। इसके साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हो चला। साथ रही सुन पाएंगे शोक समाचार। शोक समाचार सुनिए। पुची विलाज रोड गुडलैंड्स में 62 साल के 62 ईयर्स ओल्ड के जनाब मोहम्मद सलीम नूरानी गुजू जिन्हें सलीम गुजू के नाम से भी लोग ज़्यादा जानते थे, इंतकाल कर गए हैं। इनका जनाजा आज 12 बजे इनके बेटे मोहम्मद रहमत नदीम गुजू के मकान गुडलैंड से उठाकर सबसे पहले नमाज जनाजा के लिए जुमा मस्क गुडलैंड्स ले जाया जाएगी। फिर दफनाने के लिए बेलमो का कब्रिस्तान। फ्यूनरल टुडे एट नून। 86 साल 86 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती रेणुका बिनिश्री सिंह, जिन्हें रेणुका के नाम से लोग ज़्यादा जानते थे, कि मृत्यु हो गई हैं। उनकी अर्थी आज शाम 3 बजे लाशापेल एलियनसन बुबासे से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए शेबेल की शमशान भूमि ले जाया जाएगी। क्रिमिशन टुडे 3 PM। शोक में डूबे इन दोनों परिवारों के प्रति हमारी गहरी संवेदना है।
1: NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.tv. Welcome to RM2
2: Musty Mornings Radio Musty.

0: Welcome to RM2.
1: Musty Mornings. Radio Musty.
0: दस बजकर दस मिनट हो चला है। वेलकम बैक टू आरएम2 रेडियो मस्ती।

0: Welcome to RM2.
1: Musty Mornings Radio Musty.
0: म्यूजिक का थेरेपी होता है द बेस्ट एंड आर एम जू रेडियो मस्ती पर मिलता है आपको हमेशा द बेस्ट। इसने मनी स्वागत है आपका मस्ती मॉर्निंग की सेकेंड आवर पर, जहां पर आपको मिलने वाला है लॉट्स ऑफ टिप्स। एंड यस, पहले आवर में आपको बताया था हमने कि आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं रियल फूड डे। तो आज का चैलेंज आपके लिए है, एक अनहेल्दी स्नैक कम और एक रियल फूड ज़्यादा कंज्यूम कीजिए। निभा पाएंगे आप ये चैलेंज, देखेंगे। आप बस कनेक्टेड रहना आरएम जू रेडियो मस्ती के साथ।
2: वेलकम टू आरएम2
1: मस्ती मॉर्निंग्स रेडियो मस्ती।

0: Welcome to RM2.
1: Musty Mornings Radio Musty.
0: And yes, tips आपके लिए हाजिर है. Incoming होंगे हर दो गानों के बीच में. तो सबसे पहला और जरूरी टिप है वाटर. जी हाँ, पानी पीजिए मेरे दोस्त. सुबह घर से निकलने से पहले एक ग्लास पानी जरूर पिए. आई नो कॉफ़ी आपको जगाती है, लेकिन पानी आपके बॉडी को एक्टिवेट करता है और थकान कम महसूस होती है. लेकिन चिंता का विषय ये है कि पानी का इंटेक कैसे बढ़ाया जाए. सिंपल है यार, मोबाइल से सब कार्य आसान होता है. तो रिमाइंडर डाल दीजिए हर 10-15 मिनट का, एंड वोला, समस्या का हल मिल गया. सो डू ड्रिंक योर वाटर एंड हाइड्रेट योरसेल्फ विद योर आरएम टू रेडियो मस्ती.
2: वेलकम टू आरएम2
1: मस्ती मॉर्निंग्स रेडियो मस्ती.

0: Welcome to RM2.
1: Musty Mornings. Radio Musty.
0: And that was perfect गाना गुरु रंधावा की आवाज में non-stop नखरे vibes. Friday है अगर आपका चेहरा उतरा हुआ है इस एनर्जी को किसी के साथ भी शेयर मत कीजिएगा. Instead, let's try to vibe. Full volume पर करते हैं म्यूजिक को और छोटे

0: छोटे मूवमेंट्स ही सही, लेट्स मूव इन वाइब विद दिस नेक्स्ट सॉन्ग। एंड अगर हो सके आज किसी एक पर्सन को जेन्युइन कॉम्प्लीमेंट दीजिएगा, उनका भी दिन बन जाएगा और आपका मूड भी बेहतर हो जाएगा।
1: RM2 Radio Masti. Feel the

0: Welcome to RM2.
1: Musty Mornings Radio Musty.
2: वैसे भी टाइम हो चला है पोस्ट चेकिंग का। अरे ऐसे मोबाइल से चिपक क्यों रहे हो यार, अभी सीधे बैठ जाइए या फिर खड़े हो जाइए। आई नो कभी कभी मैं बॉसी बन जाती हूँ, लेकिन आपके भले के लिए ही बोलती हूँ। गुड पोस्चर सिर्फ कॉन्फिडेंस नहीं बढ़ाता, लेकिन आपका बैक पेन भी कम करता है। अगर पीठ पर या कमर पर दर्द हो रहा है, इसी फसाद की जड़ है दैट इज योर पोस्चर, तो ठीक करिए उसे और कंटिन्यू करते हैं इस ब्यूटीफुल जर्नी को। एंड ऑल्सो डाउनलोड करना ना भूले अपने MBC प्ले 1.0 के ऐप को, वहाँ पर आपको मिलने वाले हैं सारे अपडेट्स। सो यही पर आप हमारे साथ कनेक्टेड रहिए।
1: RM2
0: Radio Musty.
1: Feel the Musty.

0: जाते रहते हैं, लेकिन कॉन्फिडेंस जो है वो कभी आउट ऑफ स्टाइल नहीं होता है। तो आज का टिप है, अगर आपका आउटफिट सिंपल है, स्टेटमेंट एक्सेसरी ऐड कीजिए, वॉच, ईयरिंग्स या सनग्लासेस। छोटी सी डिटेल बड़ा इम्पैक्ट देता है। मोनोक्रोम आउटफिट्स यानी कि एक ही कलर कि फैमिली के शेड्स को पहने इंस्टेंटली क्लासी और पॉलिश लुक देता है। फ्राइडे ऑफिस लुक के लिए स्मार्ट कैजुअल्स भी परफेक्ट रहता है, कंफर्टेबल भी है, स्टाइलिश भी, एंड ऊपर से वीकेंड वाइब शुरू हो रहे हैं तो प्रोफेशनलिज्म भी बरकरार रहना चाहिए। कपड़े महंगे होना ज़रूरी नहीं है, वेल फिटेड होना ज़रूरी है। गुड फिटिंग किसी भी आउटफिट को प्रीमियम बना देती है। एंड फैशन का मतलब सबसे अलग दिखना नहीं है बल्कि अपने आप को बेस्ट फील करना है।
1: Fashion Tips was powered by Halkori Fashion, House of Ready-Made Garments. RM2 Radio Musti.

0: Welcome to RM2
1: Radio Musty.
2: North, South,
1: 103.5,
2: East, West,
1: 96.4,
2: Center,
1: 99.4.
0: RM2 Radio Musty.
1: Radio Musty.
0: The latest news and the greatest mix of music. Feel the musty.
3: सुबह के 11 बजे है। चलिए सुनते हैं संक्षिप्त समाचार। आपसे अशिता नमस्कार।
4: नमस्कार निर्मणि, श्रोताओं को भी नमस्कार। संक्षिप्त समाचार में आप सभी लोगों का स्वागत किया जाता है। सबसे पहली स्थानीय खबरें। उम्मीदें काफी अधिक हैं, जीवन यापन की लागत, आवास, क्रय शक्ति, युवाओं का भविष्य और स्थानीय कृषि जैसे कई मुद्दे लोगों की चिंता का कारण बने हुए हैं मॉरिशस के नागरिकों के लिए। इस बड़े बजट आयोजन से पहले हमने कुछ लोगों से बातचीत की और यही सुनने को मिला कि जनता सरकार से अपेक्षा कर रही है बहुत ठोस कदमों के लिए, जिससे देश की आर्थिक संभावनाओं को मजबूत किया जा सके। 2026-2027 के राष्ट्रीय बजट के नज़दीक आने के साथ इन अपेक्षाओं से बहसों को और बल मिलने की संभावना है। ये अपेक्षाएं ऐसे समय में सामने आई हैं जब अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अनुसार मॉरिशस की अर्थव्यवस्था में 2026 में लगभग 2.8% की वृद्धि का अनुमान है और मुद्रास्फीति कई परिवारों के लिए चिंता का विषय बनी हुई है। अपनी ओर से मॉरिशस फाइनेंस ने सरकार से अपील की है कि वह ऐसे महत्वाकांक्षी उपाय अपनाएं जिससे बदलते वैश्विक आर्थिक परिदृश्य में मॉरिशस नए अवसरों का लाभ उठा सके। संस्था का मानना है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जारी भू राजनीतिक तनावों और वैश्विक वित्तीय केंद्रों के बीच कड़ी प्रतिस्पर्धा के बावजूद देश के पास अपनी स्थिति को और मजबूत करने के लिए महत्वपूर्ण क्षमताएं मौजूद हैं। बजट से पहले मॉरिशस फाइनेंस ने 3 प्रमुख प्राथमिकताएं तय की हैं: अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश की दृश्यता बढ़ाना, कर स्थिरता सुनिश्चित करना और सुधारों के कार्यान्वयन में तेजी लाना। अन्य खबरों में, आला ग्लेमोसेपिया इलाके में कल गुरुवार तड़के आत्सू द्वारा चलाए गए एक विशेष अभियान के दौरान कथित तौर पर गांजे की खेती का पता चला है। सुबह लगभग 6:30 बजे की गई इस कार्रवाई में 2 कमरों में उगाए जा रहे संदिग्ध पौधे बरामद किए गए। मौके से पुलिस ने 36 ऐसे पौधे जब्त किए हैं जिनके गांजा होने का संदेह है। इनकी ऊंचाई 60 सेंटीमीटर से लेकर 2 मीटर 10 सेंटीमीटर तक बताई गई है। पौधों को मिट्टी और खाद भरे प्लास्टिक कंटेनरों तथा थैलों में उगाया जा रहा था। इसके अलावा लगभग 2 किलोग्राम संदिग्ध गांजे की पत्तियों से भरा एक बैग भी बरामद किया गया। पुलिस के अनुसार इन कमरों में हवा निकालने की व्यवस्था के साथ साथ 3 लेड लाइट पैनल लगाए गए थे जिनका उपयोग कथित तौर पर पौधों की वृद्धि को बढ़ावा देने के लिए किया जा रहा था। बरामद संदिग्ध मादक पदार्थों का कुल अनुमानित मूल्य 32,41,635 रुपए आंका गया है। लाग्रेमोसेपिया के मार्केट लेन के निवासी 40 वर्षीय एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर हिरासत में लिया गया। मामले की जांच जारी है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मॉस्को के एक हिस्से में एक रिफाइनरी पर हमले के बाद काले तेल के कणों की बारिश जैसी स्थिति देखी गई जो व्यापक ड्रोन हमले के बाद सामने आई। यह हमला रूस यूक्रेन संघर्ष के दौरान अब तक के सबसे बड़े हमलों में से एक बताया जा रहा है, जिसमें लगभग 200 ड्रोन यूक्रेन की ओर से रशिया की राजधानी की ओर दागे गए। घने धुएं के विशाल गुब्बार आसमान में उठते दिखे गए और मॉस्को क्षेत्र में 17 लोग घायल हुए। ये जानकारी स्थानीय गवर्नर आंद्रे वोरोब्यो ने दी है। इसके साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हो चला। साथ रहे, सुन पाएंगे शोक समाचार। शोक समाचार सुनिए। Avenue de

0: Bénier, Beauvallon, Maybugme, en venue de Les Béniers, Beauvallon, Maybugme, 65 साल के 65 years old के श्री लचना पोलिया, श्री लचना पोलिया जिन्हें नंदा के नाम से लोग ज्यादा जानते थे कि मृत्यु हो गई है, उनकी अर्थी आज 1:30 बजे उनके घर, उनके बेटे सर्विन पोलिया के घर मेबर्ग से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए तोंबो मेबर्ग की शमशान भूमि ले जाया जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 1:30 PM। सरकुंस्टांस इंपियमे, सरकुंस्टांस इंपियमे 54 साल की, 54 years old की बीबी अमीमा कोरिदन पैदाशम गुलोबा जिन्हें अमीमा के नाम से भी लोग ज्यादा जानते थे इंतकाल कर गए हैं। इनका जनाजा आज 2:30 बजे इनके शौहर कोरिदन इम्तियाज सिद्दीक के मकान सरकुंस्टांस इंपियमे से उठाकर दफनाने के लिए सरकुंस्टांस का कब्रस्तान ले जाया जाएगा। फ्यूनरल टुडे 1:30 PM। ब्रांचवुड न्यू ग्रोव में 75 साल की, 75 years old की श्रीमती दाउमत ओगी जिन्हें कुमारी के नाम से ज्यादा जानते थे कि मृत्यु हो गई है, उनकी अर्थी कल सुबह 10 बजे उनके बेटे विशाल ओगी के घर न्यू ग्रोव से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए गोबियो ओगी लेन की शमशान भूमि ले जाया जाएगी। क्रिमेशन टुमोरो 10 AM। पृथ्वी विलाज रोड गुडलैंड्स में 62 साल के, 62 years old के जनाब मोहम्मद सलीम नूरानी गुजू जिन्हें सलीम गुजू के नाम से लोग ज्यादा जानते थे इंतकाल कर गए हैं। इनका जनाजा आज 12 बजे इनके बेटे मोहम्मद रहमत नदीम गुजू के मकान गुडलैंड से उठाकर नमाज जनाजा के लिए जुमा मस्जिद गुडलैंड ले जाया जाएगी। फिर दफनाने के लिए बेलमुका कब्रस्तान। फ्यूनरल टुडे एट नून। और श्रीमती रेणुका बिनिस्की सिंह 46 साल की, 86 years old की जिन्हें रेणुका के नाम से लोग ज्यादा जानते थे कि मृत्यु हो गई है, उनकी अर्थी आज शाम 3 बजे लाशापेल एलियन सनबो बासे से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए शेबेल की शमशान भूमि ले जाया जाएगी। क्रिमिशन टुडे 3 PM। शोक में डूबे इन सभी परिवारों के प्रति हमारी गहरी संवेदना है।
1: Welcome to RM2
2: Musty Mornings Radio Musty.

0: Welcome to RM2.
1: Musty Mornings Radio Musty.
2: वैसे भागा दौड़ी तो टाइम कर रही है हमारे साथ, अभी भी तो पहले आवर में थी, तीसरे में पहुंच गए हैं हम. वेलकम बैक टू योर मस्ती मॉर्निंग, इट्स नीलमणि. गुड म्यूजिक और मस्ती कंटिन्यू, सो स्टे राइट हियर कनेक्टेड टू योर RM2 रेडियो मस्ती. नौ सौ कुछ ही देर में होने वाला है 11:11, सो डोंट फॉरगेट टू मेक योर विश.
0: वेलकम टू RM2
1: मस्ती मॉर्निंग्स रेडियो मस्ती.

0: Welcome to RM2.
1: Musty Mornings Radio Musty.
2: देखा जाओ के मैसेजेस को दिल को करार सुकून भी आ गया. थैंक यू फॉर बीइंग कनेक्टेड विद अस ऑन RM2 रेडियो मस्ती. आप है हमारे बड़ी यालेश. हाय, गुड डे विशेस भेजे हैं आपने सभी के लिए, उसके लिए धन्यवाद. फ्लैग से जना जी भी साथ दे रही है. गाना डेडिकेट करना चाहते हैं उनके स्पेशल लोगों के लिए, रीमा, जनिता, श्रेष्ठा, अंशिनी, सिल्विया, यूवी, कृषि के लिए. क्या बात है. वैसे आज ना सभी एक मिनट का ग्रैटिट्यूड जरूर प्रैक्टिस करना. यस, आज एक मिनट निकाल कर सोचिए कि आप किस चीज़ के लिए थैंकफुल है. छोटी छोटी खुशियां ही बड़ी मुस्कुराहट लाती है. तो ऐसे ही हम वाइब को बरकरार रखते हैं आपके इस RM2 रेडियो मस्ती पर. सो कीप स्माइलिंग.
1: RM2
0: रेडियो मस्ती.
1: फील द मस्ती.

0: Welcome to RM2.
1: Musty Mornings Radio Musty.
0: दोस्तों वैसे वर्ल्ड म्यूजिक डे बस दो दिन दूर है, लेकिन सेलिब्रेशंस तो अभी से शुरू हो चुकी है। अगर आप म्यूजिक लवर है, गाना पसंद करते हैं या सिर्फ गुड वाइब्स एंजॉय करना चाहते हैं तो अपनी डायरी में ये डेट्स नोट कर लीजिएगा। सैटरडे 20 जून को केंद्रा मॉल सैंपिया सुबह 10:30 से लेकर 1 बजे तक म्यूजिक डे को सेलिब्रेट कर रहे हैं। एंड अगर आप बिल्कुल भी फ्री नहीं है कल, तो संडे को 21 जून को सेंटर पॉइंट पर सुबह के 11 बजे से लेकर 2 बजे तक यू कैन एंजॉय द लाइव सेलिब्रेशंस विद RM2 वीडियो मस्ती। एंड म्यूजिक वो जुबान है जो बिना शब्दों के भी दिल तक पहुंच जाती है, चाहे बॉलीवुड हो, रेट्रो क्लासिक्स हो या

0: मॉडर्न हिट्स, हर गाना किसी ना किसी याद से जुड़ा होता है. तो टू एंजॉय दैट यू कैन जॉइन अस लाइव आउटसाइड. जो भी डेट्स हमने बता दिए हैं केंद्रा मॉल पर एंड सेंट्रल पॉइंट पर, यू कैन जॉइन अस ऑन RM2 रेडियो मस्ती लाइव.
1: RM2
2: रेडियो मस्ती,
1: फील द

0: Welcome to RM2.
1: Musty Mornings. Radio Musty.
0: It's 11:47 almost lunch time. पेट ने भी शोर मचाना शुरू कर दिया है, लेकिन no worries जी, अभी के लिए है for you food tip. अगर आप घर पर हैं अभी, सोच रहे हैं क्या बनाए, तो आइडिया है सलाद बना लो. वो होता है सबसे आसान लंच आइडिया. हर मील में थोड़ा कलर ऐड करिए. ग्रीन वेजीज, ऑरेंज कैरेट्स या फिर रेड फ्रूट्स, कलरफुल प्लेट्स यूजली ज़्यादा हेल्दियर होते हैं, तो हेल्दियर चॉइसेस अडॉप्ट कीजिए और हेल्दी रहते हैं आपके ही आरएमचू रेडियो मस्ती के साथ.

0: हर पल का साथी, हर दिल की आवाज, खुशियों का रंग और यादों का साज, हंसी हो या गम ये रहता है साथ। संगीत से ही महकती है जीवन की हर एक बात। हैप्पी म्यूजिक डे फ्रॉम MBC रेडियो।
1: You're listening to RM2, a radio mastiche.

And इसी गाने के साथ टाइम हो चला है फॉर मी नील मनी टू से बाय बाय. होप यू हैड अ ग्रेट मॉर्निंग. आफ्टरनून को रंगीन बनाने के लिए गिनेश आ रही है रेट्रो रिदम के साथ. सो यही पर जुड़े रहिए हमारे साथ आरएम2 रेडियो मस्ती पर एंड हैव अ ग्रेट डे.

0: चलिए अभी के लिए सुनते हैं संक्षिप्त समाचार। आपसे अर्षिता नमस्कार।
1: एक बार फिर नमस्कार निर्मणि, श्रोताओं को भी नमस्कार। संक्षिप्त समाचार में आपसे लोगों का स्वागत किया जाता है। आज बजट डे है और पूरे देश में उम्मीदों का माहौल है। घर परिवार, कामकाजी लोग, उद्यमी और सेवानिवृत्त नागरिक सभी बढ़ती जीवन यापन लागत से निपटने के लिए ठोस उपायों की उम्मीद कर रहे हैं। ये बात वित्त मंत्रालय द्वारा 29 अप्रैल से 6 मई तक आयोजित पूर्व बजट परामर्शों में भी सामने आई है। 1 मई के बाद से प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम लगातार विभिन्न सार्वजनिक बयानों में पिछली सरकार से विरासत में मिली कमजोर आर्थिक स्थिति का उल्लेख कर रहे हैं। इसके साथ ही अंतर्राष्ट्रीय भू राजनीतिक अनिश्चितताओं का असर भी बना हुआ है, जिससे ईंधन की कीमतें, समुद्री फ्रेट और आयातित मुद्रास्फीति प्रभावित हो रही है, जिसका सीधा असर उपभोक्ताओं पर पड़ रहा है। आपको हम याद दिला देते हैं कि आज शुक्रवार को सभी की निगाहें राष्ट्रीय सभा की ओर टिकी हैं। प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम आज शाम 5 बजे अलियंस डू शांजमा का दूसरा बजट पेश करेंगे। कठिन आर्थिक परिस्थितियों के बीच घोषित होने वाले उपायों का जनता और आर्थिक क्षेत्र के हितधारक का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। और आज आपको बता दें एक बार फिर कि बजट 2026-2027 के भाषण का सीधा प्रसारण आज शाम 5 बजे से MBC 1, MBC 7 और MBC प्ले पर देख सकेंगे। क्रियोल मॉरिशियन में समकालीन अनुवाद MBC 2 RM1 और AM1 पर उपलब्ध होगा, जबकि भोजपुरी अनुवाद MBC 3 और RM3 पर प्रसारित किया जाएगा, जबकि RM2 पर हिंदी अनुवाद। शाम 7:30 बजे से MBC 1, MBC 7 और RM1 पर एक विशेष संस्करण प्रसारित किया जाएगा। इसमें विदेश मंत्री रितेश रामफल, सांसद रोशन जमन, पूर्व गुड गवर्नेंस मंत्री महीन सिरतन, ओनाव मोरिस के पैट्रिक बेलकू तथा अर्थशास्त्री इब्राहिम मलिक बजट 2026-2027 के प्रमुख उपायों का विश्लेषण और चर्चा करेंगे। साथ ही आपको याद दिला देती हैं कि विदेश मंत्री रितेश रामफल एक अन्य विशेष कार्यक्रम में भी शामिल होंगे, जो सामाजिक आर्थिक क्षेत्र के हितधारकों की प्रतिक्रियाओं पर आधारित होगा। आज मॉरिशस की राष्ट्रीय सभा पर सभी की निगाहें टिकी हैं। प्रधानमंत्री एवं वित्त मंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम बजट पेश करेंगे, जो कि अपनी सरकार का दूसरा बजट प्रस्तुत वे करेंगे। इससे पहले आज सुबह कृषि उद्योग मंत्री अरविंद बुलेल ने RM1 के मॉर्निंग इंटरव्यू कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस दौरान उनसे बजट की दिशा को लेकर सवाल पूछे गए कि यह आम जनता के लिए राहत देने वाला होगा या फिर कठिन फैसलों वाला। साक्षात्कार में नई पेंशन व्यवस्था की समीक्षा का मुद्दा भी उठाया गया। मंत्री ने इस विषय पर सरकार के विचारों और संभावित उपायों पर अपने विचार रखे और कहा कि सभी को जिम्मेदाराना रवैया से बजट को सुनना होगा। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इबोला के बढ़ते प्रकोप को लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य चेतावनी जारी की है। प्रयोगशाला परीक्षणों में पुष्टि हुई है कि कोंगो लोकतांत्रिक गणराज्य में इबोला वायरस से 875 लोग संक्रमित हो चुके हैं और 15 मई को महामारी घोषित किए जाने के बाद से इस बीमारी के कारण 202 लोगों की मौत हो चुकी है। इसके साथ अब हम बढ़ते हैं स्पोर्ट्स संबंधी जानकारियों की ओर, जिसे पेश करेंगे गिरीश। गिरीश, स्पोर्ट्स संबंधी जानकारी आपके साथ।
2: धन्यवाद आशिता। जैसे आपने कहा, अब बात करें फुटबॉल के बारे में। फुटबॉल की खबरों में फीफा वर्ल्ड कप 2026 के अंतर्गत कल रात चेक रिपब्लिक और दक्षिण अफ्रीका का 1-1 का ड्रॉ रहा। वहीं ग्रुप बी के मैच में स्विट्जरलैंड ने बोस्निया को 4-0 से हराया। आज सुबह 2 बजे खेले गए मैच ग्रुप बी में कतार का सामना हुआ कनाडा के साथ, स्कोर रहा 6-0। और वहीं ग्रुप ए में मेक्सिको ने दक्षिण कोरिया को 1-0 से हराया। चलते चलते आज के आने वाले मैच के बारे में आपको बता दें कि आज रात 11 बजे ग्रुप डी में अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के बीच मुकाबला होगा, जिसका सीधा प्रसारण आप MBC प्ले पर देख सकते हैं।
0: तो इसके साथ ये फ्लैश न्यूज समाप्त हो चला। आपके ध्यान के लिए धन्यवाद। बढ़ते हैं अब हम शोक समाचारों की ओर। शोक समाचार सुनिए। रिजर्वर रोड सोचीज ग्रांड बे में, रिजर्वर रोड सोचीज ग्रांड बे में 42 साल की 42 years old की श्रीमती सुमिता रामचंद पैदाश्रम बंधु और जिन श्वेता के नाम से भी लोग ज्यादा जानते थे, की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी कल सुबह 10 बजे उनके पति रिशा रामचंद के घर सोची गौम्बे से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए गौम्बे की शमशान भूमि ले जाएगी। क्रिमिशन टुमोरो 10 AM सवान रोड नोवेल फॉन्स में 66 साल के 66 years old के श्री गौकरण मंगरा श्री गौकरण मंगरा, जिन्हें कस्तेलो के नाम से लोग ज्यादा जानते थे, की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी कल सुबह 11:30 बजे उनके घर नोवेल फॉस से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए मागीजानी रॉसबेल की शमशान भूमि ले जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट 11:30 AM। शोक में डूबे इन दोनों परिवारों के प्रति हमारी गहरी संवेदना है।
3: NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.tv. Retro Rhythm. RM2 Radio Musti.

0: रेट्रो रिदम।
1: इधर उधर की गलियों में आप कहाँ ढूंढ रहे हो हमें, हम तो यहीं पे हैं। हाँ जी, ऑरेंट रेडियो मस्ती की लहरों पर आपका साथ देने के लिए। जी हाँ दोस्तों, चेक योर टाइम स्टूडियो की घड़ी में 12:12 हो चुके हैं और गिनिशा हाजिर है विद अ बंच ऑफ बहुत ही प्यारे एवरग्रीन गाने, 70s, 80s और 90s के खूबसूरत बहुत ही प्यारे नगमों के साथ हम हाजिर हैं आपका साथ देने के लिए। तो चलिए जी, विशिंग ऑल ऑफ योर वेरी गुड आफ्टरनून, नमस्कार जी और गिनिशा का प्रणाम। कैसे हो आप? आई नो खुश तो होंगे क्योंकि आज फ्राइडे जो है, जब फ्राइडे सुबह सुबह हमारी नींदें खुल जाती है ना, हम सब जब आंखें खोलते बोलते हैं ओह थैंक गॉड इट्स फ्राइडे, क्योंकि जब फ्राइडे आते हैं तो खुशियां भी लेकर आते हैं साथ में। इन द सेंस कि दिमाग में यही चलता है ना कि वीकेंड इज हियर। जब वीकेंड आते हैं तो नॉक नॉक, जब ये दरवाजे पे नॉक नॉक करते हैं ना, तो दिल की जो खुशी है ना उसकी सीमा नहीं होती है कि हाँ अभी तो लोगों से मिलेंगे, अपनों के साथ अच्छे अच्छे वक्त बिताएंगे, किसी की शादी में जाना है, किसी की मंगनी है या किसी का बर्थडे है या ऐसे ही तफरी मारना है। और तफरी मारते मारते अगर आप हमें रहे हो तो थैंक यू सो सो मच जी। वैसे जब भी हम आते हैं वीकेंड के लिए तो हमेशा ढेर सारी खुशियां लेकर आते हैं थ्रू आउट दिस ब्यूटीफुल एंड लवली गानों के जरिए आपकी जिंदगी में पहुंचाने के लिए। सो माय डियर एंड लवली पीपल, वैसे टाइम के हिसाब से आई गेस यू हैविंग योर लंच, सो बोन अप इट्स इट टू यू, एंजॉय योर मील एंड ऑफ कोर्स एंजॉय कीजिए ये खूबसूरत ऐसा बहुत ही प्यारा सा सफर जो हम लेकर आए हैं 2 घंटे में। और वैसे दिल की बात, हाँ जी अगर दिल की बात हम करें तो आई नो बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जो जुबानी हम नहीं ये बयां कर सकते हैं, सो व्हाई नॉट, हमारे पास ऑप्शंस है, हमारे पास एक सॉल्यूशन है आपके प्रॉब्लम का। 5499124 यानी कि 5499124 पर लिख के भेजेगा जरूर और हम गिनिशा अपने ही अनोखे अंदाज में पहुंचाएंगे आपके चाहने वालों तक उन आपकी दिल की बात।

0: बिल्कुल जी, आज इस खूबसूरत सी महफिल में हम आप सभी लोगों को आई लव यू जरूर कहना चाहूंगे, क्यों नहीं कहेंगे। हम आप लोगों से इतना प्यार जो करते हैं, तभी तो आते हैं आपका साथ देने के लिए। वैसे इट्स बीन सच अ लॉन्ग टाइम, अगर किसी ने आपको नहीं बोला आई लव यू तो है ना गिनिशा, आपको बोलने के लिए ऑन आवर टू रेडियो मस्ती, आई लव यू गाइस।
1: रेट्रो रिदम,
0: खूबसूरत लवली प्यारे है गाने। जी हाँ, ऐसे खूबसूरत लवली है 90s 80s के गानों की बरसात हो रही है आपके और हमारे बीच में, और उम्मीद करते हैं दैट यू गाइस आर रियली रियली एंजॉयिंग। सो थैंक यू सो मच फॉर चूजिंग अस एज योर रेडियो पार्टनर। और चलिए जी, आपके डेडिकेशन आर द मोस्ट वेलकम ऑन 5499124 पर विश्वानी डुमन, रहते हो वाकवा में। अभी हम साथ में लंच ले रहे हैं, सुबह ना पिछली तो यू लवली है गाने सुन रहे हो। वैसे एक गीत की फरमाइश है आपकी बहन इंदिरा शारदा और सहेली नीला प्रतिभा शुभा के लिए। थैंक यू सो सो मच एंड प्रणाम टू यू माय डियर, एंड यू जस्ट लव लिसनिंग टू माय प्रोग्राम, थैंक यू सो मच। आपको बहुत ही ज़्यादा करेज मिलता है आपके घर के कामकाज करने के लिए। एंड ये है वीना शंभू जी, जो बसाए रोड कैट्रोबोन की रहने वाली हैं। जाना मेरी जाना, इतना लंबा मैसेज कोई बात नहीं, लेकिन आई एम प्रीटी मच श्योर यू एंजॉइंग द गुड सॉन्ग। आपकी बेटी रीमा जनीता शेषतान सिनी सिल्विया और यूवी कृषि सुसवन परिवार के लिए, जो फ्लैग के रहने वाले हैं। तो चलिए जी, बढ़ते हैं अगले गाने की ओर, और तमाम सुनने वालों के नाम ये अगला नगमा।

0: Retro Rhythm.
1: That was such a beautiful track. जी हाँ दोस्तों, साधना सरगम और अमित कुमार की आवाजों में बिल्कुल कुछ ऐसे गाने होते हैं ना कि सुनते ही कुछ ऐसे हमारी बहुत दिन पहले की याद आ जाती है, कुछ ऐसी बातें जिन गीतों के साथ जुड़े हुए हैं। आई डोंट नो, हो सकता है आपको आपकी दोस्त की याद आ रही है, कॉलेज टाइम की याद आ गई, आपको आपके बचपन की याद आ गई, कुछ भी, बस होंठों पर मुस्कुराहट आ जानी चाहिए। जब भी हम ऐसे गाने को पेश करते हैं ना, तो हम खुद यहाँ पे ना इतना गुनगुनाने सा लग जाते हैं और इतना खुश हो जाता है कि आई गेस कि आप भी यू मस्ट बी इन द सेम सिचुएशन। तो चलिए जी, अभी फिलहाल के लिए आई हैव गॉट यू योर डेडिकेशंस ऑन 5499।

0: पर 40 मिनट हो चुके हैं. बुलबुल गिनीशा हे वंडरफुल म्यूजिक बिल्कुल जी. और एम2 रेडियो मस्ती पर अच्छे गाने लेकर आते हैं और ये शाम एंजॉय कर रहे हैं खूबसूरत गाने. सो द नेक्स्ट वन विशिंग अ वेरी हैप्पी फ्राइडे टू यू गिनी आंटी एंड आपकी फैमिली के लिए भी. और थैंक यू सो मच यालेश एंड फॉर जीना एज़ वेल. थैंक यू सो सो मच. दैट मीन्स अ लॉट एंड नाइस टू हियर यू अगेन. हां कृष्णी मैं यहीं पे हूं क्रिविया डेजोंगी से आप साथ दे रही हो. डेडिकेटिंग नेक्स्ट वन आपके हस्बैंड के लिए विक्रम और जो ट्विंस हैं कौशिक एंड कौशल के लिए. और आपके लिए भी हैव अ ग्रेट वीकेंड माय डियर. ऑफ कोर्स एंड सेम टू यू एंड टू एवरीवन लिसनिंग टू रेडियो मस्ती राइट नाउ. हाय लीना. लीना रहती है प्लेन दे रोश में और आज उनके लिटिल जिया जो उनकी प्रिंसेस है उनकी छोटी सी प्यारी सी प्रिंसेस है 5 महीने की हो गई है. तो उनके हस्बैंड राजीव और मदर इन लॉ सबीता विशिंग जिया 5 months. सो लॉट्स ऑफ लव ऑफ कोर्स. अभी तो आप देखना कितने जल्दी जिया बड़ी हो जाएगी और आपके सहारा बनेगी लाइफ में. और यू विल से कि अभी तो छोटी थी और गिन्नी को हम मैसेज करते थे ऑन रेडियो मस्ती के 5 महीने के हो गए और 5 साल 15 20 25 देखते देखते बच्चे कैसे बड़े हो जाते हैं पता ही नहीं चलता है. और चलिए अगला गाना बॉम्बू के धनेश्वर और उनके पत्नी सुनीता के लिए. रानी ऋषि तहान साथ दे रहे हैं. पोटिया हंस विबियाना एंड भाविका जो देवडोस सनीचर कावड़ी साहु परिवार है वो भी तो साथ दे रहे हैं. थैंक यू सो मच. तो चलिए जी सुदेवी जी आप फोन कर रहे हो लेकिन अभी तो हम फोन नहीं उठा रहे हैं. कोई बात नहीं ये अगला गाना आपके लिए. एंड आई जस्ट वांट टू डेडिकेट द नेक्स्ट वन किसी ने लिखा है लाजवाब सिलेक्शन. थैंक यू सो मच. दारन श्वेता रवि स्पेशल अविशा पाडू फैमिलीज थैंक यू सो मच फ्रॉम रोशनोर साथ देने के लिए. एंड सीता बलोराम जी आपकी मामा भगवंती फ्रॉम शातो बेनारस आपकी बहन गीता डट्टू एंड जीजू राकेश के लिए अगला गाना. एंड वेल ये अगला गाना हमारी तरफ से हमारे सारे प्यारे प्यारे लिसनर्स के नाम जो उदित नारायण के बहुत ही बड़े फैंस हैं. 5499 1294 पर सेंड मी योर डेडिकेशंस राइट नाउ. डू लेट मी नो व्हाट्स द प्लान फॉर द वीकेंड.
1: यू आर लिसनिंग टू रेडियो मस्ती.

0: आइए सुनते हैं समाचार आस्था के साथ। नमस्कार।
1: नमस्कार, 1 बजे के समाचारों में स्वागत है आप सभी का। आज शुक्रवार को सबकी निगाहें राष्ट्रीय सभा पर टिकी हैं। प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री डॉक्टर नवीन रामगुलाम शाम 5 बजे से अपनी सरकार का दूसरा बजट पेश करेंगे। आज सुबह कृषि उद्योग मंत्री डॉक्टर अरविंद बुलेल और M1 पर सुबह के कार्यक्रम में मुख्य अतिथि थे। उनसे विशेष रूप से इस बजट के दिशा के बारे में पूछा गया। इस इंटरव्यू के दौरान नई पेंशन प्रणाली पर फिर से गौर करने के मुद्दे पर भी चर्चा हुई। तो आर्थिक रूप से कठिन माने जा रही इस दौर में घोषित किए जाने वाले कदमों का जनता और आर्थिक ऑपरेटरों द्वारा बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है। आप बजट 2026-2027 का सीधा प्रसारण शाम 5 बजे से MBC 1, MBC 7 और MBC Play पर देख सकेंगे। MBC 2, MBC 1 और AM1 पर क्रियोल मॉरिशियन पर एक साथ अनुवाद उपलब्ध होगा। बजट भाषण का अनुवाद भोजपुरी में MBC 3, MBC 2 और MBC 3 पर भी किया जाएगा। शाम 7:30 बजे से MBC 1, MBC 7 और RM1 पर एक विशेष कार्यक्रम लाइव प्रसारित किया जाएगा। विदेश मंत्री रितेश रामफल, सांसद रोशन जमन, पूर्व वित्तीय सेवा और सुप्रशासन मंत्री महेंद्र सिरतन, ऑनावो मोरिस से पैट्रिक बेल्को और अर्थशास्त्री इब्राहिम मलिक बजट 2026-2027 में घोषित मुख्य कदमों का विश्लेषण इस कार्यक्रम के दौरान करेंगे और चर्चाएं होंगी। तो उम्मीद बहुत है। जीवन यापन की लागत, आवास, खरीद शक्ति, युवाओं का भविष्य और स्थानीय कृषि, ये ऐसे सभी विषय हैं जो मॉरिशस के लोगों को चिंतित करते हैं। जनता अपने दैनिक जीवन को बेहतर बनाने और देश की आर्थिक संभावनाओं को मजबूत करने के लिए ठोस कदमों की अपेक्षा कर रही है, जबकि आर्थिक सेक्टर के प्रतिनिधि उन कदमों पर नजर गड़ाए हुए हैं जो विकास को गति दे सकते हैं। वहीं गैर सरकारी संगठन NGOs और संघ समाज के प्रति अधिक संवेदनशील घोषणाओं की उम्मीद कर रहे हैं जो जमीनी वास्तविकताओं का समाधान कर सके। विदेश स्तर पर जापान की राजधानी टोक्यो के एक प्रारंभिक प्राथमिक स्कूलों में 300 से ज्यादा छात्र और शिक्षक मौजूद थे। वहां पर आग लग गई। दमकल कर्मियों और स्कूल प्रशासन ने सभी को सुरक्षित बाहर निकाला और 10 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। इसी के साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए। बढ़ते हैं शोक समाचारों की ओर। Circonstance Saint-Pierre, 54 साल की, 54 years old की बीबी अमीना कोरिंडन इंतकाल कर गई हैं। पैदाइश नाम गुलब। उनका जनाजा आज दोपहर बाद 2:30 बजे उनके पति कोरिंडन इंतियाज के मकान सैंपियर से निकालकर दफनाने के लिए सैकोंस्टांस का कब्रिस्तान ले जाया जाएगा। फ्यूनरल टुडे एट 2:30 PM। रिजर्वर रोड सोटीज ग्रांबे में 42 years old की सुमिता रामचरण की मृत्यु हो गई है। पैदाइश नाम बंधु। लोग उन्हें श्वेता के नाम से अधिक जानती थी। उनके अर्थी आज दिन के बल्कि कल शनिवार को सुबह के 10 बजे उनके पति ऋषाल रामचरण के मकान कांबे से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए कांबे ही की शमशान भूमि ली जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट 10 AM। सावान रोड नुवेल फ्रांस में 66 साल की 66 years old के श्री गौकरण मंगा की मृत्यु हो गई है। उनके अर्थी कल दिन के 11:30 बजे उन्हीं के मकान वेलफ्रांस से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए मारीजानी रोसबेल की शमशान भूमि ले जाया जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट 11:30 AM। ब्रांच रोड न्यू क्रोव में 75 साल की 75 years old की दाऊमती ओगी की मृत्यु हो गई है। लोग उन्हें कुमारी के नाम से अधिक जानती थी। उनके अर्थी कल दिन के 10 बजे उनके बेटे विशाल ओगी के मकान न्यू क्रोव से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए गोबियो ओगी लेन की शमशान भूमि ले जाया जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट 10 AM। शोक में डूबे इन सभी परिवारों के प्रति हमारी गहरी सहानुभूति है।
2: Your news on NBC Play, NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.tv. Retro Rhythm.
3: RM2 Radio.

Retro Rhythm. Well guys, आप सभी लोगों का स्वागत है इन द सेकंड आवर ऑफ दिस ब्यूटीफुल शो एंड दैट्स योर रेट्रो रिदम. नाम ही कुछ ऐसा है ना, जब हम बोलते हैं तो खींच के मैं आपको उन वादियों में लेके जाती हूँ जहाँ पे आपकी प्यारी से मुस्कुराहट आपने छुपा के रखा है. वैसे ऐसे खूबसूरत गिने चुने नगमे हम लेकर आए हैं आप लोगों के लिए और उम्मीद करते हैं दैट यू गाइज आर रियली लविंग दैम एंड आप एंजॉय कर रहे हो दिल से. वेल फ्राइडे है, सो विशिंग ऑल ऑफ यू हैप्पी फ्राइडे सबसे पहले. एंड इट्स द 19th of June 2026 टुडे. ऑल दोस जो आज मना रहे हैं अपना जन्मदिन, प्लीज गिव मी अ स्माइल. हाँ जी, दिस इज इट. आप बहुत ही अच्छे लग रहे हो आज. हाँ जी, आपका जन्मदिन है. आप तो सोच रहे होंगे कि आज तो मेरा खास दिन है, मैं तो सज धज के बैठी रहूंगी. बिल्कुल जी, करना चाहिए, क्योंकि बोलते हैं ना कि जब आपका बर्थडे आता है सो यू आर द किंग ऑफ दिस डे, यू आर द क्वीन ऑफ दिस ब्यूटिफुल डे. और हमारे पूरे जो मस्ती परिवार हैं उन सभी हमारे परिवारों की तरफ से आपको ढेर सारा प्यार, ढेर सारी शुभकामनाएं. सो विशिंग यू अ मैजिकल बर्थडे राइट नाउ ऑन आवर एंड You must, it's your day, my dear. Enjoy it to the max. And I would love to dedicate the entire second half of this beautiful show to all those who are celebrating their wedding anniversaries as well. तो चलिए जी, लता मंगेशकर और एस पी बाला सुब्रमण्यम की आवाजों में ये लेकर आई हैं आप लोगों के लिए. I'm pretty much okay. आप ना सोच रहे हैं कि वाह, व्हाट अ ब्यूटीफुल सॉन्ग, इतने टाइम बाद हम सुन रहे हैं. यही तो बात है ऑन आवर एंटी रेडियो मस्ती, आपकी हर फरमाइश, आपकी ख्वाहिश को पूरा कर लेते हैं. वैसे भी आपको तो पता है मैजिकल नंबर 5499 1294. सेंड मी योर डेडिकेशन.

0: Retro Rhythm.
1: Hey guys, that was Alisha Chinoy and Alnu Malik. आप लोगों के लिए that's so nice ना कि इतने दिनों के बाद ऐसे गाने सुनने को मिलते हैं. And it's all happening just between me and you on R&T Radio Masti, your number one radio station. जी हाँ दोस्तों, वैसे sexy मुझे लोग बोले, क्यों बोलते हैं ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन ये गाना वाकई में बहुत अच्छा है. Yes, featuring our beautiful Karishma Kapoor. She was so hot at that time. Remember, Kadar movie से लिया गया जो 1994 में release हुई थी. Can you imagine? गाने के अंदर, संगीत के अंदर इतना ताकत है कि एक मिनट के अंदर खींच के लेके जाते हैं 1994 में. एंड नाउ वी मेक यू लीव बैक दोस लवली सुविनियर. शायद आपके कॉलेज के दिनों के गाने हैं और आप बस याद कर रहे कि आपके दोस्त कैसे हमेशा ये गाने सुना सुना के आपको पका देते थे, लेकिन आज जब ये गाने हम सुन रहे हैं तो हम उन्हीं लम्हों को फिर से याद कर रहे हैं. दिस इज व्हाट आई कॉल द रियल मैजिक ऑफ संगीत. एंड हियर वी गो. 5499214 पर आपने भेजे अपने डेडिकेशन, सो लेट्स चेक इट आउट साथ में. एंड बोन अपेची टू ऑल. अच्छा, अभी भी खाना खा रहे हैं, चले लेट जो खाना खा रहे हैं उनको बोन अपेची. साधना जी फ्रॉम रिविया डे क्रियोल, हैप्पी वीकेंड टू ऑल लवली जीबन फैमिली को. एंड प्रणाम जी, नमस्कार. अगला गाना सभी सुनने वालों के लिए, कृष्ण जी फ्रॉम कॉम्फर क्रो. कैसे हो मेरी प्यारी कृष्णी माँ? सो आई एम जस्ट एंजॉइंग योर शो. हैप्पीली ब्यूटिफुल गिनीशा, थैंक यू. फ्रॉम नेदरलैंड्स, दैट्स अमीटा. सात समुंदर पार से साथ दे रही है अमीटा. नेहा, आशीष भारत, अंजलि मोहबियर सेइंग हाई टू ऑल फ्रेंड्स इन मॉरिशस एंड थैंक यू सो मच एंड हैव अ बॉन वीकेंड इवन टू यू माई स्वीट हार्ट. ऐसे ही साथ देते रहना और जितने भी मॉरिशंस अक्रॉस द ग्लोब साथ दे रहे हैं, बिग हाई गोज टू यू एंड गुड आफ्टरनून टू यू प्रवीण. राम सारेखा बर्थडे विशेज. किसका जन्मदिन है? अच्छा, प्रवीण का. सो प्रवीण, आपके लिए भी मैं गाऊंगी हैप्पी बर्थडे टू यू. बेस्ट विशेज माई डियर कमिंग फ्रॉम

0: नव्या, नव्या शी इज स्प्रेडिंग सो मच लव आज, इतने प्यार आप जो लिख के भेजते हैं अपने मैसेजेस के जरिए, बहुत ही अच्छा लगता है। और फिलहाल के लिए किसी ने लिखा है वेरी स्वीट सॉन्ग हमेशा की तरह, हैप्पी फ्राइडे सभी रेडियो मस्ती टीम को, एंड दैट्स कमिंग फ्रॉम प्यारी सी अनीता फ्रॉम फिकॉन फ्लैक। वेल चलिए जी, फॉर एवरी आरएम टू आउजेस के लिए, फॉर यू गिनीशा परी वेदिता जी निर्मनी जी, एंड सॉरी अगर हमने किसी को मिस किया, आप बस लिख के ऐसे ही भेजना ना शॉर्टकट में सारे आरएम टू फैमिलीज के लिए। थैंक यू सो मच ब्रो, एंड द नेक्स्ट वन गोज आउट टू यू एज वेल। एंड चलिए जी, अगला गाना जो है हम डेडिकेट करना चाहेंगे स्पेशली ग्रैंडसन रीटा इंदू नंदन के लिए ऑफ नोट्रडाम। थैंक यू सो मच, और नोट्रडाम से आई गेस बहुत सारे लोग भी हमसे जुड़े हुए हैं। बिग हाई, अ बिग शॉट आउट गोज टू यू। हाई ब्यूटिफुल करिश्मा, ये अगला गाना आपके लिए, एंड वी डू हैव द नेक्स्ट वन स्पेशली टू ऑल दोज जो अभी काम पे हैं। तो एंड कैसे भूल सकते हैं, गाड़ी चलाते चलाते बहुत सारे लोग हमारा साथ दे रहे हैं। ड्राइव केयरफुली, एंड दिस वन गोज आउट टू यू।
1: You're listening to Radio Masti.

0: तो चलिए जी, फिलहाल के लिए इट्स टाइम फॉर गिनी शातू से गुड बाय टू यू, लेकिन फिलहाल अभी के लिए गुड बाय है मेरे जान, क्योंकि हम आएंगे वापस 4 बजे से लेकर रात के 7 बजे तक आपका साथ देने के लिए। लेकिन नॉट टू फॉरगेट टुडे, आज स्पेशल बजट डे है, विल बी ब्रॉडकास्टेड फॉर यू ऑन आवर M2 रेडियो मैसेज, जहां पे आप आराम से फॉलो कर पाएंगे द बजट 2026। जी हाँ, और फिलहाल के लिए हमें दीजिए इजाजत, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, एंड चलिए परी आने वाली है थोड़ी देर में फॉर सम लवली म्यूजिक, सो गेट रेडी फॉर सम लेटेस्ट बॉलीवुड न्यूज, गॉसिप्स एंड हॉट एंड स्पाइसी लेटेस्ट बॉलीवुड गाने।
1: जानू, यू आर लिसनिंग टू

0: देश विदेश की खबरों के साथ स्टूडियो में आ गई है आस्था, आपको नमस्कार।
1: नमस्कार, 2 बजे के समाचारों में स्वागत है आप सभी का। आज 19 जून को बजट 2026-2027 प्रधानमंत्री एवं वित्त मंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम द्वारा 5 बजे पेश किया जाएगा। आर्थिक रूप से कठिन मानी जा रही इस दौर में घोषित किए जाने वाले कदमों का जनता और आर्थिक ऑपरेटरों द्वारा बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है। और आप बजट 2026-2027 भाषण का सीधा प्रसारण शाम 5 बजे से MBC 1, MBC 7 और MBC प्ले पर देख पाएंगे। MBC 2, MBC 1 और M1 और AM 1 पर खोल मोरिशिया में एक साथ अनुवाद उपलब्ध होगा। बजट भाषण का अनुवाद भोजपुरी में MBC 3, MBC 2 और RM 3 और RM 2 पर भी किया जाएगा। शाम 7:30 बजे से MBC 1, MBC 7 और RM 1 पर एक विशेष कार्यक्रम लाइव प्रसारित

0: किया जाएगा विदेश मंत्री रितेश रामफल सांसद रोशन जमन पूर्व वित्तीय सेवा एवं सुप्रशासन मंत्री महेंद्र सिरत्तन ओनावा मोहिस के पैट्रिक बेलकू और अर्थशास्त्री इब्राहिम मलिक का बजट 2026-2027 में घोषित मुख्य कदमों का विश्लेषण करेंगे और उन पर चर्चा करेंगे तो उम्मीदें बहुत है जीवन यापन की लागत आवास खरीद शक्ति युवाओं का भविष्य और स्थानीय कृषि ये सभी ऐसे विषय हैं जो मॉरिशस के लोगों को चिंतित करते हैं जनता अपने दैनिक जीवन को बेहतर बनाने और देश की आर्थिक संभावनाओं को मजबूत करने के लिए ठोस कदमों की आशा कर रही है जबकि आर्थिक सेक्टर के प्रतिनिधि उन कदमों पर नजर गड़ाए हुए हैं जो विकास को गति दे सकते हैं वहीं गैर सरकारी संगठन एनजीओस समाज के प्रति अधिक संवेदनशील घोषणाओं की उम्मीद कर रहे हैं जो जमीनी वास्तविकताओं का समाधान कर सकी। जापान के राजधानी टोक्यो के एक प्राथमिक स्कूल में आगजनी की खबर 300 से ज्यादा छात्र और शिक्षक वहां पर मौजूद रहे दमकल कर्मियों और स्कूल प्रशासन ने सभी को सुरक्षित बाहर निकाला हालांकि 10 लोग घायल हुए हैं। इसी के साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए हम आपसे मिलेंगे ठीक 3 बजे अन्य खबरों के साथ।
1: More music in the mix.
2: Aaj Azadi hai.
3: Bombay Talkies. Radio Musti.
4: Radio Musti.

सो वेल फ्रेंड्स, वार्म वेलकम. 2:07 हो गए हैं 19th ऑफ जून फ्राइडे की एक खूबसूरत सी आफ्टरनून. TGIF, यस इट्स फ्राइडे, सो लेट्स मेक इट स्पेशल. आपके लिए कुछ स्पेशल सॉन्ग्स एंड बी टाउन की अपडेट्स परोसेंगे आपको इन योर बॉम्बे टॉकीज. मैं हूं परी आपके साथ 4 PM. अभी के लिए एंजॉय दिस वन.

0: Talkies. Radio Musty.
1: Radio Musty.
2: वेल फ्रेंड्स, यहां पर चक धूम धूम करते हुए हम तो आ गए हैं बी टाउन की अपडेट्स आप तक पहुंचाने। वैसे स्टूडियो में आज काफी मस्ती हो रही है, काफी हरा भरा हमारा स्टूडियो। यहां पर हमारे आरजेज हमेशा आपके लिए कुछ ना कुछ स्पेशल करने की प्लानिंग करते रहते हैं। और जैसे हमने बताया कि म्यूजिक डे, और हम म्यूजिक डे को हमेशा ही सेलिब्रेट करते हैं, यानी कि ईच एंड एवरी डे इज म्यूजिक डे। लेकिन जब वो खास दिन आता है, वो होने वाला है ऑन 21st of June, और इस दिन को आपके लिए कुछ खास एंड स्पेशल, बस उसी की तैयारियां चल रही है। सो वेल फ्रेंड्स, आपको बता दी दैट आखिरकार वीकेंड आ ही गया, और अगर आप शुक्रवार की शाम यानी कि फ्राइडे शाम बाहर ट्रैफिक में फंसने की बजाय घर पर अपने पॉपकॉर्न के साथ आराम से एंजॉय करना चाहते हैं, तो ओटीटी प्लेटफॉर्म पर आपके लिए बहुत कुछ खास है। इस हफ्ते की लिस्ट में जबरदस्त थ्रिलर और स्पाई ड्रामा से लेकर रोमांटिक ड्रामा और कॉमेडी फैंटेसी एडवेंचर्स तक सब कुछ शामिल हो चुका है। सो आपको बता दें 19 जून ओटीटी पर रिलीज होने वाली कुछ फिल्में, सो दृश्यम 3 इस हफ्ते सबसे बड़ी ओटीटी रिलीज ये है, दृश्यम 3 जो 18 जून को ओटीटी पर रिलीज हुई है। ये साउथ इंडियन वर्जन की हम बात कर रहे हैं, लेकिन यही वर्जन आपको हिंदी में यानी कि हिंदी लैंग्वेज में भी देखने को मिलेगा। वहीं धुरंधर 2 द रिवेंज इस महीने की शुरुआत में जियो हॉटस्टार पर सफल डिजिटल डेब्यू के बाद धुरंधर द रिवेंज एक और ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज होने जा रही है। सो अगर आपने इस फिल्म को नहीं देखा, यू हैव वन मोर चांस। ठुकरा के मेरा प्यार सीजन 2 इमोशनल ड्रामा पसंद करने वालों के लिए इस वीकेंड पर ठुकरा के मेरा प्यार सीजन 2 आ रहा है। 19 जून यानी कि आज ही के दिन ये ओटीटी पर स्ट्रीम होने वाला है। वहीं अब होगा हिसाब, 18 जून को ओटीटी पर रिलीज हो रही है ये एक और जबरदस्त डार्क, और कह सकते हैं एक ऐसा थ्रिलर जो आपको कुछ ना कुछ सोचने पर जरूर मजबूर करने वाला है कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। सो बता दी दैट इसमें शाहिर शेख ने बॉबी का किरदार निभाया है, और जो हाल ही में कनाडा से डिपोर्ट होकर लौट कर आते हैं, और फिर उनकी ज़िंदगी में क्या कुछ होता है, कौन से उतार चढ़ाव और कौन सा हिसाब है जो उनके साथ होने वाला है, इसके लिए आपको देखना होगा इसे। और उसके बाद सेव द टाइगर्स सीजन 3, पॉपुलर तेलुगु कॉमेडी ड्रामा सेव द टाइगर्स का सीजन 3 भी आ रहा है। और इसके बाद हस्बैंड्स इन एक्शन, ये कोरियन ड्रामा है जिसे आप देख पाएंगे ऑन ओटीटी एज वेल। तो जैसे हमने कहा कि भाई फ्राइडे सैटरडे संडे आपका होने वाला है खास, अगर आप घर के बाहर नहीं निकलना चाहते हैं तो बस ओटीटी लगा दीजिए, आपका फेवरेट, आपकी फेवरेट मूवी, आपका फेवरेट सीरीज जो भी है उसे सिलेक्ट कीजिए, और फिर हो गया आपका वीकेंड एकदम मस्त, एकदम धमाकेदार।

वेल हमारे लिसनर्स जिन्हें हम तो हमेशा कहते हैं दैट यू गाइस आर जस्ट वाओ, इतना प्यार जो आप हम तक पहुंचाते हैं. थैंक यू सो मच फॉर ऑलवेज लविंग हमारा प्यारा सा रेडियो स्टेशन. आपका प्यार आपका साथ यही तो बनाता है इसे बॉलीवुड का मॉरिशस का नंबर वन बॉलीवुड रेडियो स्टेशन. सो थैंक यू फॉर योर लव लेडीज एंड जेंटलमैन जो इस वक्त हमारा साथ दे रहे हैं. विशिंग यू ऑल अ लवली आफ्टरनून. लेकर आए हैं एक और गाना टेकन फ्रॉम द फिल्म है जवानी तो इश्क होना है. बॉक्स ऑफिस पर तो कमाल नहीं दिखा पाई ये फिल्म, लेकिन गाना हुआ वेरी पॉपुलर. Enjoy this one.

0: Radio Musty.
1: Your life is not complete until you have a little musty in your life. Radio Musty. All the way. The latest news and the greatest mix of music. Radio Musty.
0: Radio Musty. Talkies. Radio Musty.
1: Radio Musty.
2: तो चलिए दोस्तों, आप हमारा साथ दे रहे हैं यहाँ पर. विजया जी, तेरे हवाले कर दिया, ये गाना सुनकर आप हो गई हैप्पी हैप्पी. ये गाना शायद आपके दिल तक पहुँच गया. सो दैट वाज अ ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल सॉन्ग और लाल सिंह चड्ढा का ये गाना जो रहा वेरी पॉपुलर. थैंक यू सो मच, आप साथ दे रही हैं, जानकर अच्छा लगा. ऐसे ही कुछ प्यारे गाने चलाते रहेंगे आपके नाम यहाँ पर. अखिलेश, आप भी हमारा साथ दे रहे हैं, मोस्ट वेलकम आपका. कुछ प्यारे गाने होंगे आपके नाम भी. चलिए दोस्तों, बता दें आपको, शाहिद कपूर एक बार फिर बड़े पर्दे पर नजर आने वाले हैं. उनकी फिल्म कॉकटेल 2 कल यानी कि आज, आज रिलीज हो रही है, और 19th of June. और आपको बता दें दैट इस फिल्म में शाहिद के अलावा कृति सनन एंड रश्मिका मंदाना जैसे स्टार्स नजर आने वाले हैं. फिल्म को लेकर फैंस काफी एक्साइटेड है. ट्रेलर को भी अच्छा रिस्पांस मिला और पहले ही दिन फिल्म कितनी कमाई कर सकती है इसके लिए अटकलें शुरू हो गई है. और सुनने में आ रहा है दैट पहले दिन यानी कि आज के दिन ये फिल्म 11 crores का ओपनिंग कलेक्शन कर सकती है. और कहते हैं दैट फिल्म अगर 11 crore नहीं तो कम से कम 9 crore की कमाई तो करेगी ही करेगी. और कहते हैं कि मिनिमम 9 crores, मैक्सिमम 12 crores, ये अंदाजा लगाया जा रहा है इस फिल्म के लिए. जहां पर ट्रेलर के बाद अब फैंस काफी एक्साइटेड है इस फिल्म को देखने के लिए. सब देखना तो ये होगा कि लोगों को ये फिल्म कितनी पसंद आती है. देखिए, कंपैरिजंस तो हमेशा होते हैं और ये हम जानते हैं कि जब कॉकटेल फिल्म आई थी तो लोगों को ये फिल्म बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा ज्यादा पसंद आई थी. तो अब इसके साथ कंपैरिजन होना ये तो बनता है. लेकिन क्या उम्मीदों पर खरी उतरेगी कॉकटेल 2, इसके लिए हमें करना है थोड़ा सा इंतजार. लेकिन आपको हम नहीं करवाएंगे इंतजार. कुछ ब्यूटीफुल ट्रैक्स आपके लिए हम चुनकर लाए हैं और एक गाना ऐसा जो आपके दिल को छूने वाला है. अब कॉकटेल 2 की बात हुई है, सो अरिजीत सिंह, सुनिधि चौहान, एक गाना ऐसा जो बहुत ज्यादा रोमांटिक है, शायद अभी तक आपने नहीं सुना. चलिए आपको सुनाते हैं ब्यूटीफुल ट्रैक फ्रॉम द फिल्म कॉकटेल 2.

0: RM2
1: Radio Masti.
0: Feel the Masti.
2: So well, every day यहाँ पर रेडियो मस्ती पर आपके लिए ऐसे ही मस्ती भरे गाने जो आपके दिल को लुभाते रहे. वैसे आज तो फ्राइडे है, सो लेट्स मेक इट स्पेशल आप सभी के लिए जो इस वक्त हमारा साथ दे रहे हैं. दैट्स नखरे फॉर यू. और इसी गाने के साथ हम बढ़ने वाले हैं टुवर्ड्स योर समाचार लौट कर आएंगे विद सम गुड म्यूजिक एंड सम मोर बॉलीवुड अपडेट्स. मैं हूँ परी आपके साथ एंड इट्स टाइम फॉर योर बॉम्बे टॉकीज. अभी से लेकर 4 बजे तक मैं हूँ आपके साथ.

0: subscribe to Radio Musti.
1: The time is brought to you by McDonald's.
2: McDonald's. Ba-da-ba-ba-ba. I'm loving it.
1: And RKG Classic Pure Cow Ghee. Share the taste. Share happiness.
0: Radio Musti.
3: North. South.
0: 103.5.
3: East. West.
0: 96.4.
3: Center.
0: 99.4.
4: RM2 Radio Musti.
0: Radio Musti.
4: The latest news and the greatest mix of music. Feel the Musti.
5: Time check, 3 PM. देश विदेश की खबरों के साथ स्टूडियो में आ गई है आस्था, आपको नमस्कार।
6: नमस्कार, 3 बजे के समाचारों में स्वागत है आप सभी का। आज देश की निगाहें राष्ट्रीय सभा पर टिकी हुई हैं, जहां प्रधानमंत्री तथा वित्त मंत्री डॉक्टर नवीन रामगुलाम शाम 5 बजे वर्ष 2026-2027 का बजट पेश करेंगे। आर्थिक चुनौतियों और बढ़ती जीवन यापन लागत के बीच प्रस्तुत किए जाने वाले इस बजट से आम जनता, व्यापार जगत, निवेशकों, किसानों, युवाओं और विभिन्न सामाजिक संगठनों को काफी उम्मीदें हैं। महंगाई, क्रय शक्ति, आवास, रोजगार के अवसर, कृषि सेक्टर की मजबूती तथा आर्थिक विकास को नई गति देने वाले कदमों पर विशेष ध्यान रहने की संभावना है। वहीं सामाजिक सेक्टर से जुड़े संगठन और गैर सरकारी संस्थाएं भी ऐसे ठोस प्रावधानों की अपेक्षा कर रही हैं जो जमीनी स्तर पर लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सके। आज सुबह RM1 के कार्यक्रम में कृषि उद्योग मंत्री डॉ अरविंद बुलेन ने बजट से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर अपनी राय रखी। बातचीत के दौरान उनसे ये पूछा गया कि ये बजट जनता के लिए राहत लेकर आएगा या कठिन फैसलों का संदेश देगा। नई

0: पेंशन व्यवस्था से जुड़े प्रश्नों पर भी उन्होंने अपने विचार व्यक्त किए। तो बजट भाषण का सीधा प्रसारण शाम 5 बजे से एमबीसी 1, एमबीसी सट और एमबीसी प्ले पर किया जाएगा। साथ ही क्रियोल, भोजपुरी और अन्य माध्यमों से भी दर्शकों तथा श्रोताओं के लिए विशेष अनुवाद की व्यवस्था की गई है। बजट प्रस्तुति के बाद विशेष विश्लेषण कार्यक्रमों में राजनीतिक नेताओं, अर्थशास्त्रियों और विभिन्न सामाजिक आर्थिक सेक्टरों के प्रतिनिधियों द्वारा प्रमुख घोषणाओं पर चर्चा की जाएगी तथा उनके संभावित प्रभावों का आंकलन किया जाएगा। संगीत की कोई सीमा नहीं होती और यही संदेश लेकर एमबीसी में इस वर्ष भी म्यूजिक डे मनाया जा रहा है। इस खास अवसर पर विभिन्न विभागों के कर्मचारियों ने अपने रोजमर्रा के कार्यों से थोड़ा समय निकालकर अपनी एक अहक पहचान दिखाई है। किसी के लिए संगीत एक जुनून है तो किसी के लिए दिल की अभिव्यक्ति का माध्यम, और इसी भावना के साथ सभी एक बड़े कहाव के कार्यक्रम में शामिल हुए, जहां उत्साह, मित्रता और संगीत का सुंदर संगम देखने को मिला। प्रतिभा, मेलजोल और संगीत के प्रति प्रेम को समर्पित ये विशेष कार्यक्रम दर्शकों के लिए इस शनिवार 8:30 बजे एमबीसी 2 पर प्रसारित किया जाएगा। अमेरिका और ईरान के बीच होने वाली प्रत्यक्ष वार्ता का नया दौर फिलहाल टाल दिया गया है, क्योंकि अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वांस ने अपनी स्विट्जरलैंड यात्रा स्थगित कर दी है। व्हाइट हाउस के अनुसार वार्ता की तैयारियां अभी पूरी नहीं हो सकी हैं। ये घटनाक्रम ऐसे समय में हुआ है जब दोनों देशों के बीच हाल ही में संघर्ष समाप्त करने के उद्देश्य से एक समझौता हुआ था और अमेरिका ने ईरान पर लगाया गया 9 सैनिक नाकाबंदी भी हटा दी थी। हालांकि समझौते में लेबनान में हिंसा रोकने की बात भी शामिल है, लेकिन दक्षिणी लेबनान में इजरायली हमलों और जारी तनाव के कारण वार्ता की प्रक्रिया प्रभावित हुई है। इसी के साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए।
1: हर पल का साथी, हर दिल की आवाज, खुशियों का रंग और यादों का साज, हंसी हो या गम ये रहता है साथ। संगीत से ही महकती है जीवन की हर एक बात। हैप्पी म्यूजिक डे फ्रॉम एमबीसी रेडियो।

सो वेल फ्रेंड्स, सेलिब्रेटिंग म्यूजिक ईच एंड एवरी डे, ये है आपका अपना RM2 रेडियो मस्ती। 3:15, मैं हूँ परी आपके साथ, बी टाउन के लेटेस्ट गर्मा गर्म अपडेट्स आप तक पहुँचा रहे हैं। सो साथ देने के लिए शुक्रिया फॉर नाउ। स्टीवन बेन की आवाज़ एंड दिस वन गोज आउट आप सभी के नाम।

0: Talkies. Radio Musty.
1: Radio Musty.
2: फ्रेंड्स, जैसे हम जानते हैं दैट अराउंड द वर्ल्ड जून के महीने में सेलिब्रेट किया जाता है फादर्स डे. और जैसे हम जानते हैं दैट बॉलीवुड में भी बहुत सारी ऐसी बाप बेटी की जोड़ियां हैं जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर रही. इस मौके पर लोग अपने पिता के लिए प्यार जताते हैं, यानी कि हम बात कर रहे हैं फादर्स डे की, और उसे स्पेशल, उन्हें स्पेशल महसूस कराते हैं. बॉलीवुड में भी कई ऐसी बाप बेटी की जोड़ियां हैं जिनकी मजबूत बॉन्डिंग को खास, और उनका जो खास रिश्ता है वो फैंस को काफ़ी पसंद आता है. तो शुरुआत करते हैं यहाँ पर महेश भट्ट और आलिया भट्ट की.

0: कोड़ी के साथ बॉलीवुड एक्ट्रेस आलिया भट्ट अपने पिता महेश भट्ट के बेहद करीब है। महेश भट्ट इंडस्ट्री के जाने माने डायरेक्टर है और आलिया की कामयाबी पर वो हमेशा खुश नजर आते हैं। वहीं श्रद्धा कपूर, शक्ति कपूर, यस, इनकी गिनती बॉलीवुड की सबसे प्यारी बाप बेटी की जोड़ियों में होती है। जहां शक्ति कपूर अपने दौर के मशहूर विलन और कॉमेडी किंग रहे हैं, वहीं श्रद्धा आज के समय की सबसे पॉपुलर एक्ट्रेसेस में से एक है। वहीं अगर हम बात करें भारतीय सिनेमा की सबसे टैलेंटेड और बिंदास बाप बेटी की जोड़ी, तो इसमें नाम शामिल होता है श्रुति हसन एंड कमल हसन का। कमल हसन साउथ की सबसे पॉपुलर एक्टर्स में से एक है। वहीं श्रुति हसन ने अपनी एक्टिंग से इंडस्ट्री में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। सैफ अली खान, सारा अली खान बॉलीवुड की सबसे कूल बाप बेटी की जोड़ियों में से एक है। दोनों को जब भी साथ देखा जाता है, उनका रॉयल अंदाज और मजेदार बातचीत फैंस का जो दिल है वो जीत लेती है। और आपको बता दें, चंकी पांडे और अनन्या पांडे बॉलीवुड की सबसे मजेदार और कूल बाप बेटी की जोड़ियों में से एक है। दोनों अपनी हाजिर जवाबी और हंसी मजाक से हर किसी को एंटरटेन करते हैं और उनकी जोड़ी को भी बहुत ज्यादा पसंद किया जाता है। वहीं सोनम कपूर, अनिल कपूर बॉलीवुड की सबसे स्टाइलिश, फैशनेबल और चहेते बाप बेटी की जोड़ी में से एक है। अनिल कपूर जहां अपने एवरग्रीन लुक्स के लिए जाने जाते हैं, वहीं सोनम को बॉलीवुड की फैशन क्वीन कहा जाता है। साथ ही यहाँ पर हम बात करेंगे बॉलीवुड की सबसे प्यारी, फिट और मैच्योर बाप बेटी की जोड़ी, एंड दैट्स सुनील शेट्टी एंड अथाया शेट्टी। सुनील जहाँ पर अपनी बेहतरीन फिटनेस और दमदार एक्टिंग के लिए जाने जाते हैं, वहीं अथाया अपने ग्रेसफुल अंदाज और बेहतरीन फैशन सेंस के लिए मशहूर है। सो यहाँ पर कुछ फादर डॉटर की जो जोड़ी है उसके बारे में हमने बात की। और जैसे हमने कहा कि जून का महीना हम डेडिकेट करते हैं हमारे डियर पापाओं के नाम, हमारे डियर फादर्स, तो वेल बॉलीवुड में भी है ऐसी बहुत ही जानी मानी जोड़ियाँ। अभी के लिए ऐसे ही कुछ प्यारे गाने आपके लिए हम लेकर आए हैं। योर मैसेजेस, योर डेडिकेशंस हैपनिंग 5499-1294 पर।
1: More music in the mix.
2: Aaj Azadi hai.
3: Bombay Talkies. Radio Musti.
4: Radio Musti.

तो चलिए दोस्तों, ब्यूटीफुल गाने आपके लिए हम लेकर आए हैं, अपडेट्स आप तक पहुंचा रहे हैं। जैसे आप जानते हैं, आपके मैसेजेस, आपके डेडिकेशंस जो हमारे दिल के बहुत ज्यादा करीब होते हैं। रहेगा आपका इंतजार 5499-1294 पर। थोड़ी ही देर में आपके मैसेजेस, आपके डेडिकेशंस, आपके दिल का हाल पहुंचाएंगे आपके अपनों तक। राइट हियर ऑन द वेव्स ऑफ रेडियो मस्ती, मैं हूं परी आपके साथ। एंजॉय दिस वन।

0: Talkies. Radio Musty.
1: Radio Musty.
2: दोम दोम चलिए दोस्तों इट्स टाइम कि मैं परी आपसे लूँ अलविदा, लेकिन जाने से पहले जो वादा किया वो निभा के जाएंगे, यानी कि आपके मैसेजेस आपके डेडिकेशंस आपके अपनों तक पहुंचा के जाएंगे। यहाँ पर विजया जी, आपकी स्वीट स्वीट बातें इतनी स्वीट क्यों होती है? क्योंकि आपकी बातों को सुनकर हमें लगता है कि आपके मैसेजेस हम तक पहुँचते रहें और ऐसी प्यारी प्यारी बातें हम सुनते रहें। वैसे कहा कि आपकी बेटी शी इज़ सेलिब्रेटिंग म्यूजिक डे इन हर स्कूल एंड हर प्राइवेट ऑफिस मे बी ऑल्सो दे आर सेलिब्रेटिंग म्यूजिक डे, लेकिन मैं तो एवरी डे म्यूजिक एंजॉय करती हूँ हमारी RM2 फैमिली के साथ। ये हुई ना बात, और आपके हर एक दिन को हम सेलिब्रेशन बनाने की कोशिश करते हैं। सो थैंक यू सो मच विजया जी फॉर ऑल द लव, गॉड ब्लेस यू एंड स्टे हैप्पी ऑलवेज। बस आपके लिए प्यारे प्यारे गाने चलते रहें ऑन RM2 रेडियो मस्ती। एंड कहते हैं मैं तो घर आ गया हूँ वापस काम से, आप है कुमार देवीचंद लिसनिंग टू द फैबुलस रेडियो मस्ती प्रोग्राम। और थैंक यू जी, इस वक्त फुल वॉल्यूम पर आप गानों को एंजॉय कर रहे हैं, साथ में आपका पियानो भी है जो आपका हम सफर बना हुआ है। डेडिकेटिंग अगला गाना फॉर लवली पापा श्याम देवीचंद ऑफ पेबेल, लव यू सो मच पापा, ये मैसेज है उनकी ओर से। हाय हाय, यहाँ पर फोटो क्या आ गया, केक एंड कॉफी या फिर चाय, कौन है जो ये मस्त अपना टी टाइम एंजॉय कर रहा है? आप है यलेश, ये हुई ना बात यलेश, एंजॉय टी टाइम, आपके लिए भी हम चलाते रहेंगे कुछ ब्यूटीफुल सॉन्ग्स। अभी के लिए लास्ट गाना होगा

आपके नाम विद लोड्स ऑफ लव सभी शाम परिवार सुरनाम से हमारा साथ दे रहे हैं सो हैव अ ग्रेट ग्रेट टाइम वी आल्सो हैव रितेश श्यामा रानी आदर्श थनीश निष्ठा जयश्री युषरा राधा वशिष शकील एंड सभी जीवन परिवार ऑफ बेल ए और कहते हैं गाना हो जाए फॉर द एंटायर क्रू ऑफ रेडियो मस्ती एंड थैंक यू जी आपकी इतनी प्यारी प्यारी बातें हमारे दिल तक पहुंच जाती है सो लोड्स ऑफ लव टू एवरीवन जो इस वक्त हमारा साथ दे रहे हैं आपको एंटरटेन हम ऐसे ही करते रहेंगे और रेडियो मस्ती अभी के लिए इट्स टाइम फॉर परी टू से गुड बाय आ रही है गिनिशा लेकर योर फ्राइडे मैशअप सो स्टे कनेक्टेड एंड आपके इस फ्राइडे को बनाएंगे एकदम फ्राइये सो ऐसे ही कनेक्टेड रहें एंड कीप एंजॉयिंग द म्यूजिक क्या अपना भी ख्याल रखिए अपने फ्राइडे को एंजॉय करें वीकेंड को एंजॉय करें एंड फॉर नाउ दिस वन गोज आउट आप सभी के नाम

हर पल का साथी, हर दिल की आवाज, खुशियों का रंग और यादों का साज, हंसी हो या गम ये रहता है साथ। संगीत से ही महकती है जीवन की हर एक बात। हैप्पी म्यूजिक डे फ्रॉम MBC रेडियो।

0: आइए सुनते हैं समाचार विधिमा के साथ। नमस्कार।
1: नमस्कार गिनिशा, सभी सुनने वालों को नमस्कार। आज देश की निगाहें राज्यसभा पर टिकी हुई है, जहां प्रधानमंत्री तथा वित्त मंत्री डॉक्टर नवीन रामगुलाम शाम 5 बजे वर्ष 2026-2027 का बजट पेश करेंगे। आर्थिक चुनौतियों और बढ़ती जीवन यापन लागत के बीच प्रस्तुत किए जाने वाले इस बजट से आम जनता, व्यापार जगत, निवेशकों, किसानों, युवाओं और विभिन्न सामाजिक संगठनों से काफ़ी उम्मीदें हैं। महंगाई, क्रय शक्ति, आवास, रोजगार के अवसर, कृषि क्षेत्र की मजबूती तथा आर्थिक विकास को नई गति देने वाले कदमों पर विशेष ध्यान रहने की संभावना है। वहीं सामाजिक क्षेत्र से जुड़े संगठन और गैर सरकारी संस्थाएं भी ऐसे ठोस प्रावधानों की अपेक्षा कर रही हैं जो जमीनी स्तर पर लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकें। आज सुबह और M1 के कार्यक्रम में कृषि उद्योग मंत्री डॉक्टर अरविंद बुले ने भी बजट से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर अपनी राय रखी। बातचीत के दौरान उनसे ये भी पूछा गया कि ये बजट जनता के लिए राहत लेकर आएगा या कठिन फैसलों का संदेश देगा। नई पेंशन व्यवस्था से जुड़े प्रश्नों पर भी उन्होंने अपने विचार व्यक्त किए। बजट भाषण का सीधा प्रसारण शाम 5 बजे से MBC 1, MBC 7 और MBC Play पर किया जाएगा। साथ ही क्रियोल, भोजपुरी और अन्य माध्यमों से भी दर्शकों तथा श्रोताओं के लिए विशेष अनुवाद की व्यवस्था की गई है। बजट प्रस्तुति के बाद विशेष विश्लेषण कार्यक्रमों में राजनीतिक नेताओं, अर्थशास्त्रियों और विभिन्न सामाजिक आर्थिक क्षेत्रों के प्रतिनिधियों द्वारा प्रमुख घोषणाओं पर चर्चा की जाएगी तथा उनके संभावित प्रभावों का आकलन किया जाएगा। संगीत की कोई सीमा नहीं होती, और यही संदेश लेकर MBC में इस वर्ष भी संगीत दिवस मनाया जा रहा है। इस खास अवसर पर विभिन्न विभागों के कर्मचारियों ने अपने रोजमर्रा के कार्यों से थोड़ा समय निकालकर अपनी एक अलग पहचान दर्शाई है। किसी के लिए संगीत एक जुनून है तो किसी के लिए दिल की अभिव्यक्ति का माध्यम, और इसी भावना के साथ सभी एक बड़े कराओके कार्यक्रम में शामिल हुए, जहाँ उत्साह, मित्रता और संगीत का सुंदर संगम देखने को मिला। प्रतिभा, मेलजोल और संगीत के प्रति प्रेम को समर्पित ये विशेष कार्यक्रम दर्शकों के लिए इस शनिवार रात 8:30 बजे MBC 2 पर प्रसारित किया जाएगा। विदेश के खबरों में स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि दक्षिणी लेबनान में रात भर हुए इजरायली हवाई हमलों के बाद कम से कम 18 लोगों की मौत हो गई है, जबकि इजरायली सेना का कहना है कि उसके 4 सैनिक भी मारे गए हैं। ये घटना उस समझौते के एक दिन बाद हुई है जिस पर अमेरिका और ईरान ने मध्य पूर्व में संघर्ष को समाप्त करने के उद्देश्य से हस्ताक्षर किए थे, जिसमें लेबनान में शत्रुता को स्थायी रूप से रोकना भी शामिल है। और उधर अधिकारियों के अनुसार गुरुवार को नाइजर के सबसे बड़े हवाई अड्डे पर बंदूकधारियों के हमले में 35 लोग मारे गए हैं। 5 महीने से भी कम समय में ये दूसरा हमला है। नाइजर के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि मृतकों में 22 हमलावर, 11 सैनिक और 2 नागरिक शामिल हैं। तो इन्हीं खबरों के साथ ही संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए। आपके ध्यान के लिए धन्यवाद। नमस्कार।
2: News on NBC Play, NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.tv.
3: It's not just about the music, it's about the feeling.
2: Friday Mashup. Friday Mashup.
3: RM2, Radio Musty, in the mix.

0: Friday Mashup. 4 to 6 on Radio Musti.
1: RM2, Radio Musti, your number one Bollywood radio station.
0: Friday Mashup.
1: RM2, Radio Musti.
2: Well guys, check your time studio की घड़ी में exactly 4:07 हो चुके हैं. Wishing all of you a very good afternoon. नमस्कार जी और गिनीशा का प्रणाम. Friday 19th of June 2026. जी हाँ, already Friday हो भी चुके हैं और ये weekend यहीं से शुरू हो जाती है. So let's all kick start this beautiful weekend with some good music. आपके और हमारे बीच में on our round to Radio Musti. ऐसे काम का प्रेशर तो आप छोड़ दीजिए, स्ट्रेस को साइड में रख दीजिए, क्योंकि फ्राइडे आफ्टरनून का असली सेलिब्रेशन अब शुरू हो चुका है. और जो लोग ऑफिस से घर की तरफ निकल चुके हैं, ये सफर हम और आप मिलकर बनाएंगे म्यूजिकल और काफी मेमोरेबल. सो रेडियो मस्ती पर बजने वाला है नॉन स्टॉप फ्राइडे मैशअप आप लोगों के लिए विद मी हियर गणेशा. और साथ में आपको याद दिला दे, आज फ्रॉम 4:55 you'll be able to listen to the budget 2026 live on RN2 Radio Musti. So stay tuned and stay connected.

गानों का सिलेक्शन से एकदम खास लेकर आते हैं आप लोगों के लिए ऑन दिस ब्यूटीफुल फ्राइडे आफ्टरनून। जी हाँ, फ्राइडे जब भी आते हैं तो हमेशा की तरह खुशियां भी लेकर आते हैं। वैसे हम हैं निशा जो साथ दे रहे हैं इस फ्राइडे मैशअप शो में, और हम लेकर आए हैं बॉलीवुड के जो बीट्स, यानी कि कभी कभी रेट्रो ट्विस्ट भी आते हैं, आपकी पहाड़ी वाइब्स का अल्टीमेट कॉम्बो होता है आपके इस खूबसूरत से वीकेंड की शुरुआत के लिए। तो चाहे आप कार में हो, बस में हो, या हो सकता है मेट्रो में बैठे हो या टैक्सी में बैठे हो, रेडियो मस्ती को रखिए हमेशा अपने साथ और वीकेंड का स्वागत कीजिए स्टाइल के साथ।

0: RM2 Radio Misty.
1: It's not just about the music, it's about the feeling.
0: Friday Mashup.
1: RM2, Radio Musty, in the mix.
2: Sports Magazine is brought to you by Quality Decor, the floor expert.
0: Sports News.
1: Radio Musty, in the mix.
3: गाइस चेक योर टाइम स्टूडियो की घड़ी में 4:35 हो चुके हैं और बॉलीवुड की दुनिया से निकल के लेके जाएंगे आपको स्पोर्ट्स की दुनिया में और आज हमारे पास एक नहीं दो गुरुज हैं यानी कि वी हैव अरविंद जी और विकास जी. मैं ऑफ कोर्स गुरु तो आप लोग है ना, मुझे तो कुछ नहीं पता स्पोर्ट्स के बारे में. गुड आफ्टरनून टू यू.
4: गुड आफ्टरनून. और अरविंद और मैं बात ही करते कि जहां पर बड़े रिकॉर्ड टूट रहे हैं, हम मेसी की बात करते हैं, वहीं पर काफी लोगों की नजर थी रोनाल्डो पर. क्या वो कुछ कमाल कर पाएगा? चलिए ये क्वेश्चन तो एक ही है और बाकी सवाल देने के लिए और ज्ञान देने के लिए आ गए हैं स्पोर्ट्स गुरु अरविंद.
5: रोनाल्डो पर बहुत उम्मीदें थी लेकिन पहले मैच में उसने निराश किया. लेकिन कहते हैं कि हीरे को चमकने के लिए समय लगता है.
4: क्या कहें कि शेर पीछे हटता छलांग मारने के लिए.
5: हाँ, जिसे आपको याद होगा पिछले वर्ल्ड कप में अर्जेंटीना की टीम हार गई थी पहले मैच में. मेसी कुछ खास नहीं कर पाया था और पर उसके बाद बाकी हिस्ट्री है. दे वेंट ऑल द वे टू विन द वर्ल्ड कप और पोर्टुगल की टीम जिसने अपना मैच ड्रॉ किया. अब उनको पता है कि उनकी क्या समस्याएं हैं, लकुना हैं. तो ऐसे में विल सी. सो विकास, रेडी फॉर द वर्ल्ड कप?
4: रेडी अपने चाय के कप के साथ वर्ल्ड कप देखने के लिए
5: सुबह सुबह कल 8 बजे मैच होगा.
3: और अभी थोड़ी देर में क्या होने वाला है?
4: अभी थोड़ी देर में होने वाला है एक और गाना और उसके बाद बजट.
3: Exactly.
5: right. तो यहाँ पर बता दें कि अगले सीजन प्रीमियर लीग सीजन का जो फिक्स्चर्स हैं वो निकल चुके हैं. कोवेंट्री सिटी जो चैंपियनशिप जीतकर प्रमोट हुई है वो चैंपियन आर्सेनल के खिलाफ खेलेगी द फर्स्ट मैच ऑफ द 2026-2027 प्रीमियर लीग सीजन. कर्टन रेजर ये होगा फ्राइडे 21 अगस्त को और द स्काई ब्लूज पहला टॉप फ्लाइट मैच खेलेंगे 25 साल बाद अगेंस्ट द गनर्स. माइकल आर्टेटा की टीम जो चैंपियन बनी थी. हल सिटी जो प्ले ऑफ से आई है प्रीमियर लीग में उसका मुकाबला मैनचेस्टर यूनाइटेड से होगा. सो मैनचेस्टर यूनाइटेड हल

0: सिटी, जबकि न्यूली प्रोमोटेड साइड इप्सविच होम में होंगे सन्डरलैंड के मैदान में। मैनचेस्टर सिटी का मुकाबला यानी मैनचेस्टर सिटी लाइफ विदाउट पेप गार्डियोला बोर्नमुथ के खिलाफ ये संडे 23 अगस्त को, और लिवरपूल का पहला मैच अंडर एंटोनी इराओला वो होगा न्यूकासल यूनाइटेड के खिलाफ एवे मैच। द चेरीज तैयार हैं लिवरपूल का स्वागत करने के लिए। चेल्सी जो ज़ावी अलोंसो के साथ होगा वो फुलहाम के खिलाफ खेलने जाएगा। तो ये सभी फिक्स्चर्स जो हैं, सभी मैच कल सुबह आपको देंगे कौन सी टीम किसके खिलाफ खेल रही है। इट्स द प्रीमियर लीग डेब्यू। सो अब बात करें द वर्ल्ड कप, वर्ल्ड कप जहां पर आज काफ़ी मैच खेले जाएंगे आज और कल सुबह, स्टार्टिंग विद यूनाइटेड स्टेट्स ऑस्ट्रेलिया। ये 11 बजे आज ये मैच होगा। दोनों के लिए बिग थिंग्स एट स्टेक, क्योंकि अगर यूनाइटेड स्टेट्स या ऑस्ट्रेलिया में से एक की जीत होती है दे विल क्वालिफाई फॉर द नेक्स्ट राउंड, क्योंकि दोनों के पास अभी 3-3 अंक हैं और यूनाइटेड स्टेट्स होम मैदान में है, द सोकोरूस से उनको बचना होगा। ग्रुप सी वाला मैच ये होगा 2 बजे स्कॉटलैंड और मोरक्को के बीच। स्कॉटलैंड की टीम जिसने पहले मैच में आईसी को हराया था मोरक्को के खिलाफ, मोरक्को जिसने ब्राज़ील को रोका था, तो आज मोरक्को अपना मैच जीतना चाहेगा टू बी इन द हंट टू क्वालिफाई। जबकि कल सुबह होगा मैच ब्राज़ील और आईसी के बीच, ये 4:30 बजे। ब्राज़ील की टीम को रोका था मोरक्को ने, ब्राज़ील धीरे धीरे हौले हौले रफ्तार पकड़ेगा। आईसी की टीम भले ही हार हुई थी स्कॉटलैंड के खिलाफ पर इस टीम में रफ्तार है, ब्राज़ील को परेशान कर सकते हैं। और सुबह 7 बजे के करीब टर्की वर्सेस पाराग्वे ये मैच होगा, और कल ही रात को नेदरलैंड्स स्वीडन, कल ही जर्मनी आइवरी कोस्ट। सो कल शाम को जो मैच खेले जाएंगे, रात को नेदरलैंड्स स्वीडन जर्मनी आइवरी कोस्ट, डेफिनेटली इन दो मैचों में से अगर किसी की जीत हुई दे विल क्वालिफाई फॉर द नेक्स्ट राउंड। तो अब धीरे धीरे टीमें अगले राउंड के लिए क्वालिफाई होने लगी हैं। आज सुबह मोरक्को की टीम क्वालिफाई हुई है। वैसे मैच चल रहे हैं और आप लोगों ने देखा होगा कि हाइड्रेशन ब्रेक होते हैं और हाइड्रेशन ब्रेक के बाद टीवी पे एड्स आते हैं। इस पर बातें हो रही हैं कि इट्स ए $250 मिलियन गोल्ड माइन, यानी जब हाइड्रेशन ब्रेक है तो इधर टीवी वाले एड दिखा देते हैं 4 minutes and 20 seconds पर मैच, दैट इज 7 hours 30 minutes and 40 seconds अक्रॉस द टूर्नामेंट। तो ऐसे में एक्स्ट्रा टीवी एडवर्टाइजिंग जिससे कि मालामाल हो रही है फीफा। और बाकी जो है मोरक्को का कप्तान हकीमी, उसको रेप ट्रायल के लिए बुलाया जाएगा, लेकिन शायद वर्ल्ड कप के बाद ही स्टैंड ट्रायल फॉर रेप। अब जब इसकी टीम क्वालिफाई होगी और उनको जाना होगा कनाडा या मेक्सिको, प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकते हैं, क्योंकि कनाडा की गवर्नमेंट के वेबसाइट पे लिखा है दे कैन डिनाई एंट्री टू एनी पर्सन दैट हैज कमिटेड और बीन कन्विक्टेड फॉर ए क्राइम। सो आज के मैच बता दें कि सभी मैच एमबीसी एप्ट पर लाइव, और आज 9:30 बजे en route vers New York ये होगा स्पेशल प्रोग्राम, स्पेशल प्लाटू। और जो मैच है 11 बजे वो एमबीसी 11 पर भी आप लोग देख पाएंगे। चलते चलते क्रिकेट के बारे में बता दें, आज जो इंडिया ए वाला मैच है जो संडे को खेला जाएगा फाइनल में, उसका मुकाबला श्रीलंका से है, क्योंकि श्रीलंका ने आज अफगानिस्तान ए को हराया है। और वर्ल्ड कप वीमेन T20 वर्ल्ड कप जारी है, आज आयरलैंड वीमेन अगेंस्ट न्यूजीलैंड वीमेन, ऑस्ट्रेलिया वीमेन अगेंस्ट नेदरलैंड्स वीमेन, पाकिस्तान वीमेन अगेंस्ट बांग्लादेश, और उसके बाद कल वीकेंड में भी काफ़ी मैच रखे गए हैं। सो प्लेंटी ऑफ थिंग्स मेन्यू में, चाहे आज कल परसों सुबह उठकर चाय कप के साथ वर्ल्ड कप। गुड
1: गुड ऑल सेट
0: सेट। एक बात बोलूं?
1: बताइए।
0: आज सुबह मैं बता रहा था कि इस वर्ल्ड कप में छोटा हो या बड़ा सबके लिए जगह है।
1: कैसे?
0: ऑस्ट्रिया का गोलकीपर इफ आई कैन गेट दिस, अभी आज सुबह मैंने इस पर जानकारियां दी, ऑस्ट्रिया का जो गोलकीपर है वो सबसे लंबा है इसमें, 2 meters 2 feet समथिंग लाइक दिस, और जो सबसे छोटा है वो 1 meter समथिंग। तो इस वर्ल्ड कप में
1: आई इवन रिमेंबर, आई रिमेंबर लास्ट टाइम जब मैं देख रही थी, आई गेस मेक्सिको का मैच था ओपनिंग के दिन, एक प्लेयर था, ही वाज ओनली 17 इयर्स ओल्ड।
0: हां,

0: youngest one.
1: The youngest one, and he looks so like, you know, so young, like bacha lagta hai, but still playing for World Cup.
0: हाँ यहाँ पर मिल गया. Florent Wegele is the tallest player in this World Cup, standing 2 meters 5 centimeters. यानी 6 feet 9 inch.
1: 6 feet 9 inch.
0: Meanwhile, Panama का जो खिलाड़ी है Cesar Yanis, the shortest player in the tournament, measuring just 1 meter 60 centimeters 5 feet 3 inch. यानी वेदिता से थोड़ा ऊपर. हमारे बराबर
1: नहीं. अब वो रोएगी नहीं कि मैं छोटी हूँ.
0: नहीं नहीं नहीं, वो है ना लंबू जी बोलता है, बोलो टिंकू जी. तो लंबू टिंकू दोनों है, पर वर्ल्ड कप में सब कुछ है.
1: बिल्कुल जी.
2: This magazine was brought to you by Quality Deco, the floor expert.
3: Mega promo code Quality Deco. Tiles 30x30. Mega deal, low tiles 60x60. Super sales, low granite quartz. Ricassez-le la voix. La lumière moderne, prix choc.

0: fashion tips powered by Halkari Fashion, house of ready-made garments.
1: वेलकम शो की टाइम टाइम बीटा चला जा रहे हैं, अभी 4:45 हो चुके हैं और आपके फैशन टिप्स के लिए हम लेकर आए हैं विंटर शादी फैशन टिप्स फॉर यू ब्यूटीफुल लेडीज। जी हाँ, अभी तो शादी का सीजन भी चल रहा है, तो अगर आप चाहिए तो लहंगा या साड़ी के साथ स्टाइलिश शॉल, केप या वेलवेट जैकेट कैरी कर सकते हो। ठंड भी नहीं लगेगी और लुक भी ज्यादा क्लासी लगेगा। और वेलवेट एक्चुअली इट्स एक्चुअली योर बेस्ट फ्रेंड ड्यूरिंग विंटर्स। और विंटर में वेडिंग्स के लिए वेलवेट सूट, लहंगा और ब्लाउजेस परफेक्ट होते हैं। रिच और जो रॉयल लुक है वहीं से आता है।
0: फैशन टिप्स वॉज पावर्ड बाय हलकोरी फैशन, हाउस ऑफ रेडीमेड गार्मेंट्स।
2: RM2 रेडियो मस्ती।

0: You're listening to Radio Masti.
1: दिल की गहराई से बहुत बहुत शुक्रिया जी साथ देने के लिए ऑन ऑल राइट टू रेडियो मस्ती। फिलहाल के लिए टाइम बीटा चला जा रहा है, 4:50 होने को हैं और आज है फ्राइडे 19 June 2026। और जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि आज प्रधानमंत्री जो हैं डॉक्टर नवीन रंगुराम द्वारा बजट 2026-2027 प्रस्तुत किया जाएगा, तो जिसका लाइव प्रशासन जो होगा MBC TV 1 पर, MBC सैट और M1 तथा RM2 पर भी, तो स्टे ट्यून्ड एंड स्टे कनेक्टेड।

0: नमस्कार, समाचार रूम में आप सभी का स्वागत है। आज का ये बुलेटिन मुख्य रूप से बजट 2026-2027 के मुख्य कदमों पर आधारित रहेगा। आज प्रधानमंत्री एवं वित्त मंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम ने वर्ष 2026-2027 का बजट पेश करते हुए इसे एक जिम्मेदार बजट करार दिया। अपने भाषण में उन्होंने कहा कि सरकार ने आसान रास्ता चुनने के बजाय कठिन लेकिन आवश्यक निर्णय लेने का विकल्प चुना। प्रधानमंत्री ने आज स्पष्ट कहा है कि ये बजट केवल अगले 12 महीनों के लिए नहीं है, बल्कि आने वाले वर्षों में मॉरिशस की दिशा तय करने के उद्देश्य से तैयार किया गया है। उनके अनुसार देश ऐसे दौर से गुजर रहा है जहां वैश्विक आर्थिक अनिश्चितताओं, तकनीकी बदलावों और बढ़ती प्रतिस्पर्धा के बीच नई सोच और नए दृष्टिकोण की आवश्यकता है। प्रधानमंत्री ने आज अपने भाषण के दौरान कहा कि कई बार उन्होंने इस बात पर जोर दिया है कि सरकार का उद्देश्य केवल आर्थिक वृद्धि दर्ज करना नहीं, बल्कि ऐसी वृद्धि सुनिश्चित करना है जो टिकाऊ हो और भविष्य की चुनौतियों का सामना करने में सक्षम हो। तो यशना मिश्रा हमारे साथ हैं। इसी व्यापक दृष्टिकोण के साथ सरकार ने विभिन्न क्षेत्रों के लिए कई महत्वपूर्ण कदमों को बजट में शामिल किया है।
1: तो

0: प्रधानमंत्री ने कहा कि मॉरिशस को बदलती वैश्विक अर्थव्यवस्था के अनुरूप स्वयं को ढालना होगा। उनके अनुसार आने वाले वर्षों में नवाचार, ज्ञान, टेक्नोलॉजी और उत्पादकता आर्थिक सफलता के प्रमुख आधार होंगे। उन्होंने ये भी कहा कि पारंपरिक क्षेत्रों की भूमिका महत्वपूर्ण बनी रहेगी, लेकिन साथ ही नए अवसरों और नए विकास क्षेत्रों को भी अपनाना आवश्यक होगा। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने निवेश, ठेकेदारी, कौशल विकास और आर्थिक आधुनिकीकरण को विकास रणनीति के प्रमुख तत्वों के रूप में प्रस्तुत किया। भाषण में भविष्य की तैयारी पर विशेष बल दिखाई दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार का उद्देश्य ऐसी अर्थव्यवस्था का निर्माण करना है जो नई तकनीकों का लाभ उठा सकें, युवाओं के लिए अवसर पैदा कर सकें और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मॉरिशस की स्थिति को मजबूत बना सके। कई अन्य क्षेत्रों को लेकर कई महत्वपूर्ण ऐलान किए गए, इस पर ज़्यादा विस्तार आस्था देंगी।
1: जी, आप नज़र डालते हैं उन प्रमुख कदमों पर जिसकी घोषणा आज बजट भाषण में प्रधानमंत्री ने की। उन्होंने एक जिम्मेदार और भविष्य की ज़रूरतों को ध्यान में रखकर तैयार किया बजट, इसकी घोषणा की है। इसका उद्देश्य अर्थव्यवस्था को नई गति देना, निवेश को बढ़ावा देना, रोजगार के अवसर पैदा करना और मॉरिशस को AI के युग के लिए तैयार करना है। उन्होंने कहा कि सरकार की रणनीति 7 प्रमुख स्तंभों पर आधारित है। इनमें AI और डिजिटलाइजेशन को बढ़ावा देना, स्टार्टअप और SMEs को मजबूत करना, अर्थव्यवस्था का विस्तार करना, पारंपरिक क्षेत्रों को अधिक प्रतिस्पर्धी बनाना, समुद्री अर्थव्यवस्था की क्षमता का लाभ उठाना तथा निवेश में आने वाली बाधाओं को दूर करना शामिल है। तो भारत के सहयोग से चैंपियन ऑफ AI प्रोग्राम शुरू किया जाएगा। साथ ही 25 मिलियन रुपए लागत से नेशनल AI लर्निंग प्लेटफॉर्म स्थापित किया जाएगा जो प्रशिक्षण, प्रमाणन और AI आधारित स्टार्टअप कार्यक्रमों को समर्थन प्रदान करेगा। सरकार ने अगले वर्ष 25,000 लोगों को AI से जुड़े कौशलों का प्रशिक्षण देना है। इनमें ठेकेदार, पेशेवर डेवलपर्स और विभिन्न सेक्टरों के कर्मचारी शामिल होंगे। इसके अलावा 5,000 सरकारी कर्मचारियों को भी AI के जिम्मेदार उपयोग का प्रशिक्षण दिया जाएगा। शिक्षा के सेक्टर की बात करें तो AI के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए MyGPT प्रोग्राम का विस्तार किया जाने वाला है और अगले वर्ष लगभग 8,000 अध्यापकों को AI आधारित शिक्षण उपकरणों का प्रशिक्षण मिलेगा, जबकि 12,000 ग्रेड 9 के छात्रों को भी AI समर्थित शिक्षण साधनों तक पहुंच प्रदान की जाएगी। स्टार्टअप के क्षेत्र को नई गति देने के लिए सरकार स्टार्टअप एक्ट को 2 में स्टार्टअप हब, पब्लिक प्राइवेट स्टार्टअप काउंसिल और EDB के माध्यम से एक्सेलरेटर स्कीम शुरू करेगी। स्टार्टअप कंपनियों को संचालन शुरू करने की तारीख से 10 वर्षों की इनकम टैक्स हॉलीडे भी दी जाएगी। इनोवेशन की जहां तक बात है, उसको बढ़ावा देने के लिए 10 यूनिवर्सिटी छात्रों को 5,00,000 रुपए तक की इनोवेशन स्कॉलरशिप प्रदान की जाएगी ताकि वे अपने विचारों को व्यवसायिक परियोजनाओं में बदल सके। और SMEs के लिए सरकार SME बिल लाएगी। पात्र SMEs को उपयोगी वाहनों पर सीमा शुल्क छूट का लाभ मिलेगा और योजनाओं, ग्रांट तथा वित्तीय सुविधाओं की जानकारी के लिए एक एकीकृत डिजिटल मंच स्थापित किया जाएगा। निवेश और निर्यात को बढ़ावा देने के लिए 2 में 83 बीघा भूमि पर हाईटेक स्पेशल इकोनॉमिक जोन स्थापित की जाएगी। सरकार का लक्ष्य अगले 5 वर्षों में वस्तुओं के निर्यात को 1.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़ाकर 3 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंचाना है। और बंदरगाह क्षेत्र में USD जो 1 बिलियन USD मूल्य की आयरन कंटेनर टर्मिनल प्रोजेक्ट, उसको लागू कर दिया जाएगा। वहीं मॉरिशस पोर्ट्स अथॉरिटी और कार्गो हैंडलिंग कॉरपोरेशन द्वारा लगभग 7 बिलियन रुपए के निवेश प्रोग्राम पर भी काम चल रहा है। हवाई अड्डों के विस्तार और आधुनिकीकरण के लिए 2.7 बिलियन रुपए का निवेश है। इसमें बायोमेट्रिक ई-गेट सहित डिजिटल सीमा नियंत्रण प्रणाली लागू की जाएगी। सड़क मूल ढांचा को मजबूत करने के लिए फोबाग से एयरपोर्ट तक M4 मोटरवे प्रोजेक्ट हेतु 2 बिलियन रुपए प्रदान किए जाएंगे। कृषि क्षेत्र में वर्ष 2030 तक चीनी उत्पादन बढ़ाने के लक्ष्य के तहत अगले 3 वर्षों तक हर वर्ष 100 मिलियन रुपए उपलब्ध कराए जाएंगे, जिससे छोटे और मध्यम उत्पादकों की 500 हेक्टेयर भूमि का पुनर्वास किया जा सके। चाय उत्पादन, उसको बढ़ावा देने के लिए छोटे उत्पादकों को पुनः रोपण लागत पर

0: 50% ग्रांट दिया जाएगा। अधिकतम 25,000 रुपए प्रति बीघा तक दिया जा सकेगा। इससे वर्ष 2029 तक चाय उत्पादन में 50% वृद्धि का लक्ष्य रखा गया है। जलवायु परिवर्तन और खाद्य सुरक्षा की चुनौतियों से निपटने के लिए फॉरेस्ट बिल लाया जाएगा और एग्रो फॉरेस्ट्री प्रोजेक्ट शुरू किया जाएगा। पशुपालन क्षेत्र के लिए फार्मों के विकास, पशु आहार सहायता, पशु खरीद प्रोत्साहन और पशु चिकित्सा सेवाओं के लिए विभिन्न योजनाओं के लिए पैसे उपलब्ध कराए जाएंगे। साथ ही 50 मिलियन रुपए की लागत से एक आधुनिक अस्पताल का निर्माण किया जाएगा। वित्तीय क्षेत्र में सुधार के तहत इस वर्ष के अंत तक नया बैंक ऑफ मॉरिशस बिल, नया बैंकिंग बिल और एक नया रेजोल्यूशन रेजिम पेश किया जाएगा। इसका उद्देश्य बैंकिंग सेक्टर को अधिक मजबूत, सुरक्षित और आधुनिक बनाना है। कंस्ट्रक्शन सेक्टर, निर्माण क्षेत्र में सरकार ग्रीन बिल्डिंग कोड लागू करने के लिए कानून में संशोधन लाएगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि भविष्य की इमारतों को ऊर्जा की खपत करने के साथ साथ ऊर्जा उत्पादन में भी योगदान देना होगा। अन्य कदमों पर नजर याचना आपके साथ।
1: पर्यटन क्षेत्र को लेकर नए वैश्विक रुझान और उभरती हुई चुनौतियां हमारे पारंपरिक मॉडल को प्रभावित कर रही हैं। विविधता और टिकाऊ विकास की बात की गई, लगूनों का संरक्षण और बायोडायवर्सिटी हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए, जैसे कि ब्लूप्रिंट में उल्लेख किया गया। प्रधानमंत्री ने कहा कि लगून, समुद्र तट, जैव विविधता और प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा पर्यटन रणनीति के केंद्र में रहनी होगी। साथ ही हम पारंपरिक तटीय मॉडल से आगे बढ़कर नए पर्यटन अनुभवों के विकास का समर्थन किया जाएगा। प्रकृति आधारित पर्यटन, सांस्कृतिक पर्यटन, स्वास्थ्य पर्यटन और सामुदायिक पर्यटन पर अधिक जोर दिया जाएगा, ताकि विकास पर्यावरण के प्रति जिम्मेदार और आर्थिक रूप से समावेशी हो। एक पर्यटन स्थल के रूप में रोड्रिग्स की विशिष्टता को संरक्षित किया जाएगा और साथ ही नए रनवे के निर्माण के माध्यम से इसे गंतव्य के रूप में और महत्व दिया जाएगा। पर्यटन उत्पाद में विविधता लाने और स्थानीय भागीदारी बढ़ाने के उद्देश्य से सरकार मॉरिशस के विभिन्न क्षेत्रों में इको इंटीग्रेटेड टूरिज्म के विकास का समर्थन करेगी। ये गांव देश की सांस्कृतिक विरासत, स्थानीय व्यंजन, इतिहास, कृषि और प्राकृतिक आकर्षणों को प्रदर्शित करेंगे। डेस्टिनेशन मार्केटिंग में निवेश किया जाएगा। प्रमोशन कैंपेन के दौरान टिकाऊ विकास, पर्यावरण प्रिय पर्यटन पर ध्यान दिया जाएगा। सी सैंड एंड सन की नीति के परे देश को वैश्विक पर्यटन का केंद्र बनाने की योजना बनाई जा रही है। इन सभी के समर्थन के लिए 1 बिलियन रुपए का प्रावधान किया गया है, जिसमें मॉरिशस टूरिज्म पोर्ट्स एंड अथॉरिटी को 490 मिलियन रुपए दिए जाएंगे। सगाई तोंजवाल संस्था को रिवैम्प करके खामियों को पूरा किया जाएगा। एक डिजिटल प्रणाली बनाई जाएगी, जिसके जरिए विदेशी मॉरिशस का दौरा करने के लिए ई वीज़ा के लिए अर्जी दे पाएंगे। इससे एयरपोर्ट पर वेटिंग टाइम कम होगा और सुरक्षा बढ़ेगी। और शिक्षा क्षेत्र को लेकर भी कई कदमों का ऐलान किया गया है, ताकि इस क्षेत्र को और आधुनिक बनाया जाए और बच्चों की के पूर्ण विकास पर ध्यान केंद्रित हो। इस पर ज्यादा विस्तार आप इस रिपोर्ट में सुन पाएंगे। विवरण सुमेहरा अकबर अली का है।
2: शिक्षा को और ज्यादा कारगर बनाने और सबका एक्सेस बढ़ाने के लिए क्षेत्र के बजट को 2.6 बिलियन रुपए से बढ़ाया जा रहा है। एक भी बच्चा पीछे ना रहे, इसके लिए किताबों और शैक्षिक सामानों में 133 मिलियन रुपए निवेश किए जाएंगे। 3 नए MITD सेंटर्स को कायम किया जाएगा, ताकि ग्रेड 7 से ग्रेड 9 के बच्चों को प्रशिक्षित किया जा सके। इसके अलावा ग्रेड 1 और ग्रेड 2 के बच्चों के लिए एक बेसिक लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी प्रोग्राम की स्थापना की जाएगी। प्रधान एवं वित्त मंत्री ने ये भी ऐलान किया कि सैन स्कूलों के लिए एक खास इंटरवेंशन इकाई को कायम किया जाएगा। सरकार ग्रेड 10 और ग्रेड 11 के बच्चों के वास्ते एक टेक्निकल एजुकेशन अप्लाइड पाथवे की शुरुआत करने का मकसद रखती है, और स्कूलों में बुलिंग के मसले से निपटने के लिए सरकार एंटी बुलिंग अभियानों में 10 मिलियन रुपए निवेश करेगी। उच्च शिक्षा को अंतर्राष्ट्रीय सतह वाली तालीम का दर्जा देने के लिए एक नए ढांचे को विकसित किया जाएगा। बजट 2026-2027 में एक स्टडी इन मॉरिशस पोर्टल को लॉन्च करने का भी प्रावधान है, जिसके जरिए मकामी और अंतर्राष्ट्रीय छात्र दाखिले की प्रक्रिया कर सकें। पूर्व प्राथमिक से तृतीय शिक्षा संस्थाओं के मूल ढांचों को बेहतर बनाने के लिए सरकार द्वारा 824 मिलियन रुपए निवेश करने का प्रावधान है।
0: सरकारी खर्चों में कटौती और फिजूल खर्चे कम करने पर

0: जोर दिया जाएगा। सार्वजनिक क्षेत्र की कार्यकुशलता बढ़ाने के लिए विशेष समिति बनाई जाएगी और सभी मंत्रालयों के खर्चों पर फिर से गौर करने के लिए एक समिति गठित की जाएगी। प्रधानमंत्री ने ऐलान किया कि सांसद अब पूरे कार्यकाल में केवल एक ड्यूटी फ्री कार्ड पात्र होंगे। सिगरेट और शराब पर उत्पाद शुल्क में 10% की वृद्धि लाई जाएगी। अधिक चीनी वाले उत्पादों पर कर बढ़ाया जाएगा, उस पर टैक्स बढ़ाया जाएगा और इसका दायरा अन्य मीठे उत्पादों तक भी बढ़ेगा और सभी प्लास्टिक बोतलों पर ₹2 का शुल्क लागू होगा। पहली जनवरी 2027 से सामान्य जो इंश्योरेंस पॉलिसियों पर 5% इंश्योरेंस प्रीमियम टैक्स लागू होगा। और विशेष या व्यक्तिगत जो गाड़ियां पंजीकरण नंबर रखने वालों पर वार्षिक शुल्क लगाया जाएगा। 1 मिलियन से 12 मिलियन तक की कर योग्य आय पर 20% टैक्स लगेगा। 12 मिलियन से अधिक की आय पर 35% टैक्स लगेगा और VAT में कोई बढ़ोतरी नहीं लाई जाएगी। टैक्स व्यवस्था पर फिर से गौर करने के लिए उच्च स्तरीय समिति गठित की जाएगी। याचना अन्य कदमों पर नजर आपके साथ।
1: खरीद शक्ति को बरकरार रखा जा सके, खासकर मध्य और निम्न आय वाले परिवारों के लिए, इसके वास्ते स्टेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन बड़ी मात्रा में मूलभूत सामान खरीदेगा जिनका दाम नियंत्रित होगा। प्राइस स्टेबिलाइजेशन फंड को लेकर पिछली बार निर्धारित 10 बिलियन रुपए के अलावा इस बजट में 2 बिलियन रुपए जोड़े जा रहे हैं। कोन मटन, कांचूना, बच्चों के खाने, मैकरोनी, काली दाल, तूर की दाल, राजमा, लंचन मीट आदि पर इस जुलाई महीने से दाम में कमी लाई जाएगी। एक नया ई कॉमर्स बिल भी पेश किया जाएगा। 2035 तक आयात पर निर्भरता कम करने के वास्ते एक नई परियोजना चलाई जाएगी। खाद्य पैदावार के लिए और खेती के लिए 25,000 एकड़ जमीन के लक्ष्य तक पहुंचने के लिए एक फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन बिल पेश किया जाएगा और कर्मचारियों की भर्ती फास्ट ट्रैक पर किया जाएगा। 11,000 परिवारों के लिए 175 मिलियन रुपए की रकम निर्धारित की गई है पानी के टैंक्स की खरीद के लिए। अगले 3 सालों के लिए पानी जमा करने के स्थलों के विकास के लिए 6.4 बिलियन रुपए की रकम निर्धारित की गई है। 2035 तक रिन्यूएबल ऊर्जा पैदावार बढ़ाने के लिए भंडारण क्षमता बढ़ाई जा रही है और मकानों और व्यवसायों से सौर्य ऊर्जा में निवेश करने की मांग की जा रही है। जिन मकानों में सौर्य ऊर्जा पैदावार की जाती है उनकी एक्सपोर्टिंग ग्रिड को ₹4.20 से ₹4.84 तक बढ़ाया जा रहा है। मिठाइयां, जैम, क्रिस्टलाइज्ड फल, बिस्किट, कई अन्य मीठे खाद्य पदार्थों का दाम भी 1 अक्टूबर से बढ़ाया जाएगा। पेंशन को लेकर बजट में कदमों का ऐलान किया गया। बेसिक पेंशन सिस्टम में कई खामियां थीं जिनकी फाइनेंसिंग पूर्ण रूप से करदाताओं द्वारा किया जाता था। 60 साल की उम्र वालों को पेंशन दिया जाता था जो अन्य देशों में है ही नहीं। पूरी पेंशन प्रणाली में सुधार की दिशा में पेशेवरों द्वारा एक गहन अध्ययन किया जाएगा। एक पेंशन रेगुलेटरी केंद्र की स्थापना की जाएगी। BOP में सुधार जनवरी 2027 से अमल में लाया जाएगा। मात्र उम्र को लेकर ही पेंशन दिया जाएगा, यानी यदि कोई नौकरी भी कर रहा हो तो 65 साल की उम्र तक पहुंचने पर उसे उसका पेंशन दिया जाएगा। ₹14,000 की सीमा विश्व बैंक द्वारा निर्धारित गरीबी रेखा है जो 2025 में ₹28,000 की मध्य आय को का 50% है। वास्तव में इस सीमा से कम आय वाले प्रत्येक योग्य व्यक्ति को उनका पूरा SAP प्राप्त होगा। और कृषि सेक्टर पर ज्यादा विस्तार आस्था दे रही है।
0: जहाँ कृषि सेक्टर में कई कदमों का ऐलान किया गया है, जैसे कि वर्ष 2030 तक चीनी उत्पादन बढ़ाने के लक्ष्य के तहत अगले 3 वर्षों तक हर वर्ष 100 मिलियन उपलब्ध कराए जाएंगे, जिससे छोटे और मध्यम उत्पादकों की 500 हेक्टेयर भूमि का पुनर्वास किया जा सकेगा। विधि मासीपुरन
2: 2030 तक 2,50,000 टन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए चीनी उत्पादन बढ़ाने हेतु छोटे और मध्यम किसानों की 500 हेक्टेयर भूमि के पुनर्वास के लिए अगले 3 वर्षों में सालाना 100 मिलियन रुपए प्रदान किए जाएंगे। चाय के उत्पादन को बढ़ाने के लिए छोटे चाय उत्पादकों को ₹25,000 प्रति औपौ की अधिकतम सीमा तक पुनर्वरोपण लागत का 50%

0: प्रतिशत अनुदान उपलब्ध कराया जाएगा। इससे वर्ष 2029 तक चाय के उत्पादन में 50% की वृद्धि होनी चाहिए। हमारी जंगलों के लिए जलवायु लचीलापन बनाते हुए एग्रो फॉरेस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए एक फॉरेस्ट बिल पेश किया जाएगा। एक कृषि वानिकी परियोजना लागू की जाएगी। ये शोधकर्ताओं और किसानों के लिए एक संसाधन केंद्र के रूप में कार्य करेगा, साथ ही स्थानीय बाजार के लिए सुरक्षित भोजन का उत्पादन करेगा और हमारी खाद्य सुरक्षा नीति को और मजबूत करेगा। हमारे कृषि क्षेत्र को और बढ़ावा देने के लिए सरकार पशुधन उत्पादन बढ़ाने में निवेश कर रही है, जैसे कि फार्म भवनों, बकरी प्रजनन फार्मों के उन्नयन के लिए 45 मिलियन रुपए और प्रजनन स्टॉक की आपूर्ति बढ़ाने के लिए मवेशी और भेड़ प्रजनन फार्मों को स्केल अप किया जाएगा। प्रजनकों द्वारा पशु आहार की खरीद पर सब्सिडी देने के लिए 75 मिलियन रुपए प्रदान किए जाएंगे। पशुओं की खरीद, उपकरणों और पशु चिकित्सा सेवाओं के लिए सहायता हेतु प्रोत्साहन के लिए पशुधन विकास योजना के तहत 27 मिलियन रुपए दिए जाएंगे और एक आधुनिक अत्याधुनिक पशु चिकित्सा अस्पताल के निर्माण के लिए 50 मिलियन रुपए निवेश किए जाएंगे।
1: बजट 2026-2027 में सरकार की कुल आमदनी 235.5 बिलियन और कुल खर्च 266.7 मिलियन रहने का अनुमान है और बजट घाटा जीडीपी के 3.7% रहने का अनुमान है। सार्वजनिक कर्ज को जून 2027 तक जीडीपी के 85.5% और जून 2029 तक 80% से नीचे लाने का लक्ष्य रखा गया है, कहा प्रधानमंत्री ने। और सरकार का कहना है कि कर्ज का स्तर अभी भी ऊंचा है और क्रेडिट रेटिंग में गिरावट से आयात और कर्ज की लागत बढ़ सकती है। बात करते हैं आवास के सेक्टर के बारे में। आवास नीति पर बात करते हुए प्रधानमंत्री एवं वित्त मंत्री डॉ नवीन राम गुलाम ने कहा कि एक सम्मानजनक घर केवल रहने की जगह नहीं बल्कि गरिमा और सामाजिक सुरक्षा की नींव है। उन्होंने कहा कि निम्न और मध्यम आय वाले परिवारों के लिए आवास उपलब्ध कराना सरकार की प्रमुख प्राथमिकताओं में शामिल है। इसी उद्देश्य से 8,000 सामाजिक आवास परियोजना के पहले चरण के लिए आवश्यक भारी बुनियादी ढांचों के विकास के लिए 2 बिलियन रुपए का प्रावधान है। साथ ही हाईलैंड्स और खिष्टे में महत्वपूर्ण पानी निकासी व्यवस्था के निर्माण के लिए 25 मिलियन रुपए निर्धारित किए गए हैं इस बजट में। करुणा लालू।
2: सामाजिक मजबूती को बढ़ावा देने के लिए एक निष्पक्ष आवास नीति अपनाई जा रही है। एक उचित मकान गरिमा का आधार है। ये गरिमा सभी निम्न और मध्य वर्गीय परिवारों के लिए एक हकीकत होनी चाहिए। प्रधानमंत्री एवं वित्त मंत्री ने कहा कि कम आय वाली सोशल हाउसिंग के लिए बजट में 2 बिलियन रुपये का प्रावधान है, जो 8,000 आवास परियोजना के पहले चरण के लिए हैं। हाईलैंड्स और रिश्तेया में नहर प्रणाली के लिए 25 मिलियन रुपए दिए जाएंगे। सरकार और प्राइवेट सेक्टर की साझेदारी से निजी ज़मीनों पर मिक्स्ड इनकम हाउसिंग प्रोजेक्ट्स चलाई जाएंगी। इसका एक हिस्सा निम्न और मध्य वर्गीय आय वाले परिवारों के लिए निर्धारित होगा। नेशनल हाउसिंग डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड और न्यू सोशल लिविंग डेवलपमेंट लिमिटेड के माध्यम से मध्यम आय वाले परिवारों के लिए करीब 1,000 आवासों के निर्माण के लिए सरकारी भूमि उपलब्ध कराई जाएगी। 150 मिलियन रुपए मध्य वर्गीय परिवारों के लिए मूलभूत सुविधाओं के साथ 100 प्लॉट जमीन को तैयार करने के लिए निर्धारित किए जाएंगे। पहली बार जमीन खरीदने वालों के लिए प्रथम 3 मिलियन रुपए की लागत पर रजिस्ट्रेशन ड्यूटी की छूट होगी। इसके अलावा पहली बार एक अपार्टमेंट अथवा घर खरीदने वाले के लिए प्रथम 6 मिलियन रुपए की लागत पर भी छूट होगी। एक कृषि जमीन के धारक के लिए भी ये लागू होगी।
1: कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए बजट 2026-2027 में 14.2 बिलियन रुपए का प्रावधान है और पुलिस की गाड़ियों के आधुनिकीकरण के लिए 125 मिलियन रुपए निर्धारित किए गए हैं इस बजट में। पुलिस बल की क्षमता को बढ़ाने के लिए उपकरणों की खरीद के लिए प्रधानमंत्री ने ऐलान किया कि 531 मिलियन रुपए निवेश किए जाएंगे। नेशनल क्राइम एजेंसी की स्थापना के लिए 200 मिलियन रुपए का प्रावधान किया गया है। सामुदायिक पुलिस व्यवस्था को नया रूप दिया जाएगा ताकि पुलिस और नागरिकों के बीच भरोसा और सहयोग और बढ़े। सेफ सिटी निगरानी प्रणाली का विस्तार भी किया जाएगा। साइबर अपराधों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए देश भर में अभियान शुरू किए जाएंगे। और जहां तक ड्रग्स के खिलाफ लड़ाई की बात है तो प्रधानमंत्री ने कहा कि इस संघर्ष को तेज किया जाएगा और ये

सरकार की प्राथमिकता है। सरकार नशीले पदार्थों के खिलाफ अपनी लड़ाई को तेज करेगी और रोकथाम तस्करी के नेटवर्क को तोड़ना तथा उपचार और पुनर्वास पर खास ध्यान दिया जाएगा। नेशनल एजेंसी फॉर ड्रग कंट्रोल को अतिरिक्त 80 मिलियन रुपए प्रदान किए जाएंगे। इस राशि का उपयोग नशीले पदार्थों के खतरों, तस्करी के दुष्परिणामों और उपलब्ध

0: पहचान की जा सकेगी। सरकार को उभरते ड्रग्स के रुझानों पर समय पर जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी ताकि आवश्यक कदम तेजी से उठाए जा सके। ड्रग्स के खिलाफ लड़ाई में पुलिस, सरकारी संस्थानों, गैर सरकारी संगठनों और अन्य संबंधित पक्षों की संयुक्त भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी। सभी मंत्रालयों और सार्वजनिक संस्थानों द्वारा अपनी नीतियों और कार्यों में नशीले पदार्थों की रोकथाम को शामिल करने के लिए 50 मिलियन रुपए का प्रावधान किया गया है। अदालतों, पोस्ट ऑफिस, पुलिस स्टेशनों और अन्य सार्वजनिक सुविधाओं के आधुनिकीकरण के लिए एक व्यापक कार्यक्रम शुरू किया जाएगा। देश भर में सार्वजनिक सेवाओं तक पहुंच को बेहतर बनाने और आवश्यक सुविधाओं के लिए की योजना इस पर तैयार की जाएगी और इस प्रोजेक्ट में, इस परियोजना में 10 मिलियन रुपए निवेश किए जाएंगे। और अब चले जानते हैं कि स्वास्थ्य के सेक्टर में बजट 2026-2027 में कौन कौन से कदमों का ऐलान किया गया है। ज्यादा जानकारी हमें दे रही हैं सुमेरा अकबर अली।
1: हर साल टैक्स से प्राप्त बिलियन रुपए स्वास्थ्य के क्षेत्र में खर्च किए जाते हैं। मरीजों और सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए 2,220 मेडिकल एवं पैरामेडिकल स्टाफ की भर्ती की जाएगी। इनमें नर्सों की भर्ती भी शामिल होगी। 40 मिलियन रुपए निवेश करके सरकार विजिटिंग डॉक्टर स्कीम को लागू करने का मकसद रखती है। अब से हॉस्पिटल मैनेजर्स अस्पतालों की कार्यकुशलता का आश्वासन रखेंगे। मधुमेह की रोकथाम और इलाज के लिए बजट 2026-2027 में 40 मिलियन रुपए का प्रावधान किया गया है। स्वास्थ्य मूल ढांचों को आधुनिक बनाने के वास्ते 1.5 बिलियन रुपए निवेश किए जाएंगे। नए SSRN अस्पताल का निर्माण, आयुष केंद्र, एक आधुनिक स्वास्थ्य प्रयोगशाला, ENT अस्पताल में एक डायलिसिस केंद्र आदि का निर्माण शामिल है। मोटापे से निपटने के लिए एक कार्डियो मेटाबॉलिक केयर एंड रिसर्च केंद्र की तामीर भी की जाएगी।
2: और अंत में बजट के कुछ मुख्य कदमों में ये भी शामिल हैं, 2,63,200 पेंशन प्राप्त लोगों का 90% हिस्सा अभी भी स्टेज एज पेंशन से लाभ उठा पाएगा। इनमें 75% लोगों को पूरा पेंशन मिलेगा। केयर्स अलाउंस को 3,500 से 4,250 रुपए तक बढ़ाया जाएगा। पंजीकृत पूर्व प्राथमिक स्कूलों में विकलांगता की अवस्था वाले बच्चों के लिए टैक्सी शुल्क का भुगतान सरकार करेगी। स्पेशल एजुकेशन नीड्स लर्नर्स के बजट को 562 मिलियन रुपए से 619 मिलियन रुपए तक बढ़ाया गया है। अस्पतालों में डिस्लेक्सिया और ऐसी बीमारियों से पीड़ित बच्चों के इलाज के लिए 15 साइकोलॉजिस्ट की भर्ती की जाएगी। 90 साल से ज़्यादा उम्र वालों को घर पर डॉक्टरों से कंसल्टेशन का लाभ दिया जाता है। इस उम्र को 85 साल का किया गया है। मैटरनिटी लीव की बात करें तो 12 महीनों तक इसे बढ़ाया जा रहा है। 6 महीने तक पूरा पगार यानी फुल पेड लीव होगा और बाकी 6 महीने हाफ पे होगा। पैटर्निटी लीव को 4 से 6 हफ्तों तक बढ़ाया जा रहा है और यदि कोई पब्लिक हॉलीडे किसी शनिवार को पड़ रहा है तो उसके अगले दिन सोमवार का दिन पब्लिक हॉलीडे करार दिया जाएगा। वोकेशनल स्ट्रीम के नौजवानों के लिए 2 अतिरिक्त स्कॉलरशिप भी जोड़े जा रहे हैं। अब चलिए अंत में जानते हैं मौसम का हाल आस्था के साथ।
0: अंत में जानते हैं मौसम का हाल। स्थानीय स्तर पर हमारे इलाके पर हल्की हवाओं का असर है। आज रात को देश भर में मौसम सुहाना रहेगा और कल सुबह के दौरान भी देश भर में धूप खिली रहेगी। केवल दोपहर बाद देश के दक्षिण में कुछ वर्षा हो सकती है। अन्य जगहों पर मौसम सुहाना रहेगा। हवा पूर्व की ओर से 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बहेगी। प्रवाह रेखा के परे समुद्र खराब रहेगा। दक्षिण पश्चिम में 2 मीटर ऊंची लहरें उठेंगी। दूर समुद्र में नहीं जाने की अपील की जाती है। तापमान, न्यूनतम तापमान सेंट्रल प्लेटो पर 12 से 15 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 23 से 25 डिग्री सेल्सियस। न्यूनतम तापमान अन्य इलाकों पर 17 से 19 और अधिकतम साहिल इलाकों पर 27 से 29 डिग्री सेल्सियस के बीच होगा। सूर्यास्त 5:38 पर हो गया है। सूर्योदय का सुबह 6:44 मिनट पर होगा।

0: इसके मुख्य कदमों पर केंद्रित रहा। अभी के लिए बढ़ते हैं शोक समाचारों की ओर यशरा मिश्रा के साथ। धन्यवाद।
1: NBC Play, NBC Play, NBC Radio.TV, NBC Radio.

तो मौसम संबंधी जानकारियों के साथ हम पहुंच गए हैं इस बुलेटिन के अंत में। तकनीकी सहायक हमारे साथ रहे शिव, उनको हम धन्यवाद देते हैं। ये बुलेटिन मुख्य रूप से बजट 2026-2027

0: शोक समाचार सुनिए। कानपुर लेन नुवेल फ्रांस में 85 साल के 85 ईयर्स ओल्डर के श्री दीनदयाल रामबजू जो जगदीश के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। अर्थी कल दिन के 11:30 बजे उनकी बेटी बबीता मंडप के मकान कानपुर लेन नुवेल फ्रांस से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए घोंबुआ की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुमोरो एट 11:30 AM। नंबर 5 जॉन केनेडी स्ट्रीट थोंगबाओ पोटली में 68 साल के 68 ईयर्स ओल्ड के श्री रामजीत हरिमन सिंह जगदेव जो रामगीत के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। अर्थी कल दिन के 1 बजे उनके मकान नंबर 5 जॉन केनेडी स्ट्रीट थोंगबाओ पोटली से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए इलाके की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुमोरो एट 1 PM। नंबर 23 वेंकटासामी शिबेल बुबासे में 67 साल के 67 ईयर्स ओल्ड के श्री विनोद रामसामी जो गौसों के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। अर्थी कल सुबह 10 बजे उनकी पत्नी चिंता रामसामी के मकान नंबर 23 वेंकटासामी शिबेल बुबासे से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए इलाके की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुमोरो एट 10 AM। ब्रांच रोड न्यू ग्रोव में 75 साल की 75 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती दाउमत ओरी जो कुमारी के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। अर्थी कल सुबह 10 बजे उनके बेटे विशाल ओरी के मकान ब्रांच रोड न्यू ग्रोव से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए गोबियो ओरी लेन की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुमोरो एट 10 AM। सवान रोड नुवेल फ्रांस में 66 साल के 66 ईयर्स ओल्ड के श्री गौकरण मंघा जो कस्टेलो के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। अर्थी कल दिन के 11:30 बजे उनके मकान सवान रोड नुवेल फ्रांस से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए मारिशानी रोसबेल की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुमोरो एट 11:30 AM। रिजर्वर रोड सचीज खांबे में 42 साल के 42 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती सुमिता रामचंद पैदाशी नाम बंधु और जो श्वेता के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। अर्थी कल सुबह 10 बजे उनके पति रिशाल रामचंद के मकान रिजर्वर रोड सचीज खांबे से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए घोंबे की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुमोरो एट 10 AM। शोक में डूबे इन परिवारों के प्रति हमें हमदर्दी है।
1: Your news on NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.tv.
2: RM2 Radio Mystic.
3: The time is brought to you by McDonald's.
4: McDonald's? Ba-da-ba-ba-ba. I'm loving it.
3: And RKG Classic Pure Cow Ghee. Share the taste. Share happiness.
2: Radio Musti.
5: North. South.
2: 103.5.
5: East. West.
2: 96.4.
5: Center.
2: 99.4.
6: RM2 Radio Musti.
2: Radio Musti.
6: The latest news and the greatest mix of music. Feel the Musti.
7: घड़ी मिलाते चलिए 7:39 हो चुके हैं.
8: फिल्मी जान.
6: RM2 Radio Musti.
9: परदा नशी तुझसी नहीं कोई कहीं इस जहां में हंसी परदा नशी तुझसी नहीं कोई कहीं इस जहां

0: फिल्मी जैम
1: OMG रेडियो मस्ती।
0: All right, हमारी और आपकी मुलाकात ऑन द वेव्स ऑफ रेडियो मस्ती, जहां पर दिव्या का साथ है अभी से लेकर टिल 9 PM, सो जहां से भी साथ रहे होंगे, थैंक यू सो मच। इट्स अ वंडरफुल फैंटास्टिक फ्राइडे। यस, सब लोग आज उठे हुए हैं बहुत ही गुड मूड के साथ, क्योंकि आज है द वेरी मच अवेटेड फ्राइडे। एंड वैसे मुझे बस हमेशा यही दिमाग में आता है कि लोग फ्राइडे से इतना प्यार क्यों करते हैं भाई। सब लोग यही कहते हैं कि फ्राइडे इज सच अ वाइब, और चलिए इस वाइब को हम साथ मिलकर फील करेंगे। एंड ऑफ कोर्स इस फ्राइडे इवनिंग को हम लेकर आए हैं कुछ ऐसे धमाकेदार गाने, जिसको सुनने के बाद अगर आपको भी डाउट हो रहा है ना कि आज फ्राइडे है कि कौन सा दिन है, तो आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि वी आर ट्राइंग टू गेट यू इन द फ्राइडे मूड। और फ्राइडे मूड तो हमेशा

0: गुड मूड के साथ ही स्टार्ट होता है और गुड मूड के साथ ही एंड होता है. सो आई जस्ट होप दैट यू आर ऑल सेट फॉर द वीकेंड. एंड चलिए हम यहाँ पर लेकर आए हैं खूबसूरत गाने और आप हमारे लिए लेकर आइएगा गुड वाइब्स. एंड ऑफ कोर्स वेटिंग फॉर योर मैसेजेस ऑन 5499 1294 इज द नंबर. तो आप जल्दी फटाफट भेजिए अपने मैसेजेस और हमें बताइए कि हाउ यू आर स्पेंडिंग योर फ्राइडे इवनिंग.
1: Filmy Jam. RM2 Radio Musti.

0: फिल्मी जैम
1: रेडियो मस्ती।
2: Yes, yes, you got it right. हम आपके messages को जरूर welcome कर रहे हैं on 5499-1294. दिव्या का साथ है भी से लेकर till 9 PM in your

0: रेडियो मस्ती और चल रहा है आपका फिल्मी जैम। चलिए यहाँ पर कुछ कुछ लोग अपने गाने की फरमाइश कर रहे हैं। आज के लिए तो गाने की फरमाइश तो नहीं पॉसिबल है, बट अगर आपके दिमाग में कोई ऐसा गाना चल रहा है जो हमारे फ्राइडे मूड को एकदम फिट होता है तो ज़रूर हम चलाने की पूरी कोशिश करेंगे। चलिए यहाँ पर हम अगला गाना खासतौर से डेडिकेट करेंगे स्पेशली फॉर वेदा जो इस वक्त कनेक्ट रहे हमारे साथ, और यू वुड लाइक टू डेडिकेट द नेक्स्ट गाना टू ऑल योर फैमिली मेंबर्स एंड फॉर योर फ्रेंड्स एंड कलीग्स जो आपको जानते हैं। तो चलिए उन तमाम लोगों के नाम जो शायद इस वक्त कनेक्ट रहे हमारे साथ और आपका नाम सुन के शायद उनको डाउट हो रहा है कि हे ये तो वेदा है। चलिए 7:55 हो चुके हैं और अगले गाने के बाद हम कदम रखने जा रहे हैं इन द सेकंड आवर ऑफ फिल्मी जैम। सो स्टे वाइट कनेक्टेड, इट्स योर फिल्मी जैम जहां पर हम नॉन स्टॉप आप लोगों के लिए चला रहे हैं गाने, और ऐसे ही आप कनेक्टेड रहिए हमारे साथ और ज़रूर बताइएगा कि अभी के लिए आपके यहाँ मौसम कैसा है और शायद आप कहीं पर इनवाइटेड हैं या फिर आपने किसी को इनवाइट किया हुआ है आपके यहाँ, और फैमिली के साथ या फिर फ्रेंड्स के साथ अभी यू हैविंग अ ग्रेट ग्रेट टाइम, तो हमें इसमें शामिल करने के लिए थैंक यू सो मच।
1: फिल्मी जैम RM2 रेडियो मस्ती।

0: फिल्मी जाम
1: OMG रेडियो मस्ती
2: भाई देखिए अगर तेज हवा की वजह से दुपट्टा उड़ रहा है तो इसमें बेचारी दुपट्टे का क्या दोष उसको हम बेईमान नहीं कह सकते हैं क्योंकि बेईमान तो हमेशा बस ये मौसम होता है कभी भी बदल सकता है इसीलिए तो बार बार आपसे हम रिक्वेस्ट करते रहते हैं टू कीप ऑन सेंडिंग मैसेजेस ताकि हम भी बाकी हमारे लिसनर्स को अपडेटेड रख पाए कि आपके यहाँ कैसा मौसम हो रहा है और कौन से रीजन में क्या कुछ अभी के चल रहा है ये भी तो ज़रूरी है हमें जानने के लिए तो चलिए यहाँ पर गुड इवनिंग दिव्या ऋषि विदेशी वुड लाइक टू डेडिकेट द नेक्स्ट गाना टू ऑल RM2 लिसनर्स एंड माई मूडी गर्लफ्रेंड जिनका बर्थडे 2nd of July को है जुलाई को आने में अभी थोड़ा टाइम है तो ऋषि जी थैंक यू सो मच आपके इस मैसेज के लिए लगता है कि आप ऑलरेडी गर्लफ्रेंड के बर्थडे को लेकर ऑलरेडी एक्साइटेड हैं आई जस्ट होप कि आप उनको निराश बिल्कुल नहीं करेंगे एंड प्री बर्थडे जो जितना भी आप सेलिब्रेशन कर पाए ना जुलाई में आप करिए क्योंकि एक बार आपकी गर्लफ्रेंड इम्प्रेस हो गई तो शी इज़ गोइंग टू बी इम्प्रेस्ड फॉर द रेस्ट ऑफ हर लाइफ तो चलिए यहाँ पर जितने भी सारे लोग इस वक्त कनेक्टेड हैं हमारे साथ मे बी आप इस वक्त ड्यूटी पर हैं तो आपको हम विश करेंगे भूखो आज इफ़ यू डूइंग नाइट शिफ्ट राइट नाउ तो चलिए एक बार फिर से आप सभी का हम दिल से स्वागत कर रहे हैं और टॉकिंग अबाउट स्वागत तो एक बार फिर से आपका हम स्वैग से करते हैं स्वागत
0: फिल्मी जाम
1: RM2 रेडियो मस्ती

service message, eh?

0: फिल्मी जाम
1: रेडियो मस्ती।
2: चले बढ़ते हैं आपके कुछ मैसेजेस की ओर जो आपने हमें बहुत ही प्यार से भेजे हैं। यहाँ पर आप कहती हैं, हाय दिव्या, हाउ आर यू? बिल्कुल ठीक ठाक, थैंक यू सो मच। कृष्टि, आप हैं रविया दिखयोल से, स्पेशल गाना जाएगा स्पेशली आपके हबी विक्रम के लिए और आपके ट्वीन्स हैं एज यूजुअल। यू वुड लाइक टू डेडिकेट इट टू कौशिक एंड कौशल एंड ऑल्सो फॉर RM2 टीम के लिए। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट ग्रेट इवनिंग, आपको भी हम कहेंगे। एंड साथ में यहाँ पर अगला गाना हम खास तौर से डेडिकेट करेंगे आपके लिए, गहना। ये बहुत ही प्यारा सा नाम है, गहना, क्या बात है। सो द नेक्स्ट वन गोज आउट स्पेशली फॉर योर सिस्टर, वी हैव रिश्मि, और साथ में आपकी प्यारी सी मामा के लिए और आपके पापा के लिए। मामा पापा का नाम तो आपने लिखा ही नहीं, शायद आप भूल भी गए होंगे, कोई बात नहीं। नेक्स्ट गाना गोज आउट टू योर फैमिली मेम्बर्स एंड जितने भी सारे लोग इस वक्त जुड़े हुए हैं हमारे साथ। आई जस्ट होप दैट यू आर टेकिंग फुल एडवांटेज ऑफ दिस फ्राइडे इवनिंग और पूरे आप वाइब को फील कर रही हैं। तो चलिए, यहाँ पर स्टूडियो में कोई आ गई है, तो चलिए वे के लिए आपसे हम थोड़ी देर में बात करते हैं, उनसे हम थोड़ी बातें करते हैं और वापस आते हैं।
0: फिल्मी जाम
1: RM2 रेडियो मस्ती।

0: फिल्मी जाम रेडियो मस्ती।
1: चलिए यहाँ पर बिल्कुल अच्छी तरीके से आप लोग अपनी फ्राइडे इवनिंग को स्पेंड कर रही हैं ये जानकर हमें बहुत ही खुशी हो रही है। चलिए यहाँ पर अगला गाना खास तौर से हम डेडिकेट करेंगे दीक्षिता के लिए। एंड आप कहती हैं कि यू हैविंग अ ग्रेट ग्रेट टाइम लिसनिंग टू रेडियो मस्ती राइट नाउ। हे दीक्षिता, थैंक यू सो मच। एंड ये अगला गाना जाएगा टू ऑल दोज जो आपको जानते हैं और ख़ास तौर से आपकी बेस्ट फ्रेंड के लिए, श्रेया के लिए। दैट्स सो स्वीट। एंड चलिए उम्मीद करते हैं कि ये दोस्ती आप बिल्कुल नहीं तोड़ेंगे। गाना तो आपने सुना ही होगा और आजकल कहते हैं ना कि ढूंढने से खुदा भी मिल जाता है लेकिन सच्चा और अच्छा दोस्त बस बहुत ही मुश्किल से मिलता है। तो आई जस्ट होप कि आपकी ये दोस्ती सालों साल तक ऐसे ही बरकरार रहे। एंड जस्ट होप कि आपकी ये फ्रेंडशिप हमेशा दिन ब दिन स्ट्रॉन्ग होता रहे। वेल 8:37 ऑलरेडी, इट्स अ वंडरफुल फ्राइडे इवनिंग जहां पर दिव्या का साथ है ऑन द वेव्स ऑफ रेडियो मस्ती।

वेल फ्रेंड्स 7:55 हो चुके हैं और चलिए इसी के साथ इट्स अ टाइम फॉर मी टू से गुडबाय टू ऑल ऑफ यू. हमारी और आपकी मुलाकात होने वाली है कल बहुत ही जल्द. तब तक के लिए टेक केयर, कीप स्माइलिंग एंड बाय.

0: sera tout.
1: RM2, Radio Musty. Come on, let's move.

0: RM2 Radio Musti.
1: चली ओ चली ओ चली गोकुल की राधा चली ओ चली चली चली

0: रेडियो मस्ती।
1: जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना।
2: हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते, जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। चलते

0: कुछ कुछ होता है राहुल, तुम नहीं समझोगे।
1: लड़की बड़ी अनजानी है।
2: रेडियो मस्ती ऑल द वे।
3: जब तक टाइगर मरा नहीं तब तक टाइगर हरा।

0: कुछ कुछ होता है राहुल, तुम नहीं समझोगे।
1: लड़की बड़ी अनजानी है।
2: रेडियो मस्ती ऑल द वे।
3: जब तक टाइगर मरा नहीं तब तक टाइगर हारा नहीं।
2: रेडियो मस्ती, द लेटेस्ट न्यूज एंड द ग्रेटेस्ट मिक्स ऑफ म्यूजिक।